0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आपने सुधा माथुर का राग यामिनी बिलावल में गायन सुना। तबले पर आपका साथ दिया था उस्ताद अख्तर हसन ने और सारंगी पर साथ थे दिलशाद अहमद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से

0: दो दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस 26 शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट इन बिश्केक, किर्गिस्तान टुडे। द 26th SCO समिट इज बीइंग हेल्ड अंडर द सेंट्रल मोटो टुगेदर फॉर सस्टेनेबल पीस, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। Mr. Modi is on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first day of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर दे। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year compared to 6.9% during the same period previous year. Ministry of Statistics and Program Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Secretary in the Ministry, Dr. Saurabh Garg, said growth across all sectors has been highly positive, which demonstrates that government interventions are having an impact despite geopolitical situation. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Home Minister Amit Shah said the credit for this strong performance goes to the people of the country and their hard work. Bihar and Jharkhand have signed an MOU on share

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लघु वार्ता भगवान महावीर के उपदेश। वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
2: भारतवर्ष की तपोभूमि पर ज्ञान का अमृत बांटने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर एक राजकुमार थे और उनके माता पिता ने उन्हें वर्धमान नाम दिया था। राजा का पुत्र होने के कारण उनके पास कई सांसारिक सुख संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और राजघराने को छोड़ अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी। मानवता की सेवा, उसके दर्द दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में वे एक भिक्षु बन गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जो आज भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य बिंदुओं में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। सब जीवों में आत्मा है, किसी को भी हिंसा न पहुंचाओ। महावीर स्वामी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान देना ही अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की बजाय उसे शांति से जीने दें और खुद भी शांति से जीने का प्रयास करें, तभी आपका और सबका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आत्मा ही उसकी शत्रु होती है। आपका असली शत्रु आपके भीतर ही है, जो कि क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत हैं। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से स्वयं का

0: होता है। जैसे आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जीवित व्यक्ति तीनों लोकों की सारी धन दौलत पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाएं, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी भूल जाना चाहिए। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाए उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। महावीर ने मानव जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कर्म को ही भाग्य माना। उन्होंने कहा कि शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को दर्शाती हैं। महावीर का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश सार्वभौमिक करुणा से परिपूर्ण है। महावीर ने कहा कि जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है जिसमें संभावित रूप से पूर्ण बोध यानी अनंत दर्शन, पूर्ण ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, पूर्ण शक्ति यानी अनंत वीर्य और पूर्ण आनंद यानी अनंत सुख है। महावीर का संदेश जीवित प्राणी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस अयोध्या कांड 35।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता, कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

0: यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरणमञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यम् उद्देश्यं पर्यावरणसङ्कटस्य, जलवायुपरिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीयसम्बन्धान् सुदृढं कर्तुमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री भूपेन्द्रयादवः जर्मन् मन्त्रिणा कार्स्टन् श्नाइडर् इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायां एषमः अण्डर 20 एशिया कप इत्यस्यां चषकस्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कन् नगरे सीरिया देशम् 1-0 इति अङ्कान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतु सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण आई बाढ़ से भुट्टीकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। आज आपने इसमें सुना सुशील प्रीति सुशील से कुछ भजन। और अब वक्त हुआ है हमारा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गीत भरी। जी हाँ, आप सभी को इंतज़ार होगा इस कार्यक्रम का, क्योंकि घड़ी में पूरे 7:30 हुए हैं। तो आज का दिन है खूबसूरत, यानी कि 1 सितंबर, और आज के दिन सबसे पहले आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आपके साथ सिमरन कौर। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों हमारी इच्छा क्या है, हम क्या खोज रहे हैं, खुशबू, खुशी, आनंद या फिर बहुत कुछ, हम सदियों से तलाश कर रहे हैं और ये हमें अभी तक क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि ये मुश्किल बात नहीं, आपके अंदर ही है।

दोस्तों कहते हैं कि रिश्ते ज़िंदगी की वो दौलत हैं जिन्हें जितना संभाल कर रखो उतना ही जीवन बहुत ही खूबसूरत बनता जाता है, क्योंकि साथ में होने से किसी के बहुत ही खूबसूरती का एहसास होता है और ये एहसास हमें तब होता है जब हम ये बात सोचते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर के साथ की तो भरी गुड मॉर्निंग। और आज की जब बात कर रहे हैं तो प्यार सिर्फ रिश्तों की नहीं खास, लेकिन सिर्फ किसी के साथ होने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दिल को समझने और उनकी खामोशी को सुनने और बिना कहे उनकी भावनाओं को महसूस करने का नाम भी होता है।

आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अपनों के साथ होते हुए भी कई बार उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल पे घंटों बातें जो करते रहते हैं, लेकिन सामने बैठे दो इंसान दो पल की बात करने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, समय निकालना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय निकालेंगे तभी तो हम खुश रह पाएंगे।

और खुशी जितना हम उसे बाहर खोजते हैं ना, उसके मिलने की संभावना बहुत कम होती है, अंदर होती है अपने अंदर हमारे हंसी और खुशी, क्योंकि ये हमारे अंदर की बात है और बस इसी वक्त हम सोचते हैं कि खुश रहने की कोशिश करें और इसे कहीं बाहर ढूंढने ना जाएं तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे।

जी हाँ, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना और गलती होने पर छोड़ देना, माफ़ कर देना, यही तो प्यार है। याद रखिए, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन कभी कभी सही भी होता है। तो इसीलिए प्यार हमेशा और मुस्कुराना हमेशा बरकरार रखें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
5: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
5: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
3: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी।

0: बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
1: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो GDP रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
2: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
4: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
5: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूर

0: के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काशदास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। और ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सेमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। और लियोनेल मेसी ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। SCO की इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने दौरे के पहले दिन कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत की, महात्मा गांधी को खराज-ए-अकीदत पेश किया और दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा 6ठे वर्ल्ड नोमेड गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। जनाब मोदी ने कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा मीटिंग की। जनाब पुतिन के साथ बातचीत में जनाब मोदी ने मुसलसल जंग के बजाय जंग खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए आलमी तनाज़ात के सिफारती हल की हिमायत की।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: बातचीत के दौरान भारत और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत दो तरफा तआवुन के अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ये इत्मीनान की बात है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों तक पहुँचा है।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: वज़ीर आज़म मोदी ने ईरान, जमहूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी की। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिज़िस्तान के अपने दो रोज़ा दौरे के पहले दिन कल रूस, ईरान, जमहूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें कीं। इन मीटिंगों में दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम बिश्केक में दीगर SCO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 6ठे वर्ल्ड नोमेड गेम्स की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। मौजूदा माली साल की पहली सैमाही के दौरान भारत की हकीकी GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि साबिका साल इसी मुद्दत में यह 6.9% थी। आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक वजारत ने मौजूदा माली साल की अप्रैल से लेकर जून तक की पहली सैमाही के लिए GDP के तखमीने जारी किए हैं। उसने कहा है कि आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय मईशत में तरक्की की रफ्तार बरकरार रही है। वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी शोबों में शरह तरक्की बहुत मुस्बत रही, जिससे ये जाहिर होता है कि जोग्राफियाई और सियासी हालात के बावजूद सरकार के

दामाद का असर हो रहा है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रहने को एक बड़ा कारनामा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर अजम ने कहा कि इस कामयाबी से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई निजाम में रुकावटों और आलमी गैर यकीनी के हालात के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई कुव्वत और उनके अज़्म की अक्कासी होती है। इधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मईशत की इस शानदार कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी मेहनत को जाता है। सरकारी आदतोशुमार में भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.8% रहने के इंकशाफ के बाद अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। एक खबर रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने कहा कि शरह तरक्की के आदाद शुमार से ट्रंप इंतजामिया के इस नुक्ते नज़र की तस्दीक होती है कि भारत तेजी के साथ तरक्की करने वाली इकतसादी क़ुव्वत है। उन्होंने कहा कि भारत की वसी और वसअत हासिल करने वाली मईशत से अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों के लिए बड़े मौके सामने आ रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया भी भारत में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और अमरीका में और ज्यादा भारतीय सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने आलमी बैंक की जानिब से दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी अदालत के फैसले को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। भारत ने मस्कूरा ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसके फैसले कानूनी एतबार से काबिल कबूल नहीं हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि भारत ने कभी भी सालिसी से मुतालिक इस पैनल को तस्लीम नहीं किया और न ही इसकी कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो इसके फैसलों का पाबंद नहीं है। भारत ने यह बात दोहराई है कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहिदा अब भी मुअत्तल है। यह बयान हेग में सालिसी से मुतालिक अदालत के इस फैसले के बाद सामने आया है कि मस्कूरा मुआहदे को मौकूफ रखने की भारत की वजूहात के हवाले से उसे मुअत्तल रखने या खत्म करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। मस्कूरा पैनल ने भारत से कहा था कि वो 1960 के पानी में हिस्सेदारी के समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे। भारत ने अलबत्ता ये दलील पेश करते हुए फैसले को खारिज कर दिया कि मस्कूरा पैनल ही मुआहदे की शराइत की खिलाफवर्जी करते हुए कायम किया गया था। वजारत खारजा ने कहा है कि मुआहदे के ताल्लुक से भारत के आजादाना फैसलों या बुनियादी ढांचे के उसके प्रोजेक्टों के ताल्लुक से पैनल का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था। भारत ने कौमी सलामती को लाहिक तशवीश और सरहद पार से दहशतगर्दी जारी रहने का हवाला दिया था। भारत का कहना है कि मस्कूरा मुआहदे के बारे में उसका फैसला अपना मामला है और सालिसी से मुतालिक पैनल के बयानात या फैसलों से पानी और बुनियादी ढांचे से प्रोजेक्टों से मुतालिक उसके इकदामात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल में बचाव टीमें उन 600 से ज्यादा कारकुनों तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं जिनके बारे में यह ख्याल है कि वो त्रिशूली 3A पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर मिट्टी और गाद से भरी हुई टनल में फंसे हुए हैं। बचाव टीमों के अहलकार टनल का रास्ता साफ करने के लिए धमाका खेज मादों, भारी मशीनरी और एयर पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जिंदा बच जाने वाले कारकुनों को तलाश किया जा सके। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 939 तक पहुंच गई है जबकि 3,925 अफराद अब भी लापता हैं। इनमें 592 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। पनबिजली प्रोजेक्टों के मकाम से अब तक 279 अफराद को बचाया गया है जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर बाहर लाया गया है। बचाव कार्रवाई में भारत, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन के साथ साथ नेपाल और चीन की फौजी टीमें मुआवनत कर रही हैं। भारत ने बचाव कार्रवाई और मुतासिरा लोगों की शनाख्त में मदद की खातिर खसूसी टीमें वहां भेजी हैं। भारत की 19 अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरेंसिक टीम ने वहां बरामद की गई लाशों की शनाख्त की खातिर डीएनए जांच में मदद करते हुए काठमांडू में अपना काम शुरू कर दिया है। उधर पनबिजली प्रोजेक्टों के मकामात पर भी एक भारतीय बचाव टीम काम कर रही है। ये माहरीन 933 कारकुनों और मुलाजिमीन का पता लगाने के लिए नेपाल के हुक्काम की मदद कर रहे हैं जो 26 अगस्त से लापता हैं। ऐसा ख्याल है कि इनमें से कई कारकुन टनल्स के अंदर फंसे हुए हैं।

0: नेपाल में सैलाब आने और बिहार में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे के तनाजुर में मवेशी परवरी और माही परवरी से मुतालिक वसाइल के महकमे ने लोगों को ये सलाह दी है कि वो उन मछलियों को खाने में इस्तेमाल न करें जिन्हें सैलाब के पानी से पकड़ा गया है। महकमे के मुताबिक सैलाब के दौरान मछलियां गंदे पानी, मुर्दा मवेशियों और दीगर नाकिस मादों के रबते में आ सकती हैं, इसलिए बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी फैलाने वाले दीगर जरासीम की वजह से इनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और इससे मुत्तसिल शिमाली साहली ओडिशा में हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर ओडिशा में फिर से शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ओडिशा में फिर से बारिश का जोर बढ़ गया है। मौसमियात महकमे ने झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल और मयूरभंज जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 12 जिलों में येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। जुलाई के महीने में ओडिशा में 91% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर जून से लेकर 26 अगस्त तक रियासत में 1104 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि नॉर्मल से 31% ज्यादा है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में कल के बाद बारिश का जोर कम हो जाने का इम्कान है, अलबत्ता कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ हिस्सों में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में आज दोपहर को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेबर कल से भारत का 3 दिन का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के वसीतर इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की खातिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादला ख्याल करेंगे। लियोनेल मेसी ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इस तरह उनका अर्जेंटीना के खिलाड़ी के तौर पर 20 साल का करियर इख्तिताम को पहुंचा जिसमें वर्ल्ड कप की फतह, 2 कोपा अमेरिका खिताब और अपने मुल्क के लिए 207 मैच खेलने का रिकॉर्ड शामिल है। मेसी ने कहा है कि ये फैसला स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद से उनके जहन में था और फिर उनके वालिद के इंतकाल ने उन्हें मजीद कायल किया कि अब उन्हें खेल से अलहदा हो जाना चाहिए। 39 साल मेसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में इस फैसले का ऐलान किया। ये थीं खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले अहम उर्दू अखबारात में किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ आलमी लीडरों से मुलाकात को की अहम खबर को अहम खबर के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, किर्गिस्तान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर मसूद पिजिशकियान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत यूक्रेन मामले में तमाम पुरअमन कोशिशों का हामी, वजीर आजम और रूसी सदर की दिफाई तआवुन, तवानाई की फराहमी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि फैशन टेक्नोलॉजी के पेशावर अफराद ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करें जिनमें भारत की महक भी हो। दिफाई सेक्टर के इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह का बयान। कुछ अहम बैन अलाक्वामी खबरें इस तरह हैं, नेपाल में तालीमी इदारों के 200 से ज्यादा तलबा लापता, हलाकतों की तादाद 900 से मुतजावज।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज किर्गिजिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और लियोनेल मेसी ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल

0: से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार हैं अनीशा रे और आज का राग है नट भैरव।
2: नमस्कार, मेरा नाम अनीशा रे, मैं राग नट भैरव से शुरू कर रही हूँ। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। गायन कलाकार थी अनीशा रे और आज का राग था नच भैरव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अनूप जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अनूप जी, आप लंबे समय से लोक संस्कृति और संरक्षण और संवर्धन से जुड़े हुए हैं। आपके विचार में लोक

0: संस्कृति और विज्ञान के बीच क्या संबंध है? क्या ये वैज्ञानिक है?
1: वैज्ञानिक होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विज्ञान का जो यूसेज है वो कला में बहुत अत्यंत आवश्यक है और जरूरी है, उसके बिना दोनों पूरे नहीं हो पाते। फोंटाना डिक्शनरी ऑफ थॉट में वो कहते हैं कि पॉप इज एन इंडस्ट्रियलाइज वर्शन ऑफ फोक, अगर वो फोक नहीं है तो वो पॉप
0: पॉप भी
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है जी।
1: अब अगर आज के सामयिक हम कहें, अगर आप पॉप सुन रहे हैं तो उसको अनलार्ज करने के लिए, उसके कैनवस को बड़ा करने के लिए हम उस फोक को सुन रहे हैं, तो वो पॉप सुन रहा है,
0: जी, ये उसमें आधुनिकता का रंग चढ़ा हुआ है।
1: आधुनिकता का रंग चढ़ा हुआ है। अगर आधुनिकता का रंग उसमें नहीं चढ़ेगा, और वो आधुनिकता कहाँ से आएगी? वो विज्ञान से
0: विज्ञान
1: आएगी,
0: से आएगी।
1: बिना उसके नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, मेरी पुस्तक है काल और ताल। तो काल और ताल का क्या है कि दिल्ली NCR का लोक संगीत के ऊपर आधारित वो किताब है। तो उस काल और ताल में जो है लगभग 150 के करीब धुनों का और गीतों का संकलन है उसमें, यानी कि पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक के गीत हैं
0: यानी
1: उसमें,
0: कि लोक कलाएं हैं, लोक गीत हैं,
1: संस्कार
0: संस्कार
1: हैं,
0: हैं।
1: गीत हैं,
0: जी
1: रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं,
0: जी
1: सभी के जितने भी गीत हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि उसमें एक तरफ तो है गीत लिखा हुआ, ट्रांसक्रिप्शन है, गीत लिखे, दूसरी तरफ उसके सामने जो है पेज पर उसकी नोटेशन है,
0: दोनों साथ साथ चल
1: तो
0: रहे
1: उसकी
0: हैं।
1: सरगम साथ में लिखी है, कौन से राग के ऊपर आधारित है वो लिखा है। तो उसका क्या मतलब होता है कि तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति अगर वो दिल्ली NCR का लोक संगीत को जानना और बजाना चाहता है, नोटेशन उठाएगा और वो आपके यहाँ के उत्तर भारत की इसके गीत गाएगा, वो आसान हो जाता है
0: जी
1: उससे। तो ये ही नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि आपका कल को ग्रैंड चाइल्ड आता है और आपसे पूछता है वो आपके समय में कैसे गीत होते थे, तो मैं कहता हूँ हमारे उसमें ऐसा गीत होता था, वो कहेंगे गाकर सुनाए। मैं पढ़ के तो सुना दूंगा, गा के नहीं सुना सकता हूं।
0: तो अगर वो साउथ इंडियंस, अगर कोई सुनाना चाहता है, गाना चाहता है, वो अपनी भाषा में अपने शब्द लिख करके कह सकता है उस नोट पे।
1: उसी नोटेशन पे
0: जी,
1: तो वो संगीत, वो धुन तो रहेगी
0: धुन
1: ना,
0: तो रहेगी।
1: सो महत्वपूर्ण धुन है, महत्वपूर्ण गीत नहीं है। गीत तो जितने भी शब्द उसमें जोड़ते चले जाइएगा वो
0: बिल्कुल
1: बनता
0: बिल्कुल,
1: चला
0: ये बड़ी
1: जाए,
0: बात, ये बड़ी
1: धुन
0: बात
1: नहीं बनती है।
0: जी। अनूप जी, हमारी लोक परंपराओं में कृषि, मौसम, पशुपालन, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और प्रकृति से जुड़े जो पारंपरिक ज्ञान जो मिलते हैं, क्या इस ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने और उनका दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है?
1: आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हम ये काम कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं चेयरपर्सन कल्चर काउंसिल, तो उस कल्चर काउंसिल के तहत जो है ये कर रहे हैं कि हमने जैसे 22 भाषाएं हो गई और फिर उसके साथ चार पांच जो उपभाषाएं भी कुछ जो हैं उनको मिलाकर वहां के जो ईडियम्स हैं, जिन ईडियम्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पास करने का, यानी कि वही कृषि के
0: कृषि
1: ज्ञान का है और चीजों का है, तकरीबन हमारा काम पूरा हो चुका है। और उसमें क्या है कर रहे हैं कि एक तरफ तो उस भाषा में, मान लो तमिल में है, उसका भाषा में वो ईडियम होगा, उसके साथ उसका इंग्लिश में रोमन उसमें लिखा होगा, साथ में उसका अर्थ हिंदी में लिखा होगा और उसका इंग्लिश में लिखा होगा।
0: अनूप जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये सब जो आप दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या लगता है आपको?
1: हाँ, क्या होता है कि एक समय आता है, चाहे वो धुन है चाहे वो एक फैशन है, वो सामयिक होते हैं। इलीट जो है वो फैशन क्रिएट करता है और उसके बाद वो मिडिल क्लास कॉस्ट्यूम पे उसी फैशन पर आता है, और उसके बाद वो डाउन बिल्कुल नीचे के स्तर पे जो भी लोग हैं उन तक भी पहुंचता है, और उसके बाद ऊपर के सर्कल के लोग छोड़ देते हैं। कुछ अरसे बाद वही बागड़िया लोहारों की गाड़ियों में जाते हुए नीचे से हम फोटो खींच के हम उनके पहरावे का फिर से दोबारा से वो बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, और वो फिर से इलीट का वो हो जाता है। लेकिन धुन जो है इसी तरीके से धुन है, धुन है, सामयिक है, समाप्त हो गई,
0: जी,
1: वहां पर अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है।
0: यानी कि लोग भूलने लगते हैं, याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में ये चलन था, ये परंपरा थी।
1: आज हो सकता है कि वो उसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर रोज संगीत बदलता है, हर रोज गीत बदलते
0: लेकिन
1: हैं।
0: गीत और संगीत तो बदल तो जाते हैं, लेकिन वो जो मिठास जो पहले वाली है उसकी मिठास अलग होती है और आज की जो मिठास है वो उसकी अलग होती है।
1: तो उसको फिर से हम उसको सामयिक बना देते हैं दोबारा से। ये इसीलिए टेक्नोलॉजी, इसीलिए ये सारी चीजों की आवश्यकता है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए।
0: अनूप जी, आप हरियाणवी रीति रिवाजों से, लोकगीतों से काफी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उनका आपने, जैसे कि अभी आपने बताया कि उनका संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण भी कर रहे हैं, तो लोकगीतों, रागिनियों, कहावतों और लोक कथाओं में प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित आपके कई अनुभव दिखाई देते हैं और आपको

0: अनुभव हैं। इनमें छिपे ज्ञान को नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्या ये सिर्फ दस्तावेजीकरण से ही पहुंचाया जा सकता है या फिर और कोई माध्यम है?
1: तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो वैसे का वैसा रखा जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक प्रयास किया। कुछ चीजें होती जो हैं ये पैशन से और शौक से होती हैं, जिसे कहते हैं ना घर फूक तमाशा देख, है ना, हमारे
0: जी,
1: उस आम भाषा
0: आम
1: में,
0: भाषा
1: सरल
0: में
1: भाषा में
0: जी।
1: कहते हैं। तो मुझे ऐसे ही शौक चढ़ाया और उस शौक में मैं पलवल, फरीदाबाद और इधर के इलाके में घूमने निकला, जैसे मेरी आदत थी। ये लगभग 35 साल पहले
0: ये
1: की बात,
0: शौक के कारण हुआ।
1: शौक के कारण। तब वीडियो कैमराज और ये सब अभी आए तो थे, लेकिन कॉस्टली बहुत थे, होते थे,
0: लोगों की पहुंच से थोड़ी बाहर
1: पहुंच से
0: थी।
1: बाहर होते थे। मैंने इस इलाके में ब्रज का जो ये बेल्ट है इसमें घूमना शुरू किया, तो मैंने देखा वहां पर कुछ डांस फॉर्म्स, डांसेस हो रहे हैं गांव में, चौक पे, कहीं पे भी गीत, कहीं पे चौपाई हो रही है, खासकर होली के दौरान। तो
0: जी
1: वो जाकर मैंने किया, साल भर पहले देखा, फिर दूसरी बार लगा कि मुझे तो ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो हमने वो कैमरा लेकर गए हायर, फिर उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद फोटो भी खींच लिए। सब कुछ करने के बाद अब समझ नहीं आया कि उसका क्या करें। तो कई साल तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, यहाँ तक कि वो मेरा जो फॉर्मेट VHS था वो पोल्यूट होने लगा। फिर हमने उसको CD में ट्रांसफर किया, फिर भी डाटा बहुत लॉस हो गया। और उसके बाद समझ आया मुझे कि इसको मैं 2012 में, वो 92 में मैंने रिकॉर्ड किए, और 2012 में जाकर समझ आया कि इसको मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ।
0: और अनुप जी, मुझे लगता है कि अगर हम इनको नहीं संजो कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम किस प्रकार का ज्ञान दे पाएंगे, उनको हम किस प्रकार बता पाएंगे कि हमारी पहले वाली पीढ़ी जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, वो आज के आधुनिक दौर में वो गुम होते से नजर आएंगे और आज की पीढ़ी को वो समझ में नहीं आएगी और हमारी संस्कृति और हमारी लोक कलाएं, गाथाएं, रीति रिवाज, उसी के कारण तो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनती है। क्या आप मानते हैं ना?
1: बिल्कुल बनती है। और जो मैं आपको बता रहा था अभी, कैसे हमने 12 साल बाद उसका हमें समझ में आया कि हम इसका क्या करें, तो हमने एक कार्यशाला लगाई
0: अच्छा,
1: जिसमें 90 के करीब स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से इकट्ठे किए।
0: ये किस क्षेत्र के थे?
1: ये ब्रज के इलाके
0: अच्छा,
1: का
0: ब्रज के इलाके
1: रसिया
0: के।
1: लोक नृत्य, गायकी में वो गाहे होते हैं और नृत्य में वो रसिया। तो अब वो जब हमने इकट्ठे 90 लोग करके डांस के कोचेस बुलाए, डांस के जो कोच कॉलेजेस में तैयार कराते हैं, तो उनको बुला लिए, उनको साथ में पहले वो दिखाए वीडियो के, देखो ये डांस कैसे कर रहे हैं। खुद मैंने गाँव में गया तो मैंने खुद सीखा हुआ था, तो हमने खड़े होकर मंच पे 90 लोगों को सिखाया कि ये स्टेप ऐसे चलते हैं, दायां पांव ऐसे चलता है, ऐसे इस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। और ये करने के बाद 90 लोगों की हमने कोरियोग्राफी तैयार कराकर, ये उससे पहले कॉलेज में बता दिए सब जगह कि ये हम नया करने जा रहे हैं और अगले साल से इस विधा की प्रतियोगिता शुरू की जाएगी, इसलिए अपने अपने बच्चों को भेज दीजिएगा, हम उनकी टीम तैयार करा देंगे।
0: जी
1: तो उनको लालच भी हो गया, साथ में वो कोचेस जो है उनको ट्रेंड किए, उसको डांस का 90 लोगों का परफॉर्मेंस तैयार करके रसिया का हमने CD बना ली। CD बनाकर हर कॉलेज में उठाकर वो CD भेज दी, और वो CD वहां भेजने से क्या हुआ कि अगले साल जब प्रतियोगिता करी, लोगों ने वो CD देखकर प्लस वो जो कोचेस तैयार किए थे वो देखकर, वहां पर रसिया की आज प्रतियोगिता होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है लेकिन हरियाणा में रसिया की नृत्य की प्रतियोगिता होती है। और इसी को देखकर मेरे YouTube चैनल को गुजरात में किसी ने लोक नृत्य रसिया तैयार करा, यही देख देखकर। तो
0: अनुप
1: ये साइंटिफिक जो हम कहते हैं ना, ये विधाएं जो वैज्ञानिक सोच जो है
0: जी,
1: वो वैज्ञानिक होना जरूरी है, मतलब उपकरण नहीं, वैज्ञानिक सोच
0: सोच
1: होना जरूरी है।
0: जी
1: उस वैज्ञानिक सोच को आप देखकर क्या से क्या उसमें ट्रांसलेट कर लेते हैं,
0: जी
1: ये एक उपलब्धि।
0: अनुप जी, पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाण में तो अंतर होता ही है, और किसी लोक मान्यता या परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करने में किन किन बातों की परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और ये सब जो आप प्रिजर्व करते हैं उनको सत्यापित किस प्रकार करते हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि उनको प्रिजर्व किया था और उसके बाद आपने उस क्षेत्र के लोगों को बुलाया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: 10 साल इसमें गुजर गए तो वहां जाकर देखा कि वहीं ये लोक नृत्य नहीं हो रहा है, कहाँ। तो वो 10 साल पहले रात के अंधेरे में जाकर हमने शूट किए और हमें मिल गया, और तब हमारे पास कोई सेंक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जेब से पैसे खर्च करके और जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।
0: जी
1: कब क्या जरूरत पड़ जाए और कब क्या महत्वपूर्ण हो जाए, तो मैं युवाओं को इस दिशा में जरूर कहूंगा कि जब भी मौका लग जाए ये मत सोचो कि ये तुम्हारी जरूरत नहीं है, आगे जाने वाले समय में उसकी आवश्यकता भी हो सकती है और उसके महत्व भी तभी जाकर पता
0: वैल्यू
1: लगता है,
0: भी
1: वैल्यू
0: वैल्यू
1: भी तभी पता लगता है।
0: अनुप जी, आज तो डिजिटल AI का युग है, AI ऑडियो विजुअल का
1: जी
0: युग
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: और रिकॉर्डिंग जो आर्काइव्स है वो भी बहुत, आप एक सर्च करते हैं, नेट में जाके सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको प्रिजर्व करने के लिए या फिर कहीं से रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम लगता है?
1: देखिए, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तो यही है कि

0: जो जीवंत चीज है तो उसको जीवंत उससे ही उसको प्रिजर्व किया जाए,
1: यानी कि
0: या
1: आप थोड़ी सी एआई को थोड़ा सा साइड करना चाहते हैं।
0: पहले क्षण में तो यही है कि वो विधा जैसी है
1: जी,
0: वैसी की वैसी फिर से खड़ी कर ली
1: यानी
0: जाए,
1: कि ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी है।
0: ओरिजिनलिटी है। उसके बाद जब वो ओरिजिनल हमने कर लिया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता है, फिर उसके बाद हम उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करें। मैंने सांग है, गीत है, जो भी है, जब तक उसमें हम एक परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम उसको पॉप भी साथ में, वो जो फोक, तो जो युवा है उसको तो हर रोज नया कुछ चाहिए
1: ये
0: ना।
1: फ्यूजन की बात कुछ कुछ हो सकती है।
0: फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि युवा को तो एक ही चीज में कैसे बांध के रखते, युवा क्या हमें भी नहीं बांध के रख सकते, हम भी तो फैशन की तरह कपड़े बदलते हैं, हम भी तो पहनावे बदलते रहते हैं, घर का रहने का 10 साल में चीज पुरानी लगने लगती है, हम फिर से बदल लेते हैं उसको अपने लिए सुखदाई बनाने के लिए। तो चाहे संस्कृति है, कल्चर है, इन सब में भी जब तक ये सब विधाएं साथ में, हम अपनी टेक्नोलॉजी, हम अपना ये सब चीजों का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक वो सामयिक नहीं रहेंगे।
1: अनुप जी, क्या लोक संस्कृति को आधुनिक मंच और तकनीक से जोड़ते समय उसकी मौलिकता जो आपने रिकॉर्ड किया है, जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि एआई का दौर है, और चूंकि आपने ये भी कहा कि उसमें थोड़ी सी आधुनिकता तो होनी चाहिए और उसका उपयोग सही उपयोग होना चाहिए, तो ये सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए भी सावधानियां जरूरी है। ये भी तो है, क्योंकि अगर हम मौलिकता खत्म कर दिए तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये पहले कहाँ से था, किस माध्यम से, किस क्षेत्र से, किन लोगों के जरिए, किस समुदाय के जरिए आया था।
0: देखिए, मौलिकता अगर नहीं होगी ना तो वो आपको खुशबू देगी ही नहीं। सिर्फ एआई से काम नहीं चलेगा, ना ही चलता है। मैंने अभी एक फिल्म देखी जो सिर्फ एआई बेस्ड है, उसमें कोई भी एक्टर्स भी और कोई भी किसी तरीके के बिल्डिंग स्ट्रक्चर, एनिमल, वट एवर जो उसमें डिस्प्ले पे है, वो ओरिजिनल नहीं है, एआई बेस्ड है। लेकिन वो एआई बेस्ड देखकर उसमें जान नहीं लगती, थ्रिल आ जाता है, एक्शन आ जाता है, रोमांच आ जाता है, लेकिन वो जान नहीं आती है। वो जान तभी आती है जब उसमें ओरिजिनल जीवंत एलिमेंट होते हैं।
1: तो किसी भी परंपरागत ज्ञान को, रीति रिवाजों को और वैज्ञानिक रूप से दस्तावेज के रूप में लाने के लिए इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं?
0: सबसे पहला तो है कि साइंटिफिक हो, दूसरा रेलेवेंट हो, दूसरा सोसाइटी के लिए यूजफुल हो,
1: यूजफुल हो।
0: रेट्रो नहीं हो, सोच बदलनी है, वो सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। एक समय में हम स्त्रियों के लिए, युवतियों के लिए हम दूसरी सोच रखते थे
1: जी
0: और आज दूसरी सोच।
1: अनुप जी, इसमें स्थानीय समुदाय जो शोधकर्ता है, वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक संस्थानों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: सभी संस्थानों को अपना अपना कंट्रीब्यूट जो भी संसाधनों के द्वारा कर सकता है, ताकि एक नई सोच क्रिएट हो और समाज के लिए सदुपयोगी हो, समरसता की हो, समाज में एक बराबरी का हो, किसी के साथ जिसे भेदभाव ना हो, ऐसा हमारा समाज हो, ऐसी साइंटिफिक सोच हमारी आपस में होनी चाहिए।
1: अनुप जी, युवाओं को लोक संस्कृति, पारंपरिक ज्ञानों और ये जो रीति रिवाज हैं उनको जोड़ने के लिए और करीब से और अच्छी तरह से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? युवाओं में किस प्रकार से रुचि बढ़ाई जा सकती है?
0: बच्चों के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो ट्रैवल करें, वो सिर्फ अपने गांव या अपने शहर में ना रहकर, बल्कि हम जहां तक हो सकता हो परिवार में या हम अपने शहर में बाहर उनको घूमने के लिए मौके दें। जितना हम उनको बाहर का संसार दिखाएंगे
1: जी
0: वो उतने विशाल हृदय के होंगे और उतने ही खुली सोच के होंगे,
1: जी
0: वो समाज के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए उतने ज्यादा उपयोगी होंगे।
1: तो निश्चित रूप से हमारी ये जो परंपरा है, हमारी ये जो ज्ञान है, हमारी ये जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, गीत गोविंद है, गीत संगीत है, वो और अधिक संरक्षित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच पाएगी। अनुप लाठर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपने इतना वक्त निकाला और हमारी लोक संस्कृति परंपराओं के दस्तावेजीकरण के विषय में आपने ढेर सारी जानकारियां दी, बातचीत की, हमसे अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। ये समय है पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। और अब ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके हैं

0: पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, ना ही उसकी कार्यवाही में भाग लिया और ना ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री जोशी ने NCERT को भारत की स्कूली शिक्षा की आधारशिला और युवा मस्तिष्कों की पीढ़ियों को संवारने वाला एक अहम संस्थान बताया। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मैच में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will address 26 Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and

0: गाने के साथ कई खतों को शामिल, कई मेल्स को शामिल करना होता है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कई बार हम आप सभी की अपनी अपनी पसंद के गानों को भले न सुनवा पाएं, लेकिन आपके ईमेल अवश्य शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ी देर में, उससे पहले आइए ये संदेश सुन लेते हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जानकार बनिए और सतर्क रहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। जो टेक्नोलॉजी हमें सहूलियतें दे रही है उसे हम अपनी मुश्किल का कारण न बनाएं। ये तभी होगा जब हम सतर्क रहें, सावधान रहें और सरकार के द्वारा जो भी प्रचार माध्यम है उनसे जो सूचनाएं जागरूकता से संबंधित प्रसारित की जाती हैं उनको ध्यान से सुनें और उनका पालन भी करें। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज दो बड़े लेखकों को भी हम याद करेंगे इस कार्यक्रम के बहाने। एक राही मासूम रजा और दूसरे हैं दुष्यंत कुमार। दोनों ही बड़े रचनाकार जिन्होंने वर्तमान समाज में जो चीज़ें थीं उनके आधार पर लोगों को जागरूक करने, लोगों को समझ, लोगों की समझ बढ़ाने और साहित्यिक जो साहित्य को समृद्ध करने का काम उन्होंने अपने दौर में किया। तो सबसे पहले राही मासूम रजा को हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि महाभारत के संवाद जो आज भी लोगों के जबान पर हैं वो संवाद राही मासूम रजा ने लिखे। तो उन्हें याद करते हैं। अपनी लेखनी से आम आदमी के जीवन, उसकी संवेदनाओं और समाज की सच्चाइयों को राही मासूम रजा ने बहुत करीब से देखा और लिखा। राही मासूम रजा का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। उनका बचपन जो था उसके आसपास का सांस्कृतिक वातावरण जो था उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। उनके उपन्यास में गांव, समाज, रिश्ते और बदलते समय की तस्वीर दिखती है। आधा गांव उनका एक चर्चित उपन्यास है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन और सामाजिक बदलावों को बेहद संवेदनशीलता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। राही मासूम रजा की भाषा उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। उनकी लेखनी में हिंदी और उर्दू का ऐसा सहज मेल था जो भारत की साझा संस्कृति और बोलचाल की जिंदगी को सामने लाता है। साहित्य के साथ साथ उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न के लिए भी लिखा। लोकप्रिय धारावाहिक जैसा कि मैंने कहा महाभारत के संवादों ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। उनके लिखे संवादों में भाषा की गरिमा भी थी और साथ में मानवीय संवेदनाओं की गहराई भी। राही मासूम रजा केवल एक लेखक नहीं बल्कि उस भारत की आवाज़ थी जहाँ अलग अलग भाषाएँ, संस्कृतियाँ और परंपराएँ मिलकर एक साझा पहचान बनाती हैं। उनकी रचनाएँ आज भी हमें इंसान को इंसान की तरह देखने और समाज को संवेदना के साथ समझने की प्रेरणा देती हैं। राही मासूम रजा की स्मृति को नमन करते हुए हम उनसे ये सीख सकते हैं कि साहित्य की असली ताकत इंसान को इंसान के और करीब लाने की है। तो उन्हीं का लिखा एक गाना आपको सुनवा रहे हैं जिसे आवाज़ दी है येसुदास ने। फिल्म आलाप से ये गीत हमने लिया है और इसका जो संगीत है वो सुप्रसिद्ध संगीतकार जयदेव ने तैयार किया है।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत और संगीत जयदेव का, जो शास्त्रीय धुन पर आधारित येसुदास की आवाज़ में आपने सुना। और इसके लिए आप सभी श्रोताओं का ईमेल हमने शामिल किया, बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, और राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, मेरठ उत्तर प्रदेश से अनिल जैन, संयम मुस्कान और जीवयम जैन, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, गुरुवंश सिंह जोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से शिवागो, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस और एकांश गवाणकर, बदलापुर महाराष्ट्र से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत, अर्जुन और टुक टुक, नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, एकांश, सुमित और ध्वनि गवाणकर। आप सभी की पसंद पर यह गाना सुना। और अगला गाना भी दोस्तों हम आपको सुनवा रहे हैं येसुदास के स्वर में ही, बावरी फिल्म से। लता मंगेशकर और येसुदास की खूबसूरत आवाज़ें इस गीत को और भी और प्यारा बनाती हैं, और ऐसा गीत जो कहें कि हम सुनकर उस गीत में खो जाते हैं। और संगीत बहुत ही प्यारा सा संगीत खयाम का है। आइए सुनते हैं ये गीत, और सुनवाने के लिए आप सभी का ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। ईमेल भी हम शामिल कर लेते हैं। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजुल, समीक्षा और आराध्या साहू, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु और रोनिका, अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, हीरामय शंडे और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गुंडाने, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी, और भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी जंघेल, अमित, शकुन जंघेल और आरुषि, ओशिका, अंजलि जंघेल।

वैचारिक बातें हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार की हैं। बहुत कम उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था, 30 दिसंबर 1975 को। लेकिन इतने कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य पर श्रोताओं ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी कायम है। और दुष्यंत कुमार का जो साहित्य के प्रति लगाव था, रुचि थी, उन्हें कविता, गजल, नाटक और कहानी के क्षेत्र में उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने की प्रेरणा दी। 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राजपुर नवादा गाँव में उनका जन्म हुआ था। दुष्यंत कुमार की रचनाओं में अपने समय का समाज बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने आम आदमी की बेचैनी, सपनों और संघर्षों को अपनी आवाज़ दी। उनकी कविताओं और गज़लों में व्यवस्था के प्रति असंतोष तो था, लेकिन उनके साथ बदलाव की उम्मीद भी दिखाई देती है। उनका गज़ल संग्रह साए में धूप हिंदी साहित्य की बेहद चर्चित कृतियों में माना जाता है। दुष्यंत कुमार ने गज़ल को केवल प्रेम और निजी भावनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक सरोकारों और जनजीवन से जोड़ा। यही वजह है कि उनकी पंक्तियाँ साहित्य की दुनिया से निकलकर आम लोगों की जुबान तक पहुँची। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।

हल्ला बोल फिल्म का ये गाना भी वही बात कहता है जो बात दुष्यंत कुमार जैसे रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से कहते हैं। और दोस्तों, हम सभी प्रायः देशभक्ति की बातें करते समय सिर्फ आज़ाद भारत की लड़ाई और सीमाओं पर शहीद होने वाले, सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ने वाले भारतीय सिपाहियों की तरफ देखते हैं और हमें लगता है कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम जहाँ और जो भी भूमिका में हैं उस भूमिका को अपनी निष्ठा, ईमानदारी और पूरे मनोयोग से अगर हम निभाएं तो मुझे मुझे लगता है, हम सभी को लगता है कि देश के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि देश एक एक व्यक्ति से बनता है और एक एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाए तो समाज पूरा मजबूत होता है, और समाज जब मजबूत होता है तो पूरा राष्ट्र सशक्त होता है। राष्ट्र तभी सशक्त हो पाएगा जब हम आप सभी मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए भी हम बोलते रहेंगे। ये गीत हमने सुनवाया आप सभी श्रोताओं की पसंद के साथ, दिल्ली से आईके इंदर और आरएस स्वीटी, नई दिल्ली पश्चिमी से रविंद्र छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने ईमेल किया, और जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान और गर्वी तथा हिमाक्ष चौहान ने, बीड शहर महाराष्ट्र से किशन सकपाल, आशा सपकाल और सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, तमन्ना भाटिया और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की पसंद पर। और अब अगला जो गाना आपको सुनवा रहे हैं वो है कभी कभी फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें, साहिर लुधियानवी का गीत और खयाम का संगीत, बहुत ही प्यारा सा गीत है, आइए सुनते हैं।

ये प्यारा सा नगमा आपने सुना कभी कभी फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में, और इसके लिए हमने आप सभी श्रोताओं के ईमेल शामिल किए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, और अनिल कोहले जी की बड़ी शिकायत है कि कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन से कोशिश कर रहा हूँ और 50 से 100 ईमेल भेजने के बाद भी नाम शामिल नहीं हुआ है। क्या आज शामिल होगा? तो अनिल जी, आपका नाम शामिल किया है हमने, और इसीलिए प्रॉब्लम होती है जब आप लोग 10 10 20 20 मेल एक एक कार्यक्रम में भेजते हैं, तब कई श्रोताओं के नाम रह जाते हैं। तो आप भी और सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं निवेदन यही करूंगा कि एक ही ईमेल भेजें अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो आपका नाम शामिल हो और ज़्यादातर श्रोताओं के नाम शामिल हो पाएं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह और रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह। जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन अंसारी, रईसा नाज, मुजक्किर, रईसा मजाहिर, मजहर आसिम और सुमैया महक। आप सभी की पसंद पर हमने ये गीत सुना, और कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, रफ़ी, और रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। आइए सुनते हैं।

ये गीत आपने सुना अभी मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, और सुनवाने के लिए आप सभी श्रोताओं का ईमेल हमें मिला था, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन डब्बू, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना, श्रीनगर से साहिल डार और उर्फी तथा सबीना ने भी ईमेल किया, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, राजा दास, रानी मानिकपुरी, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविका सिक्का, और एक ईमेल प्रकाश गोगिया जी ने किया, और ये कह रहे हैं कि जब केवल एक बार संदेश भेजने पर आप नहीं पढ़ते हैं तो 5 बार या 7 बार भेजना ही पड़ता है, फिर आप शिकायत करते हैं कि इतनी बार क्यों भेजा। तो देखिए, अब 5 बार 7 बार भेजेंगे तो भी हो सकता है कि छूट जाए, और उसमें ज़्यादा गुंजाइश रहेगी कि ज़्यादा श्रोताओं के ईमेल हम शामिल ना कर पाएँ। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर कई बार होता है हमारे पास 400-500 ईमेल आते हैं, अब आप सोचिए उसमें सभी के ईमेल तो शामिल होने ही नहीं है, और अगर सभी लोग 4-5 बार या 10 बार भेजेंगे तो श्रोता कितने हैं, 50-60, और संख्या आ गई हमारे पास 400, तो उसमें से फिल्टर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी के नाम शामिल हो पाए।

सभी की पसंद हम शामिल कर पाएँ, तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक ही बार ईमेल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, गीत कहें या कव्वाली कहें, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और राहुल देवबर्मन ने संगीत दिया, और ये फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

एटा उत्तर प्रदेश से नबी हसन, सहनाज नवेद हसन, सुहेल अनम, यशफ रसीद बारशी, जुबैर अली, सबीहा अंजुमन खान। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और छिंदवाड़ा से नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय और हर्षिता लाम से। आप सभी की पसंद पर हमने अभी सुना, ये फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन, और इसका ये खूबसूरत सा गीत, ये कव्वाली मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में, साहिर लुधियानवी के बोल और आरडी बर्मन की तर्ज। और कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रोग फिल्म से।

0: और हम आपको सुना दें उन श्रोताओं के नाम जिनकी पसंद पर ये गीत आप सुन रहे हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, खरगोन मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुढ़ाना, खंडवा मध्य प्रदेश से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश प्रीतेश और संघई परिवार, यवतमाल से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्ट्रो, रोजी रिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस रिकेस्ट्रो, भंवरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन और मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में प्रेम रोग के फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मुझे यानी देवेंद्र त्रिपाठी को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक श्रोताओं 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है एससीओ के 25 वर्ष शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन और रूस सहित 10 देश शामिल हैं। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा

कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक

0: बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर श्री देसाई ने कहा कि बातचीत तकनीकी स्तर पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष उत्पाद वर्गीकरण और शुल्क नियमों सहित विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि पर गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश हो सकती है। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The 26th annual summit of the Shanghai Cooperation Organization SCO begins today in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. The summit has been held to mark the 25th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization. The theme of this year's SCO summit is 25 years of the SCO, together towards sustainable peace, development and prosperity. The SCO has 10 member countries including India, China and Russia. India has been a full member of the SCO since 2017. Prime Minister Narendra Modi will address the SCO summit today. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
2: Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi today arrived at the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit venue in Bishkek, where he received a warm welcome. PM Modi and Chinese President Xi

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सबरस, ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहाँ से आप सशस्त्र सीमा बल SSB के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं अथर सईद और डी एंड्रू। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, मैं अतहर सईद अपने सहयोगी कमेंटेटर डी एंड्रयू के साथ आकाशवाणी की ओर से विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। आज का ये अलंकरण समारोह माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उनकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि गणमान्य व्यक्तियों का आगमन का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। एंड्रयू,
2: आज का दिन हमारे बल के लिए
3: इनफैक्ट द चीफ गेस्ट सेंट्रल होम सेक्रेटरी श्री गोविंद मोहन हैज अराइव्ड एंड सीटेड नेक्स्ट टू हिम आर मिस्टर अनीश दयाल द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड डॉक्टर राजेंद्र कुमार द सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट एंड टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग द इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ द सशस्त्र सीमा बल एंड दिस इज बीइंग हेल्ड इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन। द हॉल इज पैक्ड विद पर्सनल ऑफ द SSB इन द खाकी यूनिफॉर्म्स।
1: बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है जब राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और देश सेवा के लिए समर्पित सशस्त्र सीमा बल के वीर अधिकारियों और जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं, साहस और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें अलंकृत किया जाएगा। समारोह में माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है।

श्रोताओं के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी। बाद में इसे भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी इसे सौंपा गया।

0: That was the
1: आप
0: anthem
1: सभी
0: of the
1: यहाँ अपना
0: Sahasrasima
1: स्थान
0: Bal
1: ग्रहण
0: or the SSB song.
1: और अब अतिथि परंपरा
0: And
1: का
0: now the welcome
1: अभिनंदन
0: address
1: करते
0: by the
1: हुए
0: Director General, Sahasrasima Bal, Shri Sanjay Singhal, IPS officer of the 1993 branch.
2: हम देख पा रहे हैं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह सचिव इस समय यहाँ पर मौजूद हैं. उनको उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका आगमन का आभार व्यक्त किया जा रहा है, उन्हें पौधा भेंट किया जा रहा है और यहाँ पर उपस्थित जन तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं. सभी गणमान्य व्यक्ति एक बार फिर अपने आसन पर बैठते हुए
3: असामाजिक तत्वों से लोहा लेने तक सशस्त्र सीमा बल राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है. अलंकरण समारोह के इस विशेष अवसर पर भारत के केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी की उपस्थिति न केवल इस स्तंभ को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि आज समस्त सशस्त्र सीमा बल आपकी उपस्थिति से अभिभूत है. महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल परिवार के इसी भाव को व्यक्त करने तथा स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं.
2: और अब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री संजय सिंघल द्वारा स्वागत संबोधन हम सुन पाएंगे. माइक्रोफोन पर श्री संजय सिंघल.
4: आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशकगण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशकगण, विशिष्ट अतिथिगण, आज अलंकृत होने वाले सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता, उनके गौरवान्वित परिवारीजन, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे साथी देवियों और सज्जनों, आप सभी का सशस्त्र सीमा बल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणवश माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, परंतु उन्होंने वीरता पदक के अलंकरण अधिकारियों, कर्मियों और परिवारिक जनों को एवं समस्त एसएसबी परिवार हेतु अपनी हार्दिक शुभेच्छाएँ प्रेषित की हैं. मैं समस्त एसएसबी परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनकी शुभेच्छा हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. मैं माननीय केंद्रीय गृह सचिव महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी उपस्थिति से हमारे अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों का उत्साहवर्धन किया. आज हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर है. आज न केवल हमारे 18 साथियों को वीरता एवं पराक्रम

0: के सर्वोच्च समर्पण के लिए एवं 5 साथियों को डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए सम्मानित किया जाएगा, बल्कि राष्ट्र सेवा की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाली 248 करोड़ रुपए लागत की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का भी आभासी माध्यम से महोदय द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में भारत चीन युद्ध के पश्चात हुई थी और वर्ष 2001 में बल को भारत नेपाल तथा वर्ष 2004 में भारत भूटान की कुल 2450 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। इन सीमाओं की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं। भारत नेपाल सीमा पर प्रतिदिन लगभग 46,000 वाहन और 3.25 लाख से अधिक व्यक्ति तथा भारत भूटान सीमा पर लगभग 8,000 वाहन और एवं 50,000 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन होता है। इतनी बड़ी संख्या में वैध आवागमन के बीच सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा संवेदनशीलता और मित्र संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारे अधिकारी और जवान मादक पदार्थों, हथियारों, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, अवैध आवर्जन तथा अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही सशस्त्र सीमा बल आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, CI ऑपरेशंस, इलेक्शन ड्यूटी, कानून व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दायित्वों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान में नेपाल में आई भयावह त्रासदी से निपटने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में SSB के बचाव व राहत दल अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। आज सुरक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हाइब्रिड वारफेयर, साइबर एवं इन्फॉर्मेशन वारफेयर, ड्रोन आधारित खतरे और तस्करी के नए नए तौर तरीके हमारे सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में सशस्त्र सीमा बल का आधुनिकीकरण निरंतर जारी है। बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक निगरानी प्रणालियों, आधुनिक संचार साधनों, ड्रोन एवं अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हमारी परिचालन क्षमता को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप तकनीकी दक्षता और आधुनिक साधनों का समावेश हमारी प्राथमिकताओं में है। सीमावर्ती क्षेत्र में विन हार्ट्स एंड माइंड हमारी कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिविक एक्शन प्लान के माध्यम से हम सीमावर्ती नागरिकों तक सुरक्षा के साथ साथ विकास और विश्वास का संदेश पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा लक्ष्य केवल सीमाओं को सुरक्षित करना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत, सजग समाज के संकल्प के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एक जागरूक और सशक्त सीमावर्ती समाज का निर्माण करना भी है। SSB ने विगत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 28 स्वर्ण, 25 रजत एवं 40 कांस्य पदक समेत कुल 93 पदक जीते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए विशेष प्रदर्शन करने वाले 19 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग, नशा मुक्ति भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी SSB निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं गृह विभाग के मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जल कल्याण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण और कार्मिक कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। सशस्त्र सीमा बल इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में अपना जिम्मेदारी के अनुरूप पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है। आज इस अवसर पर मैं गृह मंत्रालय के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के कारण ही सशस्त्र सीमा बल आज एक आधुनिक, प्रोफेशनल और जन केंद्रित सीमा प्रहरी के रूप में उभरा है। अंत में मैं पुनः गृह सचिव महोदय का SSB परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी गर्मयमयी उपस्थिति और प्रेरणादायक मार्गदर्शन से आज के इस अवसर को विशेष बना दिया है। आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय SSB।
1: That was a welcome address by the Director General, Shri Sanjay Singhal, an IPS officer of the 1993 cadre. And now, we have the online inauguration of the SSB projects by the Honorable Chief Guest, the Home Secretary, Shri Govind Mohan. And this will be followed by unveiling of the SSB e-magazine.
2: बहुत ही गौरव के क्षण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभागार

0: जवानों से खचाखच भरा हुआ है और गणमान्य व्यक्ति मंचासीन इस समय हम देख पा रहे हैं कि समारोह के मुख्य अतिथि और माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन महोदय एसएसबी परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य।
1: Press the button and there it comes on the screen right behind them and it has been inaugurated and what a beautiful sight it is over here with people clapping and of course the SSB
2: सशस्त्र सीमा बल परिसर फरीदाबाद हरियाणा में 440 अत्याधुनिक पृथक आवासीय भवन बनकर तैयार हैं। हर जरूरत का सम्मान करते हुए इस परिसर में टाइप 2 के 336 आवास, टाइप 3 के 96 आवास और अधिकारियों के लिए टाइप 4 के 8 विशिष्ट आवास, सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीसीटीवी सर्वेलेंस, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक भव्य मल्टीपर्पस हॉल के निर्माण का कार्य 170 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ अधिकारी आवासीय मैस तथा टाइप 2 के 48, टाइप 3 के 6 एवं टाइप 5 के 3 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य 31 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 30वीं वाहिनी दिरांग अरुणाचल प्रदेश में टाइप 2 के 80 आवास एवं टाइप 3 के 28 आवास के निर्माण का कार्य 46 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। यह उपलब्धि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है।
0: तो हमने देखा कि एसएसबी परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन यहां पर हुआ माननीय केंद्रीय गृह सचिव द्वारा। और अब सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की ई स्मारिका का अनावरण माननीय श्री गोविंद मोहन जी के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत ही शानदार दृश्य यहां पर नजर आ रहा है विज्ञान भवन नई दिल्ली के इस सभागार में।
1: And now, the chief guest, the secretary, he is going to unveil the e-magazine of the SSB.
0: एसएसबी की स्मारिका का अनावरण इस समय स्क्रीन पर पत्रिका के पृष्ठ उलटते हुए। बहुत ही गौरवशाली क्षण यहाँ पर है। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, और यही भावना यहाँ पर नजर आ रही है। यही भावना बल के कार्यों में नजर देती है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ विश्वास, सहयोग और सौहार्द का संबंध बल यहाँ पर रखता है।
1: That was the unveiling of the SSB e-magazine, and now we're going to start the investiture ceremony. And the Central Home Secretary Shri Govind Mohan is the chief guest for this gathering over here, and he's going to give away the awards to the ones who have really done their yeoman work, and of course for the selfless duty towards the safety of the country and of a contribution towards the security of their motherland, that is India. And now it will be starting in a very short while, and of course about 18 people are going to get their awards for the fantastic service which they have done for the safety of the country and of course the selfless contribution towards the security of their motherland.
0: असाधारण साहस, उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य के प्रति अदम्य निष्ठा का प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाना यकीनन पूरे बल के मनोबल को नई ऊंचाई प्रदान करता है।
3: 23 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के माटला रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में चल रही रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के पास सीओबी कोसरुंडा 33वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल केवटी के 30 जवानों की रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन पार्टी पर लगभग 130 से 150 नक्सलियों ने हथियार व गोला बारूद लूटने के उद्देश्य से घात लगाकर हमला किया, जिसके उपरांत तत्काल ही उप निरीक्षक चंद्रमोनि मजुमदार व उनकी टीम ने अत्यंत दिलेरी के साथ बेहतर रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए न सिर्फ उस हमले को विफल किया बल्कि 3 दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया। इनके अदम्य साहस

0: साहस, दृढ़ता और असाधारण कार्य हेतु इन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है।
1: इसी क्रम में दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस हेतु मरणोपरांत वीरता पदक हेतु आमंत्रित हैं दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी शर्मा।

0: In fact, every person who's getting
1: सहायक
0: the award
1: उपनिरीक्षक
0: is
1: अमन
0: getting a
1: कुमार
0: scroll and a medal on their window they retired, and they walk with the real attention. They give the salute, the chief guest, and he puts the medal on their chest. And he gives them the scroll, and they salute the chief guest, the Home Secretary, and they walk back. One person was given posthumously, whose wife came and collected the scroll
1: मुख्य
0: and the medal.
1: आरक्षी नरेंद्र,
2: केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन की गरिमा में उपस्थिति में उनके करकमलों से यहाँ पर अलंकरण समारोह चल रहा है। करतल ध्वनि से यहाँ पर उपस्थित जवान उत्साह बढ़ाते हुए सदैव कदमों से मंच
3: दिनांक
2: की ओर
3: 11
2: बढ़ते हैं।
3: फरवरी 2021 को बिहार के लखीसराय के चिरौन कुंडासी के घने व दुर्गम जंगलों में नक्सली गतिविधि के संदर्भ में पुख्ता खुफिया जानकारी पर कार्यवाही करते हुए उप कमांडेंट हेमंत कुमार और उनकी टीम ने उत्कृष्ट शौर्य, रणनीतिक समझ और साहस का परिचय देते हुए एक सशस्त्र नक्सली को मार गिराया। वह एक इंसास राइफल तथा भारी मात्रा में गोला बारूद के बरामदगी में सफलता हासिल की। उप कमांडेंट हेमंत कुमार व उनकी टीम के 4 सदस्यों को उनके असाधारण वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान देते हुए वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है।
2: ये क्षण केवल
1: आमंत्रित
2: उनके लिए
1: हैं
2: ही
1: उप
2: नहीं,
1: कमांडेंट हेमंत कुमार।
2: बल्कि उनके परिवार, उनके साथियों और पूरे सशस्त्र सीमा बल के लिए गर्व का क्षण है। वर्दी केवल एक परिधान नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। सभागार में उपस्थित जवान करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए उत्साहवर्धन करते हुए
0: द मोटो ऑफ SSB इज सर्विस,
1: सहायक कमांडेंट सैयद अफसर,
0: ब्रदरहुड। दे रिस्क द लाइफ, दे फाइट अगेंस्ट द नक्सलाइट्स हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बट फॉर देम Service comes first, risking the life for the safety of the country. And for that, they are being awarded today. They are getting a scroll and a medal.
2: सीमा पर तैनात हमारे जवानों का जीवन कठिन
1: आरक्षी
2: के
1: राउत
2: बीच
1: योगेंद्र रामचंद्र
2: निरंतर सतर्कता और सेवा का जीवन है। अलंकरण समारोह यहाँ पर विज्ञान भवन के सभागार में गर्व का क्षण, गौरवशाली क्षण तमाम जवानों के लिए, सशस्त्र सीमा बल के लिए और हम सब के लिए।
1: आरक्षी जुनमुनी बरुआ,
2: सदे हुए कदमों से सीना ताने हुए ये जवान अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के सामने मेडल और प्रशस्ति पत्र उनके हाथ में, छायाकार इन क्षणों को कैद करते
1: हुए। रितेश कोंगारी,
0: दिस सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर टू ऑनर द पर्सनल्स फॉर देयर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ देयर मदरलैंड एंड द हॉल ऑफ कोर्स इट्स पैक्ड, यू कैन सी, इन फैक्ट यू कैन जस्ट इफ यू वर हियर यू वुड हैव रियली एंजॉयड।

0: seeing the sight over here, all in the khaki uniforms, sitting in a very disciplined manner. Of course, when you're in the army life, you always lead a very disciplined life.
1: दिनांक 8 जून 2022 16वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल को विभिन्न स्रोतों से पुलिस स्टेशन गढ़ी के वीरगोड़ा गांव के अंतर्गत 4 से 5 नक्सलियों के एक समूह के उपस्थिति के संदर्भ में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कमांडेंट 16वीं वाहिनी के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त आसूचना के आधार पर नक्सलियों के संभावित स्थान पर दबिश दी और विपरीत परिस्थितियों में भारी गोलाबारी के बीच अपने जान की परवाह न करते हुए एक कुख्यात नक्सली मतलू तुरी को मार गिराया व भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया। उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देते हुए निरीक्षक शिवशंकर कुमार व उनकी टीम के 4 सदस्यों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित है निरीक्षक शिवशंकर कुमार।

0: निरीक्षक कुमारजीत।
1: कुमारजीत जी सदैव कदमों से मंच की ओर। कुमारजीत सिंह को पदक पहनाते हुए मुख्य अतिथि महोदय, सीने पर पदक, हाथ में प्रशस्ति पत्र और दिल में भारत की रक्षा का प्राण साफ नजर आ रहा है।
0: मुख्य आरक्षी अनिल कुमार कुंभार।
2: अनिल कुमार, he walks to the place where the secretary is standing, and of course he salutes, gives a crisp salute, and then he takes the award on his chest, and now the scroll is handed over to him, gives a salute to the home secretary, and marches out. In fact, the way they march.
0: Arakshi Ziaul Haq Ansari.
1: और अब जियाउल हक अंसारी मंच की ओर अग्रसर, सदैव कदमों से केंद्रीय गृह सचिव के सामने आज के मुख्य अतिथि के सम्मुख सीना ताने हुए, सीने पर पदक सजा, हाथ में प्रशस्ति पत्र और अद्भुत दृश्य को कैद करते हुए यहाँ पर छायाकार हाथ मिलाते हुए।
3: सितंबर 2022 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला जम्मू कश्मीर से ग्राम यादीपुरा पत्तन में खूंखार आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल अतिरिक्त परिचालन बल की मांग की गई। तत्कालीन कमांडेंट मुकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में त्वरित विचार विमर्श के पश्चात एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे अभियान की व्यूह रचना की गई। 29 राष्ट्रीय राइफल्स एवं विशेष अभियान समूह के साथ तालमेल बिठाते हुए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों, निरंतर मंडराते खतरे और दुश्मनों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलाबारी के बीच श्री मुकेश कुमार और उनकी जाबाज टीम ने अदम्य साहस, श्रेष्ठ रणनीतिक सूझबूझ और अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया। मुठभेड़ के दौरान अपने जान की परवाह न करते हुए की गई इस सटीक और घातक जवाबी कार्रवाई में भारी हथियारों से लैस दो कुख्यात आतंकवादियों यावर शफी भट्ट और आमिर हुसैन भट्ट को ढेर कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में स्वचालित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया।
0: कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इस अदम्य साहस, अद्वितीय शौर्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उप महानिरीक्षक श्री मुकेश कुमार एवं उनकी टीम के 3 सदस्यों को वीरता पदक से अलंकृत किया जाता है। आमंत्रित है उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार।
1: वीरता पदक के लिए मुकेश कुमार और उनके 3 साथी इस समय मंच पर नजर आते हुए मुकेश कुमार के सीने पर पदक टांगते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और सारे ही जवान कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हुए अपने साथी का अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है।
0: उप कमांडेंट रणजीत सिंह।

0: The SSB personnel initially they were put only for the border of Nepal and Bhutan. But over the years, as terrorism and all the cross-border problems started, their area of coverage has been increased, and they're covering all the states which are bordering our neighboring countries, that is Pakistan, China, and apart from that, Bangladesh and
1: मुख्य
0: Burma.
1: आरक्षी मेडिक्स रितेश शर्मा।
2: मंच पर उप कमांडेंट रणजीत सिंह के बाद अब मंच पर अग्रसर हमारे जवान। बहुत ही अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है।
1: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर,
2: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर इस समय मंच की ओर अग्रसर पदक प्राप्त करते हुए पुरस्कृत होते हुए। इस सम्मान दरअसल एक जवान का नहीं बल्कि देश का सम्मान है, उन भावनाओं का सम्मान है जो भावनाएं
3: विशिष्ट सेवा के लिए
2: रक्षा करती
3: राष्ट्रपति
2: हैं
3: पदक से सम्मानित
2: सीमाओं
3: हैं
2: की।
3: डॉक्टर परेश सक्सेना, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा बिहार।
0: बिहार से दिस इज मिस्टर परेश सक्सेना हु वॉक्स अप एंड द मेडल दैट दे आर गेटिंग इन फैक्ट इट इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर देम एंड द स्क्रोल द कमेंडेशन लेटर आई एम श्योर दे विल डेफिनेटली फ्रेम इट एंड पुट इट इन द हाउस सो दैट दे रिमेंबर इट ऑल देयर लाइफ एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव एंड व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज ओवर हियर मींस एवरी मोमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम इज बीइंग photograph clicked away to glory and I'm sure this is going to be a wonderful experience lifetime experience for everyone over here
2: aur ab ratan singh ji is samay manch par दरअसल आज प्रदान किया जा रहा प्रत्येक अलंकरण राष्ट्र की ओर से सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है और ये भावना यहाँ पर नजर आती हुई साफ तौर पर विज्ञान भवन में कर्तध्वनि से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है।
3: श्री सोमित जोशी, महानिरीक्षक।
2: और अब सुमित जोशी अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि के सम्मुख, उनके सीने पर पदक और ये प्रशस्ति पत्र उनके हाथों में। मुख्य सचिव श्री गोविंद मोहन इस समय।
3: श्री वंदन सक्सेना, महानिरीक्षक।
0: मिस्टर वंदन सक्सेना ही वॉक्स, ही कम्स फॉरवर्ड, ही हैज द मेडल पुट ऑन हिज चेस्ट and salutes the home secretary, the chief guest, and takes a scroll, the commendation letter, which he gets it in his hand. And I'm sure they're going to frame it, of course, as I said earlier, they'll frame it and put it, hang it in their house.
3: Shri Jagdish Ram, Upcommandant.
2: Shri Jagdish Ram, Upcommandant. Ab apna padak prapt karne hetu manch par maujood. Anushasan ke saath yahan par apne पदक ग्रहण करते हुए जवान सैल्यूट करते हुए केंद्रीय सचिव।
3: धन्यवाद महोदय। महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि विमाननीय मुख्य अतिथि महोदय को समस्त बलकर्मियों तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें।
0: That brings us to the end of the investiture ceremony. And now we have for you the address by the honorable chief guest for today, that is Shri Govind Mohan, the chief secretary of the home ministry.
4: सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। मैं आरंभ करता हूं। सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर बल के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों

मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूँ। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति SSB की अमूल्य विरासत है। वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो रहे सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। ये अलंकरण आपके साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है। पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव, कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। सीमाओं पर तैनात SSB का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी, आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है। मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन SSB की सबसे बड़ी शक्ति है। SSB की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ SSB भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस, त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, SSB के महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल DGP, श्री रामुलु नायक IG ऑप्स SSB, इस सभागार में उपस्थित CAPF और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके DGs, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और SSB परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण। गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहाँ रखना चाहूँगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं, वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहाँ के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है, वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के, जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं,
वो इसका

तीसरा स्तंभ है, और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहां का समुदाय है, जो वहां के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार भारत के, स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहाँ मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए। इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो SSB के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो ज़िले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म SSB के ही कर्मभूमि में हुआ था और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र SSB के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं। उसके उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से 1 महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर ज़िले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है और इसमें SSB जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं SSB के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में एक अनोखा कार्य क्षेत्र है क्योंकि वहाँ जो हमारी सीमाएं हैं वो मित्र देशों से लगी हुई हैं, इसलिए वहाँ बाड़ लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और बाड़ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस सुरक्षा के बगैर SSB को उस सीमा को सुरक्षित रखना है। पिछले 2 वर्ष में मेरा जो अपना अनुभव रहा है सीमा सुरक्षा के विषय में वो ये है कि ये अपने आप में एक कठिनतम कार्य है। बिना किसी फिजिकल बैरियर के एक बॉर्डर को सेफ रखा जाए इसकी कल्पना शायद विश्व में बहुत कम जगह पर की गई है और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि SSB ने पिछले कुछ वर्षों में इस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं लेकिन जिनका प्रभाव लगभग लगभग उतना ही है जैसे कि वहाँ पे एक भौतिक बाड़ की व्यवस्था हो। इसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा लेकिन फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से, रडार और CCTVs के माध्यम से और अन्य प्रणालियों को विकसित करके आज SSB ये सुनिश्चित करता है कि नेपाल से और भूटान से जो भारत में आवागमन हो रहा है उस पर एक पैनी निगाह रखी जाए और किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी ऐसा तत्व जो भारत में किसी भी प्रकार का उपद्रव करने में के लिए यहाँ आ रहा हो उसको हम बॉर्डर पे ही उसको रोक सकें और उसको वहीं पे अपनी गिरफ्त में ले सकें। इसमें सफलताएं भी मिली हैं और अभी हाल में ही गृह मंत्री जी सिलीगुड़ी गए थे, वहाँ SSB ने एक विस्तृत उनके समक्ष प्रस्तुति भी की थी और उसके माध्यम से बताया था कि मानव तस्करों से लेके FICN के स्मगलर से लेके

0: नारकोटिक्स और आर्म्स के जो नेटवर्क्स हैं उन तक एसएसबी ने अपनी पकड़ मजबूत करी है, और एक हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिला और एक इस बात का सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला कि एसएसबी के प्रयासों के चलते आज नेपाल और भूटान से जो भारत की सीमाएं हैं वो काफ़ी हद तक हमने सुरक्षित कर ली हैं। अंत में एसएसबी की उभरती भूमिकाओं के बारे में जो मंत्रालय का एक विजन है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया, एसएसबी का जब जन्म हुआ था 1961-62 के कालखंड में, तब उसका मुख्य ध्येय था बॉर्डर के गाँव में एक भारत के प्रति एक सद्भाव पैदा करना, जो गाँव के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक आसूचना का सुदृढ़ तंत्र बनाना भारत के बॉर्डर्स पर, और जो बाकी अन्य आर्म्ड फोर्सेस हैं यूनियन की उनकी मदद में इन दो तीन गतिविधियों के माध्यम से अपना सहयोग देना। धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी ये थोड़ी क्षीण होती गई और एसएसबी का रोल एक सशक्त और एक आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अधिक होता गया, और जो ओरिजिनल रोल था कि सीमावर्ती गांवों के साथ मिलके वहाँ एक नेटवर्क बनाना, सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, आसूचना के तंत्र को और सुदृढ़ करना, वो कहीं ना कहीं कम होता हमको दिखा है। तो अब आने वाले समय में मंत्रालय का ये मत है कि एसएसबी को अपना जो ओरिजिनल रोल था उस ओर फिर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो इसकी मूल परिकल्पना थी उसके भी उसके भी निरूपण के लिए हम एक व्यवस्था बना सके। और जो आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अतिरिक्त जो ओरिजिनल रोल था उस ओर भी हम अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान महानिदेशक के नेतृत्व में ये जो नई परिकल्पना विकसित हुई है इस पर भी एसएसबी पूरे बल से और पूरे अपने मन से अपने कार्यों से इस ओर भी काम करेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जाते जाते एसएसबी के अलंकरण समारोह में गृह मंत्रालय की ओर से फिर सभी एसएसबी कर्मियों को बधाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको पूरा गृह मंत्रालय का सहयोग रहेगा आने वाले समय में, इसका आश्वासन देते हुए आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: दैट वॉज द एड्रेस बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री गोविंद मोहन, द सेंट्रल होम सेक्रेटरी।
2: और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ओजपूर्ण संबोधन के बाद अब मंच पर हम देखेंगे कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
1: Now a memento will be presented to the honorable chief guest by the director general of the सशस्त्र सीमा बल. The memento is being given, and a beautiful memento, a big one, and it's being shown to the public, the people over here.
2: और अब अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल पोडियम पर।
3: माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, मंचासीन महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल जी, आईजी ऑप्स श्री एमआर नायक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशक गण एवं वरिष्ठ अधिकारी गण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक गण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण,

0: आज अलंकृत किए गए सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता कार्मिकगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, आज सशस्त्र सीमा बल के इस अलंकरण समारोह के अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक एवं गौरवपूर्ण बना दिया है। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस समारोह के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान एवं विश्वास अटूट है। सशस्त्र सीमा बल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम सभी अपने कार्य एवं जीवन में आत्मसात करते हुए और अधिक निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मेरा विशेष आभार माननीय सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी के प्रति भी है, जिनका स्नेह एवं मार्गदर्शन सशस्त्र सीमा बल को सदैव मिलता रहा है। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक धन्यवाद। मैं आज सम्मानित किए गए सभी पदक विजेताओं, उनके गौरवान्वित परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इन पदकों के पीछे आपकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं आपके परिवारों का त्याग और निरंतर सहयोग भी निहित है। मैं मीडिया के सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से इस बल के कार्मिकों की उपलब्धियों एवं राष्ट्र सेवना की भावना को देशवासियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। एक बार पुनः मंचासीन अति विशिष्ट अतिथिगणों एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों को बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
1: That was the vote of thanks by the Additional Director General of Sashastra Seema Bal.
2: और अब अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी उपस्थित जन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो रहे हैं।
3: आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के उपरांत सभी लोग अपने आसन पर एक बार फिर विराजमान होते नजर आ रहे हैं। और जहां तक गणमान्य व्यक्तियों का प्रश्न है तो उनका प्रस्थान यहां पर शुरू हो गया है। गणमान्य व्यक्ति प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये अलंकरण समारोह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। आज विज्ञान भवन में आयोजित ये सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह 2026 हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सतत दायित्व है। सीमा पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अपना वर्तमान समर्पित करते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। आज जिन अधिकारियों और जवानों को अलंकरण प्रदान किया गया उनकी वीरता, सेवा और समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। इसी के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह संपन्न होता है। अब मैं अतहर सईद अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू और OB प्रभारी विवेक कुमार तोमर और हमारी तकनीकी टीम के सदस्य अशोक कुमार मिश्रा और सुमित कटियार के साथ आपको आकाशवाणी स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। नमस्कार, जय हिंद।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सशस्त्र सीमा बल SSB के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे अदर सईद और डी एंड्रयू।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में अभी आपने इंदीवर का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे नदीम श्रवण। और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा इंदीवर ने, संगीतकार जतिन ललित।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। हमने आपके लिए लिया है फिल्म फरीब से, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

यारा दिलदारा फिल्म का गीत दोस्तों अभी आपने सुना, आवाज़ें थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। प्रोग्राम का अगला गीत अलबेला फिल्म से, आवाज़ कुमार सानू की।

0: फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ ये फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम दोस्तों अब यहीं संपन्न होता है। 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे करीब फिल्म के गीत, जिसे आपके लिए पेश करेंगी रिया प्रकाश। और अब वक्त हो गया है समाचारों का। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।

0: इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर 24,092 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today addressed the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. He called upon all member countries to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. He said there can be no place for double standards on terrorism. More from our correspondent.
2: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, wars and conflicts are not a solution to any problem and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy. The Prime Minister said, India supports all efforts that connects markets, facilitate trade and open new avenues for development. However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
1: India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period the previous year. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी
1: Union Minister Nirmala Sitharaman has said India has shown that it can adjust to changes in the global economy without allowing its growth to be derailed. In an interview, Ms. Sitharaman described India as a vibrant and responsive economy capable of managing external challenges. She also highlighted India's recorded growth of 7.8%.

0: 6% in the first quarter of the 2026-27 financial year. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today held a meeting with his German counterpart Carsten Schneider in New Delhi. The meeting was held on the sidelines of the 4th Indo-German Environment Forum. During the meeting, both sides had extensive discussion on matters related to industrial decarbonization and biodiversity conservation, with particular focus on wetland conservation. In a social media post, Mr. Yadav said the forum is opportune as the partnership between India and Germany continues to witness an unprecedented upward trajectory. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu will inaugurate the hub and spoke international flight operations at the Sardar Vallabh Bhai Patel International Airport in Ahmedabad this evening. The inaugural Easy Connect service, operated by Air India's flight AI-1121, will depart from Ahmedabad, carrying passengers connecting through Delhi to several global destinations. Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. Meanwhile, the Indian Embassy in Kathmandu has shared details regarding the identification and repatriation of mortal remains of victims of the recent flash floods in Nepal. Akashwani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है करीब। जी हाँ, करीब वर्ष 1998 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे विधु विनोद चोपड़ा जी ने निर्मित और निर्देशित किया था। इसके लेखक कामना चंद्र, अभिजीत जोशी और विधु विनोद चोपड़ा जी हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं बॉबी देओल, शबाना रजा जिसे नेहा के नाम से भी जाना जाता है, और मौसमी चैटर्जी, और सह कलाकार के रूप में जॉनी लिवर, अमित फालके, सुषमा सेठ, सौरव शुक्ला, शमी कपूर, विजेंद्र घाटगे और अभय चोपड़ा भी शामिल हैं। इसी बात पर आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म करीब का टोटल बजट 6.50 करोड़ था, जबकि इसकी कुल कमाई 12.93 करोड़ की हुई थी। और फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो इसे संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत राहत इंदौरी जी के लिखे थे। इस फिल्म के सारे गीत लोकप्रिय हुए और आज भी लोग इसे बेहद चाव से सुनते हैं। ये फिल्म बॉलीवुड की एक बेहद मासूम और खूबसूरत प्रेम कहानी मानी जाती है।

श्रोताओं, फिल्म करीब की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म झूठ, प्रेम और पश्चाताप पर आधारित है। बिरजू यानी बॉबी देओल एक मस्त मौला और झूठ बोलने वाला लड़का है जो एक सीधी साधी लड़की नेहा यानी शबाना रजा से पहली नज़र में प्रेम कर बैठता है। बिरजू नेहा को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों को प्रेम हो जाता है। जब नेहा को बिरजू के झूठ के बारे में सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाती है। इसके बाद नेहा बिरजू से दूर चली जाती है। बाद में बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एक सच्चा इंसान बनने का फैसला करता है। अंत में बिरजू का बदलाव देखते ही नेहा उसे माफ़ कर देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, इस फिल्म के लिए बॉबी देओल को चुना गया था क्योंकि बॉबी देओल का लुक विधु विनोद चोपड़ा जी के हिसाब से उनके जवानी के दिनों से काफ़ी मिलता जुलता था। और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शबाना रज़ा ने बॉलीवुड में इस फिल्म से डेब्यू किया था और फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी ने उनका असली नाम बदलकर नेहा कर दिया था, जो फिल्म में उनके किरदार का भी नाम था।

0: श्रोताओं, फिल्म करीब में नेहा के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद ममता कुलकर्णी थी, लेकिन बाद में इस रोल के लिए शबाना रजा को फाइनल किया गया। श्रोताओं, इस फिल्म के विजुअल्स काफ़ी खूबसूरत थे। फिल्म में पहाड़ी इलाकों और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का चयन किया गया था।
1: ना दिन दिन ना तक तक तुन्ना, ना दिन दिन ना तक तक तुन्ना, ना दिन दिन ना तक तक तुन्ना, ना दिन दिन ना तक तक तुन्ना, तुक तुका तुक तुका तुक तुका तुक तुका तुक तुका तुक तुका।
2: ओए पागल,

इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए।

क्या है मेरी रेल का इंजन, माँ है मेरी रेल का इंजन, मैं हूँ रेल की पटरी, अपना सारा घर लगता है खुशियों की एक गठरी।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें इस बुलेटिन में अमन देव पहला चुनिया खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें सम्मेलन को संबोधन किया। श्री मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी बारे दोहरे मापदंड कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 7.8% की आर्थिक विकास दर 140 करोड़ देशवासियों की सख्त मेहनत और समूह संकल्प का नतीजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाली तब्दीलियां अनुसार अपने आप को ढालने की योग्यता का प्रदर्शन किया। भारत ने सिंधु जल संधि बारे विश्व बैंक वालों नियुक्त सालसी अदालत के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है कि देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और वर्तन को रोकने के लिए केंद्रीय गोबर धन योजना आज से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें सम्मेलन को संबोधन किया। इस मौके पर उन्होंने सारे मैंबर देशों को दहशतगर्दी वित्त पोषण, दहशतगर्दों के प्रति कट्टरपंथीकरण और सुरक्षित पनाहगाहों की पूरी प्रणाली को खत्म करने का सद्दा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी के दोहरे मापदंड कोई जगह नहीं हो सकती। श्री मोदी ने पश्चिमी एशिया समेत दुनिया के वख-वख हिस्सों में चल रहे संघर्षों से भी चिंता प्रकट की।
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता।
1: उन्होंने कहा कि युद्ध के टकराव किसी भी समस्या का हल नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बाजारों को जोड़ने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विकास के लिए नवे राह खोलने वाले सारे यत्न का समर्थन करता है। हालांकि इन यत्नों में सारे देशों की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है। SCO के मैंबर देशों के आगुओं ने संगठन की 25वीं वर्गण मौके बिश्केक ऐलाननामे से भी दस्तखत किए। मैंबर देशों ने संस्थागत ढांचे को बेहतर बनाने और सुरक्षा के आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से मतों के एक व्यापक पैकेज से भी दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की आर्थिक विकास दर 140 करोड़ देशवासियों की सख्त मेहनत और समूहक संकल्प का नतीजा है। आज सोशल मीडिया से एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी, चल रही जंगा और विश्वव्यापी अस्थिरता वर्गियां चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ,

0: खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति में बनाई रखने लिए एक आत्मनिर्भर भारत की लोड़ है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को स्वदेशी को अपनाने, वोकल फॉर लोकल को उत्साहित करने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने की अपील की। श्री मोदी ने नागरिकों को बेलोड़ी विदेश यात्रा और विदेशों में विवाहों की योजना बनाने से गुरेज करने, जब तक जरूरी न हो सोना न खरीदने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि जेकर सारे नागरिक स्वदेशी को अपनाने की आदत बना लें तो आजादी 100 साल पूरे होने तक एक विकसित भारत हासिल करने का संकल्प पूरा किया जा सकेगा। वित्त के कारपोरेट मामलों बारे मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश की दरामद ऊर्जा और खादा से निर्भरता स्वीकार करद कहा कि भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था होने वाली तब्दीलियों अनुसार अपने आप ढालने की योग्यता का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री ने भारत में एक जीवंत और जिम्मेवार अर्थव्यवस्था दसिया जो बाहरी चुनौतियों का मुकाबला करने के समर्थ है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के दुनिया के सब तो वड्डे दरामदकारों में एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक कारगुजारी बाहरी घटनाक्रम प्रति प्रतिक्रम देने और विकास गति बनाई रखने की योग्यता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक समय समय से आर्थिक मुलांकन भी जारी करता है जिससे सूचक सकारात्मक दिशा में अगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय साल 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% की विकास दर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 अरब अमरीकी डॉलर है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ @AIR RNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। भारत ने सिंधु जल संधि बारे विश्व बैंक वालों नियुक्त सालसी अदालत के फैसले को पूरी तरह रद्द किया है। भारत ने ट्रिब्यूनल के अधिकार को नकारदिया इसके फैसले को कानूनी तौर से नाजायज ऐलानिया है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ने कभी भी सालसी पैनल को मानता नहीं दी और इसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने भी दोहराया कि सिंधु जल संधि मुलतवी है। यह बयान हेग स्थित आर्बिट्रेशन अदालत के इस फैसले तो बाद आया कि संधि को मुलतवी करने के कारण इस मुलतवी या खत्म करने जायज नहीं ठहराते। पैनल ने भारत 1960 के पानी वंड समझौते तहत अपनी जिम्मेवारियों की पालना जारी रखने लिए कहा। हालांकि भारत ने इस फैसले को यह कहदिया रद्द कर दिता है कि सालसी पैनल खुद संधि दी शर्तां दी उलंघना करके स्थापित किया गया सी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पैनल दा संधि जां इस दे बुनियादी ढांचे दे प्रोजैक्टां नाल संबंधित भारत दे प्रभुसत्ता वाले फैसलों ते कोई अधिकार खेतर नहीं है। खेतीबाड़ी के किसान भलाई मंत्रालय ने दस्सिया कि 28 अगस्त तक सोने दीआं फसलां हेठ रकबा 171 लाख हैक्टर तों वध हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि 414 लाख हैक्टर तों वध रकबे विच झोने की काश्त की गई है जदों कि 115 लाख हैक्टर तों वध रकबे विच दालां की बिजाई हुई है। मंत्रालय अनुसार अनाज अते मोटे अनाजां की काश्त 177 लाख हैक्टर तों वध रकबे विच की गई है। इस तों अलावा 190 लाख हैक्टर तों वध रकबे विच तिली बीजां की बिजाई हुई है। मंत्रालय ने यह भी दस्सिया कि कपाह की काश्त 108 लाख हैक्टर तों वध ते गन्ने की काश्त 58 लाख हैक्टर तों वध रकबे विच की गई है। केंद्रीय गोबर धन योजना अज तों लागू हो गई है। इस योजना का कुल खर्च 23,731 करोड़ रुपए है। यह भारत में कंप्रैस्ड बायोगैस के उत्पादन और वर्तन वधाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना 2035-36 तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रैस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना वधाना है। सरकार ने कच्ची खंड की प्रोसैसिंग और महसूल मुक्त विक्री लिए समय सीमा च बदलाव किया। दरामदकारा कच्ची खंड को चिट्टी खंड में बदलन और खरीद की तरीक तो वो महीनों अंदर घरेलू बाजार में वेचना होगा। पहला यह समय सीमा 31 अक्तूबर निर्धारित की गई सी। विदेशी व्यापार बारे डायरेक्टोरेट जनरल ने अगस्त के शुरू में नोटिफाई किए गए संबंधित नियमों में सोध की है। यह फैसला अगस्त और नवंबर विचकार आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर लिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी

0: पहला इजलास इस साल भारत में होगा। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक हकीकी दानिशमंद शख्स वो होता है जिसके मंसूबे और इकदामात मुकम्मल होने तक दूसरों से पोशीदा रहें। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक डिसिप्लिन, साहब बसीरत और सोच समझकर काम करने वाले शख्स को सही माना में दानिशमंद कहा जा सकता है। महकमे ख़जाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत ने यह दिखा दिया है कि अपनी तरक्की के मुतासिर हुए बगैर आलमी मईशत में होने वाली तब्दीलियों का सामना कर सकता है। साथ ही उन्होंने दरामद की जाने वाली तवानाई और कीमियावी खाद पर मुल्क के इन्हिसार को भी तस्लीम किया। मुतरमा सीतारमन ने भारत को एक मुतहरिक और फौरी इकदाम करने वाली मईशत करार दिया जो बाहरी चैलेंजों से निमटने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि भारत खाम तेल और पेट्रोलियम अशिया दरामद करने वाले दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल है। वजीर खजाना ने इस बात को उजागर किया कि भारत ने दुनिया के हालात व वाकयात के तनाजुर में अपनी इकतसादी कारकर्दगी की बदौलत अपनी रफ्तार तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने की सलाहियत का मुजाहरा किया। मोहतरमा सीतारमन ने इस बात को भी उजागर किया कि माली साल 2026-27 की पहली सेमाही के दौरान भारत की शरह तरक्की 7.8% रिकॉर्ड की गई और भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 7 खरब अमरीकी डॉलर रहे। भारतीय रेलवे ने शिमाली रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न के बाकी 712 किलोमीटर रूट पर कवच 4.0 के लिए 170 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इस मंजूरी से मुल्क में ही तैयार किए गए ऑटोमेटिक रेल हिफाजती निज़ाम के जरिए रेलवे के हिफाजत के बुनियादी ढांचे को मजबूती हासिल होगी। वजारत ने कहा है कि कवच 4.0 के नफाज से मुतालिक सेक्शन में रेलगाड़ियों के कामकाज को मजीद तहफ़ हासिल होगा। शहरी आबादी के वजीर के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन अक्वामी हवाई अड्डे पर बैन अक्वामी परवाज़ों से मुतालिक हब एंड स्पोक खिदमत का इफ्तिताह करेंगे। इजी कनेक्ट खिदमत की इफ्तिताही परवाज़ AI-1121 अहमदाबाद से परवाज़ करेगी। इसके ज़रिए मुसाफिर दिल्ली होते हुए दुनिया के अलग अलग मकाम तक जाएंगे। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी इस तारीखी मौके पर मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद इस खिदमत के साथ ही वाराणसी और अमृतसर जैसे शहरों में शामिल हो गया है। भारत में बढ़ते हुए हब एंड स्पोक बैन अल-अक़वामी नेटवर्क का ये तीसरा इलाकाई मरकज बन गया है। ये इकदाम हुकूमत के जामे हब एंड स्पोक लाहिला अमल का एक हिस्सा है जिसका मकसद उन मुसाफिरों के बैन अल-अक़वामी फ़जाई सफ़र को आसान बनाना है जो मेट्रो शहरों के अलावा दीगर शहरों में रहते हैं। ईजी कनेक्ट खिदमत के ज़रिए मुसाफिर चेक इन, कस्टम और इमिग्रेशन जैसे खानापूरी अहमदाबाद हवाई अड्डे पर ही मुकम्मल कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर मुसाफिर सीधे अपने बैन अल-अक़वामी परवाज के दरवाजे तक जा सकते हैं और उन्हें अपना सामान और दीगर सिक्योरिटी चेक्स या इमिग्रेशन जैसे कार्रवाई से दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। अहमदाबाद से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आकाशवाणी का FM गोल्ड आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2001 में की गई थी। शुरुआत में इसको AIR FM 2 के नाम से जाना जाता था जिस पर खबरों, ताज़ा हालात और तफरीह के प्रोग्राम नशर किए जाते थे। पिछले कुछ बरसों में FM गोल्ड आकाशवाणी की एक अहम रेडियो सर्विस बनकर उभरा है जो अपने सामीन के लिए इत्तलात, तजज़िये और तफरीह पर मबनी प्रोग्राम नशर करता है। सुर्खियों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड FM गोल्ड के कुछ मकबूल प्रोग्राम हैं। आज सवेरे और परिक्रमा जैसे प्रोग्राम खबरों और ताज़ा हालात और तजियों पर मुश्तमिल हैं जिससे FM गोल्ड के इत्तला और तफरीह को यकजा करने के नज़रिए की अक्कासी होती है। नेपाल के हुकाम ने उन गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त और उनके जसद खाकी हवाले करने के तरीक़ेकार की तफसीलात फराहम की हैं जो हाल ही में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से हलाक हुए हैं। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने आज ये जानकारी दी। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली मशरक़ी भारत के बाद हिस्सों में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल

0: प्रदेश, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मगरबी बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। पूरे झारखंड में शदीद बारिश की वजह से रियासत के कई हिस्सों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। महकमे मौसमियात IMD ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी की है और अगले 24 घंटों में तेज सैलाब के इम्कान के बारे में खबरदार किया है। न्यूयॉर्क में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर एक बेलारूस की अरीना सबालिंका पहले राउंड में कोलंबिया की केमिला ओसोरियो को 6-2 और 6-4 से हरा दिया। अब दूसरे राउंड में सबालिंका का मुकाबला रूस की पोलिना लेटसिंको से होगा। नंबर एक खिलाड़ी सबालिंका की कोशिश ये होगी कि वो सेरेना विलियम्स और चेरिस इवर्ट के बाद लगातार 3 US ओपन जीतने वाली तीसरी खातून खिलाड़ी बन जाएं। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने और इस मामले पर दोहरा मेयार अख्तियार करने की रविश्तर किए जाने पर जोर दिया। भारतीय रेलवेज ने शिमाली रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के बकिया 712 किलोमीटर के हिस्से पर कवच निजाम के चौथे मरहले के लिए 170 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल मुमताज नशरियाती खिदमात के 25 साल मुकम्मल होने पर आज अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत के बाद हिस्सों में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है और US ओपन टेनिस में अरीना सबालिंका ने केमिला ओसोरियो को हराकर अपने टाइटल का दफा करने की मुहिम का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Muradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashvani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh, extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and northeast India till tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today addressed the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. He called upon all member countries to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. He said there can be no place for double standards on terrorism. The leaders of the member states of the Shanghai Cooperation Organization also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. A report.
2: Addressing the SEO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, "Wars and conflicts are not a solution to any problem, and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy." The Prime Minister said, "India supports all efforts that connect markets, facilitate trade, and open new avenues for development." However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
1: Alongside the 25th anniversary Bishkek Declaration, member states signed a wider package of resolutions aimed at improving institutional frameworks and countering modern security threats. Union Home Minister Amit Shah has said the Sashastra Seema Bal SSB is playing a highly commendable role in humanitarian aid and rescue operations during the

0: benchmark domestic equity indices slipped into the negative zone in the afternoon session today. The Sensex fell 43 points to 76,915, while the Nifty was down by 51 points to 24,030 when reports last came in. World number one Aryna Sabalenka brushed aside Colombia's Camila Osorio 6-2-6-4 in the first round of the U.S. Open at Arthur Ashe Stadium in New York. Top seed Sabalenka's second round clash is against Russia's Polina Yatsenko, as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight U.S. Opens. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashwani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and Northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही।

0: ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने SSB की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया।

0: है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार।

0: रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब वक्त है आपके मनपसंदता सेगमेंट एक ही कलाकार का। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, आज के जो हमारे कलाकार हैं वे ना सिर्फ उर्दू साहित्य के चार स्तंभों में से एक हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक महान कथाकार, पटकथा लेखक और निर्देशक भी हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उन्हीं के गीतों को सुनवाएंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कई सारी दिलचस्प बातें भी करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत और मुझे फटाफट से संदेश भेजिए कि हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और एक ही कलाकार में हमारे जो आज के कलाकार हैं वो हैं राजेंद्र सिंह बेदी। जी हाँ, अभी जो आपने गीत सुना सन 1970 में रिलीज़ हुई फिल्म दस्तक से, जिसमें उन्होंने बतौर निर्देशक के रूप में काम किया, और इस फिल्म के गीतों को आज भी सिनेमा का मास्टरपीस माना जाता है, जिसमें संजीव कुमार को स्थापित करने में बड़ी भूमिकाएं निभाई। बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, उनका जन्म पंजाब के सियालकोट जिले के ढल्लेवाली गांव में हुआ था। उनके माता पिता हीरा सिंह बेदी और सेवादाई थे। उन्होंने अपनी शुरुआती साल लाहौर में बिताए, जहां उन्होंने उर्दू में शिक्षा प्राप्त की, जैसे कि अधिकांश पंजाबी परिवारों में आम था। हालांकि उन्होंने कभी भी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की।

श्रोताओं, उनकी लघु कहानियों का पहला संग्रह है दानु दाम, जिसमें उनकी प्रमुख कहानी गरम कोट शामिल है। 1940 में प्रकाशित हुआ था। सन 1942 में उन्होंने लघु कहानियों को का अपना दूसरा संग्रह ग्रहण प्रकाशित किया। सन 1943 में उन्होंने एक छोटे फिल्म स्टूडियो महेश्वरी फिल्म्स में काम करना शुरू किया। हालांकि 1.5 साल बाद वे ऑल इंडिया रेडियो लौट आए और उन्हें जम्मू में तैनात किया गया, जहां उन्होंने सन 1900

1947 तक काम किया। विभाजन के समय तक राजेंद्र सिंह बेदी कई और लघु कथाएं प्रकाशित कर चुके थे और एक विपुल लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनके उर्दू उपन्यास एक चादर मैली सी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद खुशवंत सिंह ने आई टेक दिस वुमेन के रूप में किया था, इसको सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। बाद में इस पुस्तक का हिंदी, कश्मीरी और बंगाली में अनुवाद भी किया गया।

श्रोताओ, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं। चलिए उन संदेशों को पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला संदेश आया है वो आया है नितेश देवांगन का। इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो चंदू कुलकर्णी का है, और ये इनके साथ है दुर्गाई से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं दुर्गाई सेलू से, और इनके साथ है सी आर कुलकर्णी। अगला जो संदेश है वो है ताज मोहम्मद का, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। अगला जो संदेश है वो है तुलसी मस्कीन का, और इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदान खुराना। अगला जो संदेश है मोहम्मद कमर का है, और ये हमें लेकर भेज रहे हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। अगला जो संदेश है अनिल मोहन का, इनके साथ है उषा मोहन, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। जो अगला संदेश आया है वो आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। धर्मेंद्र छीपा जी ने हमें अगला संदेश भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। फारुक अली खान का अगला संदेश है, और साथ ही हमें संदेश भेजा है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। राधेश्याम दिवांगन ने हमें संदेश भेजा है भवरपुर बसना से, और

साथ है चंपा देवांगन। फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों जैसे मधुमति, अभिमान, अनुपमा और सत्यकाम के बेहतरीन संवाद और पटकथा राजेंद्र सिंह बेदी ने ही लिखे थे। अगर कुछ उनकी व्यक्तिगत जीवन और आदतों के बारे में बात करें तो उन्हें मीठे पान का शौक बहुत था। बेदी जी को गुलाब की पंखुड़ियों वाले खास मीठे पान और तंबाकू वाले पान का बेहद शौक था। वे अपने पास आने वाले मेहमानों को भी ज़बरदस्ती पान खिलाते थे और उनके साथ घंटों लतीफ़े और कहानियां शेयर करते थे। एक बार की जो फिल्म बनी है, जो बेनाम फिल्म बनी है, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार बेदी जी रास्ते से एक

बीमार और लाचार व्यक्ति को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उनसे कहा, बेदी साहब आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, शायद इस आदमी की हत्या की गई और आप फंस जाएंगे। इसी सच्ची घटना को आधार बनाकर उनके बेटे नरेंद्र बेदी ने अमिताभ बच्चन स्टारर मशहूर सस्पेंस फिल्म बेनाम, जो कि 1974 में बनाई गई थी।

तथा अगला संदेश आया दिग्दर्शन गौर का, ये मिलकर भेज रहे मेरठ से, और इनके साथ है कविता गौर। साथ ही जो अगला संदेश हुआ अनिल मोहन का है, हमें जो लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र चीपा का, इनके साथ है कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार। गुरमीत सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल, इंद्रवान सिंह हमें लिखकर भेज इनके साथ, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, चिरमिरी कुरासिया कालरी से। अगला जो संदेश है प्रकाश वर्मा में लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है निखिल वर्मा और इनके अन्य सदस्य, संदीप मक्कर हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है ज्योति मक्कर, भरत मक्कर, कमल।

कहानी जालंधर से, और साथ ही जो अगला संदेश है प्रवीण प्रवीण हागोड़े का जी है, इनके साथ है योगिता हागोड़े, कुमारी प्रियाली, पार्थ हागोड़े, साथ ही इनके अन्य परिवार के सदस्य, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म का गीत मन्नते और कोरस की और साथियों की आवाज़ों में। फिलहाल इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम, आज के कलाकार यहीं पर समाप्त होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा, लेकिन कहीं जाइए नहीं, अगले भी कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी रहूँगी। फिलहाल सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3 बजे हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म बरसात की रात के एक गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चौदहवीं का चांद फिल्म का ये गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में। तो आइए गीतों का सिलसिला जारी रखते हैं और सुनते हैं अगला गीत लव इन शिमला फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, हमारे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं और जो हमारे पास संदेश आया है वो है सुरेश राठौर का, मंजुला राठौर, विशाल निशा जो हमें लिखकर भेज रहे हैं गांधीनगर गुजरात से। अगला संदेश है किशन सपकाल का और इनके साथ है आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साइरा सपकाल, विशाल सपकाल और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शास्त्री नगर बीड शहर से। अगला जो संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर का और इनके साथ है कविता गौर, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं मेरठ से। तो श्रोताओं, चलिए आपको सुनवाती हूँ अगला गीत, आया सावन झूम के, फुंसी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

आया सावन झूम से सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म चंदा और बिजली से आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे ठीक दिन के 3 बजे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उनके लहजे और लफ्ज़ों की तब्दीली की गमाज़ है। हरफ मोतबर बानी की इब्तदाई शेरी कायनात का कुल हिस्सा नहीं बल्कि उनके दोस्त चंद्र प्रकाश शाद की तनकीदी सलाहियतों से चुना गया एक खूबसूरत शेरी इंतखाब है। हरफ मोतबर से चंद शेर। भरे शहर में एक बयाबा भी था, इशारा था अपने ही घर की तरफ। ए सफ़े अब्र रवां तेरे बाद, एक घना साया शजर से निकला। कहीं से आ गया एक अब्र दरमियां, वरना मेरे बदन में ये सूरज उतरने वाला था। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। मेरे वजूद से जो कट रहा है गाम बगाम, ये अपनी राह बदलता हुआ सा कुछ तो है। बानी को लफ्ज़ों की जादूगरी का मलका था। आम सा ख्याल और आम सी बात को लफ्ज़ देने की महारत ने बानी को जदीद शायरों के दरमियान महज इसलिए एक अलग मकाम अता किया कि बानी ने जदीदियत के साथ साथ गज़ल की रवायती शान भी बरकरार रखी और गज़ल की तहजीब को नहीं मिटने दिया। ये बात एक मिसाल से यूं साबित की जा सकती है कि मीर तकी मीर के मशहूर शेर आवार गाने इश्क का पूछा जो मैं निशां, मुश्ते गुबार लेके सवाने उड़ा दिया, को जब गज़ल की शान और तहजीब को मलहूज रखते हुए बानी ने लफ्ज़ दिए तो अपने अहद की ज़बान और तहजीब के साथ उस दौर का भी हक अदा कर दिया जब ये शेर वजूद में आया था। रुख हवा का कोई जब पूछता उससे बानी, मुट्ठी भर खाक खला में वो उड़ा देता था। तकसीम पर कुछ न कहकर बहुत कुछ कह देने वाला ये शेर जिस कर्ब, दुख और तकलीफ़ से गुजर कर कहा गया है, उसका अंदाज़ा लफ्ज़ों की नशिस्त और दरिया की बेसबाती की लहरों से किया जा सकता है। अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया के पार उतरते हुए। तन्हाई, दुख, रिश्तों की टूट टूट कर बिखरने और ज़मानो मकां की बेसबाती इन अशार में एक धुंध, एक सन्नाटे की तरह खुबी हुई है। एक बिखरी हुई तरतीब बदन हो तुम भी, राख होते हुए मंजर के सिवा मैं क्या हूँ। जमा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए। ज़रा छुआ था कि बस पेड़ आ गिरा मुझ पर, कहाँ खबर थी कि अंदर से खोखला है बहुत। किस लम्स की तहरीर हूँ मेहराब हवा पर, किस लफ्ज़ का मफहूम में फरावा हूँ बताओ। एक एक लफ्ज़ उसके मानी और मानी की परछाइयों से नए नए मंजर कशीद करना, लफ्ज़ों की नई नई सूरतें गढ़ना और फिर इन्हीं लफ्ज़ों से एक खूबसूरत या दुख भरी तस्वीर को नुमायां करना, पानी के कलम का ऐसा हुनर है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वो हंसते खेलते एक लफ्ज़ कह गया बानी, मगर मेरे लिए दफ्तर खुला मानी का। कहाँ से ऐसा कोई हर्फ मुंतखब लाएं कि हम पे सहल हो इजहार दर्द इंसान का। मेरे हरूफ के आईने में न देख मुझे, मैं अपनी बात का मफहूम दूसरा चाहूँ। बोलती तस्वीर में एक नक्श लेकिन कुछ हटा सा, एक हर्फ मोतबर लफ्ज़ों के लश्कर में अकेला। पैहम मौजे इमकानी में, अगला पाँव नए पानी में। मौजे इमकानी अपने वक्त में किस कदर मुमकिन हो सकी और इसने इमकान की लहरों के कैसे कैसे मंजर उभारे, ये बानी के कलम से ही मुमकिन था। चांद की अव्वल किरण मंजिल बमंजिल आएगी, शाम ढल जाने दो शब सीना उतर कर आएगी। शफक शजर मौसमों के जेवर नए नए से, दुआओं की ओस चुनते मंजर नए नए से। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। जाने किसका क्या छुपा है इस धुएं की सफ के पार, एक लम्हे का उफुक उम्मीद भर मेरा भी है। अब के मिलना तो मेरे सीने में मौज रख देना, भंवर रख देना। सब्ज़ को सब्ज़ न लिखना बानी, फसल लिख देना, फजा लिख देना। अजब सा जायका उस एक लम्से लर्जा का, खिला दिया है बदन में गुलाब इमकां का। बानी के तखय्युल में इमकानात के बे इंतहा फूल खिलते थे, नए नए मंजर उगते थे, बीमारियों में इंतहा दर्जे की तकालीफ से गुजरते हुए भी

0: उन्होंने अपने अशार को मायूसी और उदासी से महफूज रखा। बानी का पहला शेरी मजमुआ हरफ मोतबर 1971 में 45 गज़लों और 16 नज़मों के साथ मंजर आम पर आया था। उस वक्त शेर के उफुक पर तरक्की पसंद गज़ल की धुंद छाई थी। दूसरा मजमुआ हिसाब रंग 1976 में 45 गज़लों और 9 नज़मों के साथ ज़ुहूर पज़ीर हुआ था। बानी की नज़मों में भी वही शगुफ्तगी और ताजगी है जो उनकी गज़लों में। 11 नवंबर 1981 को होली फैमिली अस्पताल में इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 48 साल थी। उनका तीसरा और आखिरी शेरी मजमुआ शफक शजर 26 गज़लों पर मुश्तमिल था, जिसके सफ़ात में इजाफे के लिए हरफ मोतबर से 8 और हिसाब रंग से 6 गज़लें शामिल की गई थीं। ये मजमुआ राम प्रकाश राही और जयराम दास फलक ने तरतीब दिया था। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने 2016 में राजेंद्र मनचंदा बानी के नाम से एक मोनोग्राफ शाया किया। बाद में 2017 में इसी अदारे में उर्दू और देवनागरी में मुश्तरका बानी की कुल्लियात कुल्लियात बानी के नाम से शाया की। मुमकिन था बानी और हयात पाते तो कुछ ऐसी शायरी दे जाते जो आम पढ़ने वालों तक पहुंचकर उनके दिलों को मज़ीद गर्माती और बानी इतने अजनबी न रहते जितने अब हैं। उनका ये कहना किसी हद तक दुरुस्त है। कोई भी घर में समझता न था मेरे दुख सुख, एक अजनबी की तरह मैं खुद अपने घर में था।
1: लफ्ज़ों से मंजर बनाने वाला राजेंद्र मनचंदा बानी। अभी आप इस मौजू पर ये तहरीर सुन रहे थे। तहरीर जनाब मरगूब अली की थी। पेश कर रहे थे नौमान शौक। समईन, आइए अब अल्फाज को मौसीकी के सुरों में सुनते हैं। तो गज़ल पेश है, कलाम शकील बदायूनी का है और आवाज़ का पैरहन दिया है महिमा कसेवानी। लीजिए समात फरमाइए।

0: सामीन, अभी आप महिमा कसेवा की गाई ये गज़ल सुन रहे थे। कलाम था शकील बदायूनी का। सामीन, कायनात की खूबसूरती और हुस्न हमें हर वक्त मुतासिर करता है, मगर इस खूबसूरती और हुस्न को हम वक्ती तौर पर कबूल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जज्बात शिद्दत अख्तियार करते हैं, यानी दिल खुश होता है या गम की कैफियत तारी होती है, या शुक्र अदा करते हैं उस खालिक का जिसने ये कायनात तख्लीक की है, तो जज्बात उभरते हैं और अल्फाज तलाश करते हैं। यही वो लम्हात होते हैं जिनमें शायरी वजूद पाती है। आइए सामीन सुनते हैं प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब नसीम अहमद खां से उनका कलाम।
1: गज़ल मुलाहजा फरमाएं, शेर अर्ज किया है कि इश्क का बाब जिस निसाब में है, जिक्र मेरा उसी किताब में है। इश्क का बाब जिस निसाब में है, जिक्र मेरा उसी किताब में है। वक्त रुख्सत दिया था जो उसने, वक्त रुख्सत दिया था जो उसने, उसकी खुशबू भी उस गुलाब में है। और शेर देखें कि इस तरह कायनात है रोशन, इस तरह कायनात है रोशन, नूर सूरज का महताब में है। और ये शेर के हुस्न उरियां भी हुस्न है गरचे, हुस्न उरियां भी हुस्न है गरचे, हुस्न कामिल मगर नकाब में है। और ये आखिरी शेर के कौन कहता है वो नहीं मौजूद, तवज्जो चाहूँगा कि कौन कहता है वो नहीं मौजूद, ये अलग बात के हिजाब में है। और ये गज़ल देखें कि बिछड़ कर उससे मैं रोया नहीं था, बिछड़ कर उससे मैं रोया नहीं था, अनाथी साथ में तन्हा नहीं था। बिछड़कर उससे मैं रोया नहीं था, अनाथी साथ में तन्हा नहीं था, खताएं सब मैं अपनी मान लेता, खताएं सब मैं अपनी मान लेता, न था मंजूर तो सजदा नहीं था। और ये शेर देखें कि बढ़ाकर हाथ उसको रोक लेता, बढ़ाकर हाथ उसको रोक लेता, मगर दिल ने मेरे चाहा नहीं था। और ये शेर के हज़ारों ख्वाब मेरे मुंतज़िर थे, हज़ारों ख्वाब मेरे मुंतज़िर थे, कई रातों से मैं सोया नहीं था। हज़ारों ख्वाब मेरे मुंतज़िर थे, कई रातों से मैं सोया नहीं था, कि शबे मेराज को क्या भूल बैठे, शबे मेराज को क्या भूल बैठे, मोहब्बत में कोई पर्दा नहीं था। जो रहता था हमारे साथ वो भी, जो रहता था हमारे साथ वो भी, हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं था। जो रहता था हमारे साथ वो भी, हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं था। और ये आखिरी शेर के हज़ारों गम मेरे घर में भरे थे, हज़ारों गम मेरे घर में भरे थे, खुशी का एक भी हुजरा नहीं था। बिछड़ कर उससे मैं रोया नहीं था, अनाथी साथ मैं तन्हा नहीं था। और अब ये गज़ल मुलाहजा हो के दर्द हद से गुज़र गया है क्या, दर्द हद से गुजर गया है क्या, था जो एक ज़ख्म भर गया है क्या, दर्द हद से गुजर गया है क्या, था जो एक ज़ख्म भर गया है क्या, अब तो एहसास भी नहीं बाकी, अब तो एहसास भी नहीं बाकी, वो जो मुझ में था मर गया है क्या, अब तो एहसास भी नहीं बाकी, वो जो मुझ में था मर गया है क्या। और ये शेर के अश्क रोशन है सब की आँखों में, अश्क रोशन है सब की आँखों में, बाद मुद्दत वो घर गया है क्या, अश्क रोशन है सब की आँखों में, बाद मुद्दत वो घर गया है क्या, कि ये घड़ी दो घड़ी का वहम ना हो, ये घड़ी दो घड़ी का वहम ना हो, कोई दिल में उतर गया है क्या। वो जो गुमसुम खड़ा है आंगन में, तवज्जो चाहूँगा कि वो जो गुमसुम खड़ा है आंगन में, अपने बच्चों से डर गया है क्या, वो जो गुमसुम खड़ा है आंगन में, अपने बच्चों से डर गया है क्या। और ये आखिरी शेर के अब उसे नींद क्यों नहीं आती, अब उसे नींद क्यों नहीं आती, करके वादा मुकर गया है क्या, दर्द हद से गुजर गया है क्या, था जो एक ज़ख्म भर गया है क्या। और ये गज़ल शेर मुलाहजा हो, जैसा था जो भी था वो अच्छा था, जैसा था जो भी था वो अच्छा था, मेरा बचपन जो मुझ में रहता था, जैसा था जो भी था वो अच्छा था मेरा।

0: मेरा बचपन जो मुझ में रहता था, माँ की मजबूरियाँ तो जाहिर थीं, माँ की मजबूरियाँ तो जाहिर थीं, बाप चुपचाप रंज सहता था। अब तो जाने वो मर गया कब का, अब तो जाने वो मर गया कब का, एक शायर जो मुझ में रहता था। और ये शेर देखें कि वो जो करता था सच वही था बस, वो जो करता था सच वही था बस, वो जो कहता था झूठ कहता था, वो जो करता था सच वही था बस, वो जो कहता था झूठ कहता था। लब तो हिलते न थे सुखन के लिए, लब तो हिलते न थे सुखन के लिए, अपनी आँखों से सब वो कहता था। और ये आखिरी शेर देखें कि क्या अभी तक भी तुम मेरे हो नसीम, क्या अभी तक भी तुम मेरे हो नसीम, उसने आँखों से मुझसे पूछा था। जैसा था जो भी था वो अच्छा था, मेरा बचपन जो मुझ में रहता था। और ये गज़ल समाप्त फरमाए, कितनी रातें जगा गए हो तुम, कितनी रातें जगा गए हो तुम, मुझको अपना बना गए हो तुम, कितनी रातें जगा गए हो तुम, मुझको अपना बना गए हो तुम। दर्द की इंतहा से निकले थे, दर्द की इंतहा से निकले थे, रूबरू फिर से आ गए हो तुम। कितनी लाशें महक रही हैं यहाँ, सारी बस्ती जला गए हो तुम, कितनी लाशें महक रही हैं यहाँ, सारी बस्ती जला गए हो तुम। कि मुझको दुश्मन समझ रहे हो मियाँ, मुझको दुश्मन समझ रहे हो मियाँ, किसकी बातों में आ गए हो तुम। और ये शेर के हिजर की कैफियत का क्या कहिए, हिजर की कैफियत का क्या कहिए, ढल के अशकों में आ गए हो तुम, हिजर की कैफियत का क्या कहिए, ढल के अशकों में आ गए हो तुम। और ये आखिरी शेर, अब तो मैं नहीं हूँ तुमसा हूँ, अब तो मैं नहीं हूँ तुमसा हूँ, मुझ में ऐसे समा गए हो तुम, कितनी रातें जगा गए हो तुम, मुझको अपना बना गए हो तुम। और ये गज़ल समाअत फरमाए, तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते। और ये शेर के मैं सिर्फ इसी बात पे हैरान हूँ कब से, मैं सिर्फ इसी बात पे हैरान हूँ कब से, तुम दोस्त अगर हो तो दगा क्यों नहीं देते, मैं सिर्फ इसी बात पे हैरान हूँ कब से, तुम दोस्त अगर हो तो दगा क्यों नहीं देते। सूरज जो है मगरूर बुलंदी के सफ़र पर, सूरज जो है मगरूर बुलंदी के सफ़र पर, आई न सरे शाम दिखा क्यों नहीं देते। जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, ऐ यार तो मरने की दवा क्यों नहीं देते। जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, ऐ यार तो मरने की दवा क्यों नहीं देते। तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते। और ये गज़ल समाअत फरमाए, मतलब हाजिर है, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, हक बात ये कि हक से सरोकार भी नहीं, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, हक बात ये कि हक से सरोकार भी नहीं, दुश्मन है मेरा भाई मगर इसके बावजूद, दुश्मन है मेरा भाई मगर इसके बावजूद, आंगन में अब तलक कोई दीवार भी नहीं। और ये शेर मुलाहिज़ा हो कि नौ उम्र की दिलों में है गुंजाइशें बहुत, नौ उम्र की दिलों में है गुंजाइशें बहुत, लेकिन मोहब्बतों में गिरफ्तार भी नहीं। कि अब होशमंद नहीं यहाँ मखमूर हैं सभी, अब होशमंद नहीं यहाँ मखमूर हैं सभी, भटकाना इनको राह से दुश्वार भी नहीं। और ये शेर ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि मिलते हैं जिस तरह से यहाँ शहर में हबीब, मिलते हैं जिस तरह से यहाँ शहर में हबीब, ऐसे तो मेरे गांव के अगियार भी नहीं, मिलते हैं जिस तरह से यहाँ शहर में हबीब, ऐसे तो मेरे गांव के अगियार भी नहीं। तू काट देता है क्यों सदा बात से मुझे, आखिर तेरी ज़बां में तो तलवार भी नहीं, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, हक बात ये कि हक से सरोकार भी नहीं।
1: सामीन, अभी आप प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब नसीम अहमद ख़ान से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्स अदब। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवादी गतिविधियों को मिलने वाली आर्थिक मदद, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 125 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि परियोजना से भावनगर पारा में अतिरिक्त परिचालन क्षमता सृजित होगी, जिससे यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और रेल अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा इस महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए ये सीमा 4000 क्विंटल ही बनी रहेगी। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। सरकार ने देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। इस पहल के तहत करीब 3400 किसानों को सीधे 210 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। नई दिल्ली में श्री प्रसाद ने कहा कि वैश्विक संकटों, संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों के बीच ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत किस स्थान पर है। नेपाल में बचाव दल त्रिशुली 3A पनबिजली परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश

0: And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 4:10 हुए हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। खोई हुई महिला का पूरा नाम पिंकी देवी है, ये अजीत कुमार की पत्नी है। इन्हें अंतिम बार सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा में देखा गया। इनकी आयु 48 वर्ष है, शरीर की बनावट मजबूत है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। इनके चेहरे का रंग गोरा है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम ज्योति कुमारी है, इन्हें अंतिम बार सेक्टर 45 नोएडा में देखा गया। इनकी आयु 21 वर्ष है, शरीर की बनावट मजबूत है, कद 5 फीट 4 इंच है एवं रंग सांवला है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता महिला का पूरा नाम अनीता है, ये रवि कुमार की पत्नी है। निवासी मकान नंबर 169 SF काशीराम सोसाइटी बिरौंडी चक्रसेनपुर थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर। इन्हें अंतिम बार दिनांक 6 जून 2026 को इनके घर पर देखा गया। अनीता की आयु 36 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच है, शरीर की बनावट औसत है, चेहरा लंबा है एवं रंग गेहुआ है। इन्होंने अंतिम बार सिलेटी कलर की सूट सलवार पहनी थी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा महिला का पूरा नाम मोनी देवी है, इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 24 वर्ष है, शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम शैलजा सेकर है, ये जोधा सिंह की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। शैलजा शेगर की आयु 21 वर्ष है, शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 3 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम एकता है, इन्हें अंतिम बार 18 जुलाई 2026 को इनके घर पर देखा गया। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। एकता की आयु 20 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। एकता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उपनिरीक्षक थाना एक्सप्रेसवे नोएडा से संपर्क कर सकते हैं। खोई हुई युवती का पूरा नाम कुमारी कविता है, ये सूरज सिंह की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 19 वर्ष है, मजबूत शरीर है, रंग गेहुआ है, आंख कान नाक औसत है एवं कद 5 फीट है। कविता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में खोई हुई युवती का

का नाम अंशिका है। ये अरुण कुमार सिंह के पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार 7 जुलाई 2026 को ग्राम कुलेसरा में देखा गया। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनकी आयु 19 वर्ष है। कद 5 फीट 4 इंच है। शरीर की बनावट औसत है एवं चेहरे का रंग गोरा है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: कुछ लकीरें खामोश होकर भी हजारों किस्से कह जाती हैं, कुछ रंग कागज़ पर उतरकर दिल की दुनिया सजा जाती है। कला वो जुबां है दोस्तों, जिसे बोलने के लिए आवाज़ नहीं, बस एक एहसास चाहिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाणी। मैं हूं अक्षता।
0: और मैं हूं संचिता। आज की हमारी मुलाकात थोड़ी खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस हुनर की जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है।
1: बिल्कुल, कभी एक पेंसिल की हल्की सी लकीर किसी चेहरे को पहचान दे देती है, तो कभी ब्रश का एक स्ट्रोक पूरे कैनवस को एक नई कहानी देता है।
0: कभी स्केचिंग में सिर्फ काले सफेद रंग होते हैं, लेकिन उनमें छिपे भाव बेहद रंगीन होते हैं। और कभी पेंटिंग के रंग इतने बोलते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: कला सिर्फ कागज पर बनाई गई कोई तस्वीर नहीं है, कला तो हमारे आसपास हर जगह है। किसी की उंगलियों में थिरकती हुई नृत्य की मुद्रा में, किसी की आवाज में घुली हुई धुन में, और किसी कलाकार की कल्पना में जन्मी एक दुनिया में।
0: और शायद यही खूबसूरती है कला की। एक खाली कागज़ हर इंसान को एक जैसा दिखता है, लेकिन कलाकार की नज़र उसमें एक पूरी दुनिया देख लेती है।
1: तो आज की इस रंगीन मुलाकात में हम बात करेंगे स्केचिंग, पेंटिंग और आर्ट की। जानेंगे कि युवाओं के लिए कला सिर्फ एक शौक है या खुद को व्यक्त करने का एक खूबसूरत माध्यम भी।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम भरने वाले हैं आपकी शाम में कला का एक खूबसूरत एहसास। आगे सुनिए ये मधुर गीत मूवी बहारों से सपने। आज आजा पिया तुहे प्यार दूँ।

0: सुरों के इस खूबसूरत आगाज़ के बाद अब वक्त हो चला है हमारे स्पेशल सेगमेंट आज की बात का। और दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट डेडिकेटेड है एक ऐसे महान कलाकार को जिसने अपनी कलम से क्रांति लिखी। लेकिन संचिता, इस स्पेशल सेगमेंट का आगाज़ मैं सीधे उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी लिखी कुछ बेहद दमदार पंक्तियों के साथ करूंगी। तो ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह अक्षता, इन लाजवाब पंक्तियों को सुनते ही हमारे लिसनर्स समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी गज़ल के जादूगर दुष्यंत कुमार जी के बारे में। और दोस्तों, आज का सेगमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन यानी 1 सितंबर 1947 को यूपी के बिजनौर में उनका जन्म हुआ था। आपको पता है संचिता, दुष्यंत कुमार जी की गज़लों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनमें आम आदमी की आवाज़, उसका संघर्ष और उम्मीद की झलक साफ दिखाई देती है।
1: बिल्कुल, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और गज़ल संग्रह जैसे साए में धूप, नाटक एक कंठ विषपाई और उपन्यास छोटे छोटे सवाल आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। जैसे उनकी मशहूर शायरी, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
0: क्या बात है संचिता, ये लाइंस हम जैसे यंगस्टर्स को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का करेज देती हैं।
1: और सबसे बड़ी बात अक्षिता, ये हमें सिखाती है कि चेंज लाने के लिए किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, शुरुआत सिर्फ एक इंसान से भी हो सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, दुष्यंत जी से जुड़े कई और खूबसूरत किस्से अभी बाकी हैं, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना पीयू बोले फिल्म परिणीता से।

0: क्या बात है, इस गाने ने माहौल में एक अलग ही मिठास भर दी। दोस्तों, आज हमारे इस खास सेगमेंट में महफिल सजी है दुष्यंत कुमार जी के नाम। वैसे आपको पता है, जब दुष्यंत जी ने लिखना शुरू किया, तब हिंदी कविता और उर्दू गज़ल के बीच एक बड़ी दूरी मानी जाती थी। लेकिन दुष्यंत जी ने आम बोलचाल के शब्दों से ऐसा पुल बनाया कि गज़ल हर हिंदुस्तानी की आवाज़ बन गई। उनकी एक बेहद खूबसूरत गज़ल सुनिए। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ।
1: वाह संचिता, बहुत ही खूबसूरत पेशकश। वैसे इस गज़ल की लाइन तो किसी रेल सी गुजरती है, पर तो बॉलीवुड भी फिदा है। फिल्म मसान का हिट ट्रैक इसी से लिया गया है।
0: वाओ, वैसे अक्षता, क्या आप जानती हैं कि दुष्यंत कुमार का ऑल इंडिया रेडियो से भी गहरा नाता था?
1: हाँ बिल्कुल, पता है संचिता, 1950 के दशक में वो भोपाल और दिल्ली रेडियो स्टेशन पर बतौर स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करते थे, और उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियाँ रेडियो के जरिए ही घर घर तक पहुँची और क्रांति की आवाज़ बन गई।
0: अक्षता, दुष्यंत कुमार जी की लाइफ जर्नी भले ही सिर्फ 42 साल की रही

0: हो, लेकिन सच तो ये है कि इतने कम समय में भी वो जो लेगेसी और इम्पैक्ट छोड़ गए हैं वो सदियों तक अमर रहने वाला है।
1: आई कम्प्लीटली अग्री विद यू संचिता। उन्होंने सच में ये प्रूफ कर दिया कि एक सच्चा कवि कभी मरता नहीं, वो अपने विचारों में हमेशा जिंदा रहता है।
0: सही कहा अक्षता, दुष्यंत जी के विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
1: आखिर में दुष्यंत जी का ये खास शेर याद आ रहा है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
0: वाओ, व्हाट अ पावरफुल लाइन अक्षता। और इसी सुपर अमेजिंग वाइब और एनर्जी के साथ हमारी सेगमेंट आज की बात में बस इतना ही। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत साथियां मूवी सिंघम से।

0: थैंक यू।
1: हमने यूथ पॉलिसी, कल्चर और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनी, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब आइए सुनते हैं यूं ही फिल्म से,
2: यूं ही फिल्म तनुविद्स मनु से।

दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे अनसंग हीरो से रूबरू करवा रहे हैं जो है पश्चिम बंगाल के अनुपम मुखर्जी। दिन में सिक्योरिटी गार्ड और दिल से एक बेमिसाल कलाकार। सुबह की पहली रोशनी के साथ अनुपम जी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर निकल जाते हैं। दिन भर एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर चुपचाप बिना थके घंटों खड़े रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। एक

0: वक्त था जब वो एक फुल टाइम आर्टिस्ट थे, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरतों ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। पर सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उन्होंने अपने सपने का साथ कभी नहीं छोड़ा।
1: इंडीड संचिता, इनफैक्ट अनुपम जी हम जैसे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो, अपने सपनों से समझौता कभी नहीं करना चाहिए।
0: दोस्तों, वो कहते हैं ना, सच्ची दरिया दिली का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। और अनुपम जी इस बात की जीती जागती मिसाल हैं। अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर वो बच्चों को चित्रकला सिखाते हैं, उन्हें रंगों की एक नई दुनिया से मिलवाते हैं और उनके सपनों को पंख देते हैं।
1: और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? उनके लिए किसी बच्चे की फीस या उसका बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए बस हुनर और हौसला ही सब कुछ है।
0: इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है तो उसे कभी मत छोड़िए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सीने में जुनून की लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए।
1: दोस्तों, इसी सुपर अमेजिंग वाइब और एनर्जी के साथ मन से माइक्रोफोन के सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आइए सुनते हैं फिल्म बर्फी का ये प्यारा सा गाना, मैं क्या करूं।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और स्वागत है आप सभी का हमारे सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री में। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के ऐतिहासिक सफर की। संचिता, 1 सितंबर 1942 का दिन हमारी हिस्ट्री में बेहद खास है। इस दिन कैप्टन मोहन सिंह और राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसने आगे चलकर नेताजी के नेतृत्व में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के जज्बे के साथ अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ऐसे वीरों को हमारा सलाम।

0: अक्षता, 1 सितंबर 1947 को भारत ने ऑफिशियली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST अपनाया था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से तय की गई इस एक घड़ी ने पूरे देश को आज़ादी के तुरंत बाद एक साथ बांध दिया। नेशनल यूनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कदम था।
1: आई अग्री संचिता, और वैसे 1 सितंबर मार्क्स द स्टार्ट ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1982 में मैल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, और ये हम सब के लिए एक बढ़िया रिमाइंडर है कि प्रोसेस्ड जंक फूड को टाटा कहें और अपनी प्लेट में फ्रेश वेजीज, फ्रूट्स और मिलेट्स शामिल करें। सो मेक हेल्दी चॉइसेस और अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए।
0: अब वेलबींग की बात चली है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, राइट अक्षता?
1: यस, एब्सोल्युटली।
0: यू नो, 1 सितंबर 1956 को भारत ने 245 प्राइवेट इंश्योरर्स को नेशनलाइज करके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC क्रिएट किया था। शेयर ट्रस्ट पर बनी यह कंपनी आज हर हाउस होल्ड की पहचान है, और इसका आइकॉनिक प्रॉमिस तो हम सभी को पता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
1: और संचिता, 1 सितंबर 1668 को इंग्लैंड के किंग चार्ल्स टू ने बॉम्बे का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। डाउरी में मिला मछुआरों का ये छोटा सा आइलैंड ग्रुप इसी फैसले के बाद एक बड़ी कमर्शियल हब के रूप में डेवलप हुआ, और आज यही मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है।
0: एंड लास्टली, 1 सितंबर 1947 को पोस्ट इंडिपेंडेंस रायट्स के बीच पीस रिस्टोर करने के लिए महात्मा गांधी ने कोलकाता में फास्ट अनटू डेथ शुरू किया था। उनका ये कदम इतना पावरफुल था कि सिर्फ 73 घंटे के अंदर वेपन्स सरेंडर कर दिए गए और हार्मनी वापस लौट आई, यह हमारी हार्ड अर्न्ड यूनिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करने का एक टाइमलेस रिमाइंडर है।
1: वेल फ्रेंड्स, हिस्ट्री के इन्हीं आइकॉनिक पेजेस को समेटते हुए दैट्स ऑल फॉर टुडे सेगमेंट ऑफ टुडे इन हिस्ट्री। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत ट्रैक मूवी वीर से, सुरीली अखियों वाले।

सुनिए सुनिए, संगीत की लहरों के साथ आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब आता है क्विक बस। यहाँ हम लेकर आते हैं देश भर से खुशियों की जानकारियाँ, प्रेरणा के किस्से और वो लम्हे जो आपका दिन बदल देंगे। खेल के मैदान से लेकर संस्कृति के आंगन तक, ये है तेज, तुरंत और बिल्कुल ताजी जानकारी। भारत के हृदय से आ रही हैं जानकारियां आपके लिए। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते भारत में क्या क्या हुआ। भारत में 28 अगस्त से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस का जश्न पूरे देश के उच्च शिक्षा स्थानों में मनाया गया। इस साल की थीम खेले का भारत, जीते का भारत ने देश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों को अपने परिसरों में खेल और फिटनेस गतिविधियों को जीवंत आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। अगस्त के आखिरी दिनों में भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए उत्साह के नए कारण सामने आए। भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर 2026 में बांग्लादेश का दौरा करने जा रही है, जहां 1 सितंबर से बांग्लादेश की टीम के खिलाफ मुकाबले खेलेगी। इस दौर में 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। ये दक्षिण एशिया के क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज होगी। इसके अलावा सितंबर से अक्टूबर 2026 तक जापान में आयोजित होने वाली 2026 एशियाई खेलों में भारत की क्रिकेट टीमें बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। भारत पुरुष और महिला दोनों T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का रक्षक चैंपियन है, जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। भारत की सांस्कृतिक और राजनयिक शक्ति को विश्व मंच पर प्रदर्शित करने के लिए साल भर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में कोलंबो में भारत सप्ताह 2026 के दौरान एक 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ये समारोह भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों का जश्न मनाता है। इसी के साथ हमारा क्विक बस सेगमेंट खत्म होता है। आइए सुनते हैं नैना दा क्या कसूर फ्रॉम अंधाधुन फिल्म।

0: तो दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी।
1: अपने फीडबैक और सजेशन हमें ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन ही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं yuvvanifeedback@gmail.com, yuvvanifeedback@gmail.com पर।
0: याद रखिए, हर रोज शाम 4:15 पर आपका अपना शो युवानी आपके साथ जुड़ता है। इसी के साथ मैं अक्षिता मिश्रा
1: और मैं संचिता आपसे अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे की जांच नहीं करने का आदेश दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। यह आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन की घटनाओं पर कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को भी कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने आज कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्य के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकता। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं 840 मीट्रिक टन प्याज लेकर दूसरी मालगाड़ी चेन्नई पहुंच चुकी है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने का एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार एवं शासन में MA की डिग्री दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बोले।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
2: तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आरती और मेरे साथ है शीतल। देखिए, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी, जिसके अंतर्गत हम लेकर आते हैं लोक संस्कृति की मिट्टी की खुशबू, लोक जीवन की सादगी और हमारे पारंपरिक गीतों की मधुरता को।
0: जी बिल्कुल, लोक संगीत सिर्फ सुर और संगीत नहीं होते, बल्कि इनमें बसती है हमारी परंपराएं, हमारी भावनाएं और हमारे जीवन के रंग। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं पहला लोकगीत होशियारी चौहान की आवाज़ में।

0: भी आपने सुना हो होशियारी देवी चौहान से ये लोकगीत। और देखिए लोकगीतों की सबसे ख़ास बात यही होती है आरती बहन कि इसके बोल जो होते हैं वो सीधे हमारे दिल को पहुंचते हैं और सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने गांव, अपनी मिट्टी और पुरानी यादों के बीच पहुंच गए हों।
1: बिल्कुल, लोक संगीत पीढ़ियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए हैं। रिश्तों की मिठास हो या प्रेम की भावना हो या फिर जीवन के छोटे छोटे रंग, सब कुछ लोकगीतों में बड़ी खूबसूरती से दिखाई देता है।
0: जी बिल्कुल। और अब समय है आज के अगले गीत का, अगले लोकगीत का, और सुनते हैं अगला लोकगीत ब्रह्मपाल नागर और कुसुम गौड़ की आवाज़ में।

अभी श्रोता सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर और कुसुम गौड़ की आवाज में ये लोकगीत की पिया मेला देखन जाऊं। मेलों का दोस्तों अपना ही एक रंग होता है, आनंद होता है, क्योंकि गांव कस्बों में क्या होता है कि बाजार तो होते नहीं है जैसे शहरों में होते हैं। आसपास जो बाजार हुए, कभी भी मन किया और निकल गए। गांव में जो बाजार करने का जो वो होता है, कभी भी आप देखिए लोग वेट करते हैं कि मेला लगेगा, वहां से शॉपिंग करेंगे।

तो गांव कस्बों में लगने वाले जो मेले केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों के आपस में जोड़ने और लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का भी एक जरिया है। अब ऐसे में आप मेले जाएंगे, आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, आप खुश रहेंगे, और खुश रहने का एक और जो कहते हैं तरीका है, या आप खुद ब खुद खुश हो जाएंगे जब आप सही रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो अगला जो हमारा लोकगीत है वो भी यही कह रहा है कि जीवन में रहो निरोग। आइए सुनते हैं ये लोकगीत भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

तुम स्वस्थ रहो और मस्त रहो, योग से आप दुरुस्त रहो। तुम स्वस्थ रहो और मस्त रहो।

तो श्रोताओं, इस मधुर लोकगीत के साथ आज के कार्यक्रम लोक रंजनी को यहीं विराम देने का समय हो चला है। उम्मीद है लोक संगीत से सजी आज की ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। इन गीतों की मिठास आपके दिल को जरूर छुई होगी। इसी के साथ हमारा आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर, और मेरे साथ है मेरे साथी प्रतीक आनंद।
3: नमस्कार
2: प्रतीक। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं।

0: है चाइना मास्टर्स बैडमिंटन से, और आज से चाइना मास्टर्स बैडमिंटन जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, और बल्कि स्टार्ट हो चुका है, और 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक ये खेला जाएगा। शेंजैन चाइना का एक शहर है, वहाँ पर ये खेला जा रहा है, और ये वर्ल्ड टूर सुपर 750 टूर्नामेंट है, और टोटल प्राइस जो इसमें दिया जाएगा वो तकरीबन 1.25 मिलियन डॉलर्स, US डॉलर्स की इनामी राशि का वाला ये टूर्नामेंट है। और 1 और 2 सितंबर को पहले राउंड यानी कि राउंड ऑफ 32 के मुकाबले होंगे, उसके बाद 3 सितंबर से राउंड ऑफ 16 के मुकाबले होंगे, 4 सितंबर को क्वार्टर फाइनल्स, 5 को सेमीफाइनल्स और 6 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और अभी तक जो जिस तरह से मुकाबले शुरू हुए हैं, तो भारतीय हम बात करें तो भारतीय जोड़ी इस समय मैदान पर है, और ए हरिहरन के साथ भारत के दूसरे जो खिलाड़ी हैं एम आर अर्जुन, ये दोनों खिलाड़ी चाइना की जोड़ी के साथ खेल रहे हैं। और पहला जो सेट है वो कोर्ट नंबर 2 पे ये मुकाबला चल रहा है, राउंड ऑफ 32 का ये मुकाबला है। पहला सेट जो है वो 11-8 की बढ़त के साथ चाइनीज़ खिलाड़ी अभी आगे चल रहे हैं, और जिस तरह से ये पूरा मुकाबला चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि ये जो टूर्नामेंट है चाइना मास्टर्स, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और काफ़ी टफ भी है प्रतीक ये।
1: जी बिल्कुल।
0: और जिस तरह से अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट नंबर 2 पर भारतीय जोड़ी सामना कर रही है चीनी खिलाड़ियों का, और लगातार हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अब रुख कर लेते हैं एशिया कप, महिला एशिया कप T20 का, और हमारे सहयोगी प्रतीक ने बहुत ही शानदार रिपोर्ट बनाई है, आइए सुनते हैं।
1: बात करते हैं क्रिकेट की। महिला एशिया कप 2026 में 31 अगस्त का दिन बांग्लादेश के नाम रहा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में बांग्लादेश ने इंडोनेशिया को 71 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत। इस मुकाबले की खासियत सिर्फ बांग्लादेश की जीत नहीं थी बल्कि इंडोनेशिया के लिए यह महिला एशिया कप का पहला मुकाबला था, यानी इंडोनेशियाई महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन। और उसी ऐतिहासिक शुरुआत के सामने बांग्लादेश ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। टॉस इंडोनेशिया की कप्तान नी नंदा सकर्णी ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बांग्लादेश की कप्तान निगर सुल्ताना की टीम शुरुआत में बहुत तेज गति से रन नहीं बनाए, लेकिन पारी के आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजों ने स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से सबसे बड़ी पारी शोभाना मोस्तारी ने खेली। उन्होंने 42 गेंदों में 40 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इसके बाद शौरना अख्तर ने सिर्फ 18 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाकर पारी को तेज गति दी। शौरना की पारी में 3 चौके और 1 छक्का रहा और उनका स्ट्राइक रेट 172 से अधिक रहा। दिलारा अख्तर ने 31 गेंद पर 27 रन बनाए जबकि कप्तान निगर सुल्ताना ने 11 गेंदों में 10 रन जोड़े। इंडोनेशिया की गेंदबाजी में नी कदेक अरियानी और नी लोदेवी सबसे प्रभावी रही। दोनों ने 3-3 विकेट निकाले। अरियानी ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए जबकि देवी ने 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल। इंडोनेशिया ने बांग्लादेश को 129 रन तक सीमित रखा और एक समय मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बांग्लादेश की असली ताकत दूसरी पारी में सामने आई। 130 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडोनेशिया की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। उसके बल्लेबाज बांग्लादेश की स्पिन और सटीक गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए। इंडोनेशिया की ओर से मारिया कोराजोन ने 13 गेंदों में 12 रन बनाए और वही टीम सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी रही। नीलू देवी और रहमावती पंगेस्तुती ने 9-9 रन बनाए लेकिन कोई भी बल्लेबाज पारी को संभाल नहीं सका। पूरी इंडोनेशियाई टीम 17.3 ओवर में 58 रन पर सिमट गई और बांग्लादेश ने मुकाबला 71 रन से जीत लिया। बांग्लादेश की जीत की सबसे बड़ी नायिका रही नाहिदा अख्तर। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मारूफा अख्तर ने भी 3 ओवर में केवल 6 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। सांजिदा अख्तर और फाहिमा खातून ने 1-1 विकेट निकाला। इस गेंदबाजी प्रदर्शन ने इंडोनेशिया की रन गति को पूरी तरह रोक दिया। बांग्लादेश के लिए यह जीत महत्वपूर्ण रही क्योंकि टीम 2018 में महिला एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। उस ऐतिहासिक उपलब्धि के 8 साल बाद बांग्लादेश एक बार फिर महाद्वीपीय खिताब की दौड़

0: में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहेगी।
1: और वहीं दूसरी ओर ये तो बात थी कल के मुकाबले की, और आज जो मुकाबला खेला जाना है प्रतीक, क्या लगता है क्या होगा?
0: जी हाँ, आज पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह टूर्नामेंट का पहला मैच होगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात करीब 8 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, थाईलैंड और हांगकांग के साथ है। पाकिस्तान की कप्तानी फातिमा सना करेंगी और उनके लिए यह मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद उसे 5 सितंबर को भारत और 7 सितंबर को हांगकांग का सामना भी करना है। इसलिए टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगा पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं अंक तालिका की। मौजूदा अंक तालिका में ग्रुप ए में भारत एक मैच में एक जीत के साथ 2 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। थाईलैंड 2 मैचों में एक जीत और एक हार के साथ 2 अंक लेकर दूसरे स्थान पर। ग्रुप बी में श्रीलंका एक जीत में 2 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं। वहीं बांग्लादेश भी 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
1: और क्रिकेट की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब थोड़ा बात कर लेते हैं घरेलू क्रिकेट की। और घरेलू क्रिकेट में इस समय जिस तरह से डीपीएल दिल्ली में खेली जा रही है, और डीपीएल के साथ पहले तो डीपीएल के जो मुकाबले थे लड़कों के, बॉयज़ के, पुरुषों के, वो तो पूरे हो चुके हैं, और उसको जीतने वाली टीम थी साउथ दिल्ली की। जो दिल्ली की टीम है, साउथ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम, वो जीत गई थी उसको। लेकिन अब बात आई है महिलाओं की। महिलाओं का आज मुकाबला खेला गया, उसमें नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम का मुकाबला था साउथ दिल्ली से। हालांकि फाइनल में भी यही दोनों टीमें हैं, तो एक तरह से फाइनल की रिहर्सल इसको कह सकते हैं। लेकिन आज के मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली ने बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं बनाया था, केवल 126 रन ही बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था कप्तान जो नॉर्थ दिल्ली की हैं आयुषी सोनी ने, जिन्होंने 62 रन की पारी खेली 55 गेंदों पर, और उनका साथ निभाया अर्चना ने और आखिरी में समायरा राघव ने। इस स्कोर का पीछा करने जब साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम उतरी तो बहुत अच्छे से वो पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। लगातार अंतराल पर उनकी विकेटें गिरती रहीं, और प्रिया पुनिया जिन्होंने एक बहुत बड़ी इनिंग खेली थी वो भी आज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकी। केवल 31 रन का योगदान ही उन्होंने टीम के लिए दिया, और कुल मिलाकर निर्धारित 20 ओवर्स में साउथ दिल्ली की टीम केवल 124 रन ही बना सकी 7 विकेट के नुकसान पर। और एक और मुकाबला अभी थोड़ी देर बाद ही शुरू होने वाला है महिलाओं का, वो हो रहा है सेंट्रल और ईस्ट दिल्ली की टीमों के बीच में। हालांकि ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है, दोनों ही टीमें फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं, और अब वो मुकाबला 7 बजे से खेला जाना है। और उसके बाद कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा डीपीएल में, महिला सेगमेंट का फाइनल मुकाबला होगा जिसमें साउथ दिल्ली की और नॉर्थ दिल्ली की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं घरेलू क्रिकेट की बात को और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं दिलीप ट्रॉफी की।
0: जी हाँ, दिलीप ट्रॉफी में 2 सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, जहां पहले सेमीफाइनल का नतीजा निकल कर आ चुका है। ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 4 विकेट से मात दे दी है। सेंट्रल जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बनाए, जिसके जवाब में ईस्ट जोन ने भी 266 रन बनाए। उसके बाद सेंट्रल जोन ने अपनी दूसरी पारी में जोयाल की मदद से 46 रन की पारी की मदद से 158 रन बनाए, जो कि ज़्यादा कारगर नहीं साबित हो पाया। और ईस्ट जोन ने यह 159 रनों का टारगेट तीसरे दिन पूरा कर लिया, 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बात करें दूसरे सेमीफाइनल की, तो नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच चल रहा यह मुकाबला, जहां नॉर्थ जोन पहली इनिंग में 195 रन बनाकर ऑल आउट हो गया, वहीं साउथ जोन ने अपनी पहली पारी में 312 रन बनाए। अब नॉर्थ जोन दूसरी पारी में 256 रन 7 विकेट के नुकसान पर खेल रहा है। दिन के अंत तक
1: बहुत अच्छी बात है इस समय जिस तरह से दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं। और दिलीप ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जहां से हमारे जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं वो टेस्ट मैच की टीम के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और दावेदारी तो पेश कर रहे हैं यूएस ओपन में भी। टेनिस के सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें होता है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है, ये बताएंगे प्रतीक।
0: न्यूयॉर्क की रात, हजारों दर्शकों की गूंज और दुनिया के सबसे बड़े टेनिस मंच पर हर अंक के साथ बदलती कहानी। यूएस ओपन के पहले दौर का दूसरा दिन ऐसा रहा जिसमें एक तरफ चैंपियनों ने अपने अभियान

0: की शानदार शुरुआत की तो दूसरी तरफ कुछ बड़े नामों के लिए न्यूयॉर्क का सफर पहले ही पड़ाव पर खत्म हो गया। 2026 का यूएस ओपन न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज स्थित यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर के हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। पुरुष और महिला एकल का पहला दौर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा, जबकि पुरुष और महिला युगल प्रतियोगिताओं का पहला दौर 3 और 4 सितंबर से शुरू होगा। आइए नजर डालते हैं कल खेले गए कुछ मुकाबलों पर। पुरुष एकल में सबसे बड़ी खबर रही दूसरी वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज की वापसी। 4 महीने से अधिक समय तक कलाई की चोट के कारण प्रतिस्पर्धी टेनिस से दूर रहने के बाद स्पेनिश खिलाड़ी ने रोमन सफियुलिन को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। आर्थर एश स्टेडियम में अल्काराज ने शुरुआत से ही बेसलाइन पर नियंत्रण रखा और तीनों सेट में सफियुलिन को वापसी का मौका नहीं दिया। मैच के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अल्काराज ने अपनी कलाई को लेकर कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं की। 139 दिनों के अंतराल के बाद ग्रैंड स्लैम कोर्ट पर उनकी यह वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने खिताब की रक्षा करने उतरे हैं। दिन के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में देखने को मिला। पूर्व विश्व नंबर 3 स्टेफेनोस सिटसिपास ने 10वीं वरीयता प्राप्त और हाल में सिनसिनाटी चैंपियन बने आर्थर फिल्स को 4-6, 7-6, 6-1, 6-4 से हराया। फिल्स ने पहला सेट जीतकर और दूसरे सेट में बढ़त बनाकर मैच पर पकड़ बना ली थी, लेकिन सिटसिपास ने शानदार वापसी की। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी हार्ड कोर्ट सत्र में सिटसिपास का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इसके अलावा अन्य मुकाबलों में फेलिक्स ओजे अलियासिमे ने रिकी हाजिकाता को 7-5, 4-6, 6-3, 7-5 से हराया, जबकि दूसरी ओर मटेओ बेरेटिनी ने स्टैन वावरिंका को 7-6, 7-6, 6-0 से हराकर स्विस दिग्गज के ग्रैंड स्लैम करियर का अंत कर दिया। वावरिंका 41 वर्ष के हैं और 2016 में यूएस ओपन के चैंपियन रहे थे। न्यूयॉर्क में उनका यह 18वां यूएस ओपन था। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले वावरिंका के लिए यह मुकाबला परिणाम से कहीं ज्यादा विदाई का क्षण बन गया। बात करते हैं महिला एकल की। महिला एकल में गत विजेता और विश्व नंबर 1 आर्याना साबलंका ने कमीला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हराकर अपने लगातार तीसरे यूएस ओपन खिताब की ओर पहला कदम बढ़ाया। साबलंका 2024 और 2025 में न्यूयॉर्क की चैंपियन रही हैं और इस जीत के साथ उन्होंने अपनी खिताबी रक्षा की शुरुआत कर दी है। अगर वह इस बार भी चैंपियन बनती हैं तो यूएस ओपन महिला एकल में लगातार 3 खिताब जीतने वाली खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सूची में अपना नाम ऊपर ले जाएंगी। महिला वर्ग में ही इगा श्वेतक ने भी चीन की वांग शियू को सीधे सेटों में हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त श्वेतक ने 6-2, 6-3 से जीत दर्ज की और इसी के साथ उन्होंने लगातार 8वीं बार यूएस ओपन का पहला दौर जीता। इस उपलब्धि ने उन्हें सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स और किम क्लाइस्टर्स की लगातार 8 पहली दौर की जीत की उपलब्धि के बराबर ला खड़ा किया। श्वेतक का अगला मुकाबला नादिया पोडोरोस्का से होगा। एक अन्य मैच में नाओमी ओसाका ने भी बेहद कड़े मुकाबले में अनस्तासिया जाखारोव को 7-6, 7-6 से हराया। दोनों सेट टाई ब्रेक तक गए और ओसाका ने महत्वपूर्ण मौकों पर अपना धैर्य बनाए रखा। 2 बार की यूएस ओपन चैंपियन ओसाका के लिए यह जीत वापसी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 10वीं वरीयता प्राप्त और पिछले वर्ष की उप विजेता अमांडा अनिसिमोवा ने अपने 25वें जन्मदिन पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एशलिन क्रूगर को 6-1, 6-3 से हराया। करोलिना मुकोवा और विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा ने भी दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं टेलर टाउनसेंड ने भी 20वीं वरीयता प्राप्त माजा हॉलिंस्का को 6-2, 6-3 से हराकर उलटफेर किया। अब एक नजर डालते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबलों पर। आज 22वीं वरीयता प्राप्त मेडिसन कीज और युवा अलीना कॉर्नेवा के बीच मुकाबला होगा। इसके बाद 9वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्स का मुकाबला वाइल्ड कार्ड डार्विन ब्लांच से होगा। शाम के सत्र में घरेलू दर्शकों के सामने सबसे बड़ी उम्मीदों के साथ कोको गॉफ आएंगी, जिनका सामना जेनेप टॉनमेज से होगा। इसके बाद पुरुषों में शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वरेव लोरेंजो सोनेगो के खिलाफ खेलते दिखेंगे। इसके अलावा 5वीं वरीयता प्राप्त रोलेंड गैरोस चैंपियन मीरा आंद्रीवा का सामना इंडोनेशिया की जेनिस जेन से होगा। साथ ही पुरुषों में 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी फ्लाविओ कबोली फ्रांसिस्को कोमेसेना से भिड़ेंगे। महिला वर्ग में 17वीं वरीयता प्राप्त फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला का मुकाबला अमेरिकी क्वालिफायर मैरी स्टोयाना से होगा। महिलाओं में दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रिबकीना वाइल्ड कार्ड टेलर फ्रॉडिन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुषों में 13वीं वरीयता प्राप्त लोरेंजो मुसेती का सामना आर्थर फेरी से होगा, जबकि 6ठी वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनोर क्वालिफायर एड्रिया गुएरेरी के खिलाफ खेलेंगे।
1: यूएस ओपन के बाद अब बात करते हैं अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप

0: के ट्रायल्स की, और इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में भारतीय महिला पहलवानों ने अपनी ताकत, तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। इन ट्रायल में अलग अलग भार वर्गों में पहलवानों ने जोरदार मुकाबले किए और अब विजेता पहलवानों के सामने अगली बड़ी चुनौती है अमेरिका में होने वाले अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। आइए जानते हैं किस भार वर्ग में किस पहलवान ने बाजी मारी और किसने हासिल किया विश्व मंच का टिकट। सबसे पहले बात 50 किलोग्राम भार वर्ग की। यहाँ हरियाणा के परवीन ने पहला स्थान हासिल किया जबकि मध्य प्रदेश की प्रियांशी दूसरे स्थान पर रही। परवीन के लिए यह जीत बेहद अहम है। जीत के बाद परवीन से हमने जाना उनकी रणनीति और अमेरिका को लेकर तैयारी के बारे में।
2: फाइनल में जो मेरी अपोनेंट थी प्रियांशी दी, मेरे को एक बार तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं उनसे जीत जाऊंगी, पर फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपना 100% देना है और अच्छा लड़ूंगी, इसलिए तो फिर मैंने खुल के अपना 100% दिया और मैं जीत गई।
1: क्या प्लान बना उतरी थी फाइनल में? क्या आपकी बहन स्वीटी, वो भी जीती है, कुछ आपस में बातचीत हुई थी?
2: हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है। एक तो उन्होंने मेरे लिए जो वेट छोड़ दिया, वो 53 में लड़ी अब की बार, और वो मुझे समझा रही थी क्योंकि उनकी बहुत बार उनके साथ फाइट हुई है, तो वो मुझे बता रही थी, मोटिवेट कर रही थी।
1: अब अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे अमेरिका खेलने के लिए, कितना एक्साइट है, वहाँ क्या उम्मीद है?
2: उम्मीद तो गोल्ड की है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि अमेरिका जा रहे हैं पहली बार। जो एक बचपन में एक ड्रीम देखते हैं जो एरोप्लेन में बैठने का, वो पूरा हो रहा है और अमेरिका जा रहे हैं।
1: इसी तरह 53 किलोग्राम में मुकाबला रहा हरियाणा की स्वीटी और उत्तर प्रदेश की डोली के दरमियान, जहाँ स्वीटी ने जीत दर्ज कर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया। वहीं आपको बता दें, स्वीटी 50 किलोग्राम भार वर्ग की विजेता परवीन की बहन है। अब दोनों बहनें अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगी।
2: मेरा नाम स्वीटी मलिक है और आज मैं 53 केजी में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। मेरी फाइनल फाइट थोड़ी सी टफ थी, मैं 10-2 के स्कोर से उसको विन किया है, और मेरी जो सेमीफाइनल फाइट थी वो इससे थोड़ी ज्यादा हार्ड थी मेरे लिए क्योंकि जो रेसलर थी कीर्ति, वो अच्छी प्लेयर थी, तो सेमीफाइनल मैंने उसको हराया था। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम एक ही सेंटर से दो बहनें हम अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई हैं।
1: 55 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की अहिल्या शिंदे ने पहला स्थान हासिल किया। अहिल्या ने हरियाणा की काजल को पीछे छोड़ते हुए ट्रायल अपने नाम किया। महाराष्ट्र की अहिल्या के लिए अब अगला लक्ष्य होगा विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना। जीत के बाद अहिल्या शिंदे ने कहा, पहली बार विश्व चैंपियनशिप में जाऊंगी और गोल्ड मेडल लेकर वापस आऊंगी।
3: अच्छा मुकाबला रहा, 5-6 से कुश्ती हो गई मेरी, और इससे पहले उसने भी मुझे हराया था और मैंने भी उसको हराया था, तो वो भी अच्छी है, अच्छी बाउट रही।
1: पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही
3: है? पहली बार जा रही हूँ।
1: क्या उम्मीद है, वहाँ क्या होगा?
3: वहाँ पे जाके मेरा मेन तो ये तो मकसद है कि मैं गोल्ड मेडल ही लेके आऊंगी, प्रैक्टिस और बढ़ा दूंगी, बस गोल्ड मेडल ही लेके आऊंगी।
1: पहली बार अमेरिका जाएगी?
3: हाँ, पहली बार, बहुत खुश हूँ मैं, पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही, घर वाले भी खुश है, कोचेस ये भी सब सारे खुश है।
1: अब बात 57 किलोग्राम भार वर्ग की, जहाँ दिल्ली की नेहा शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। नेहा ने हरियाणा की सिमरन को पीछे छोड़ा। 59 किलोग्राम वर्ग की बात करते हैं तो हरियाणा की कोमल ने जीत दर्ज की। कोमल ने अपने ही राज्य की अंजलि को पीछे छोड़ा। इसी तरह 62 किलोग्राम में हरियाणा की नेहा सागवान ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने दिल्ली की नीतिका को मात दी और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। 65 किलोग्राम में महाराष्ट्र की वैष्णवी पाटिल ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने फाइनल में हरियाणा की अंजलि को शिकस्त दी। अब बात 68 किलोग्राम की करते हैं। रोमांच से भरे इस मुकाबले में हरियाणा की मानसी लाठर ने पहला स्थान हासिल किया जबकि दिल्ली की सृष्टि दूसरे स्थान पर रही। मानसी के सामने नई दिल्ली की इस जीत को अमेरिका में पदक में बदलने की चुनौती होगी। जीत के बाद मानसी लाठर से हमने खास बातचीत की।
2: इट वॉज वेरी गुड, वो काफी टफ कम्पिटिटर थी, उनके साथ मेरी पहले भी बाउट हो चुकी है, तो सारी टफ थी, तो ये इसका यही था कि जितनी हो सके टफ कुश्ती निकालनी।
1: क्या प्लान बना के फाइनल में उतरी?
2: सब मेन तो यही था कि ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग रखनी है और कम से कम स्कोर देने हैं।
1: क्या सोचा था इतनी टफ कुश्ती होगी, कहीं अप्स एंड डाउन हो रही थी काफी?
2: सर, बाउट से पहले अप्स एंड डाउन सोचने लगते हैं तो बॉडी वैसे ही वर्क नहीं करती, तो ये सब कुछ आउट ऑफ माइंड करना पड़ता है, तो अपने मेन फोकस अपनी अटैकिंग और जो अपने काम है उन पे रखना पड़ता है।
1: वो कुश्तियाँ लड़ी टफ कौन सी?
2: फाइनल वाली टफ।
1: पहली कुश्ती तो आपने जाते ही निकाल ली थी, उसके बारे में जरा बताइए।
2: सब मेन तो यही रहता है कि जाते ही जितना जल्दी हो सके, अगर बाउट हमारे हाथ में आ रही है तो उसका हाथ से जाने नहीं देना क्योंकि लास्ट तक कुछ नहीं पता, क्योंकि ये रेसलिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है।
1: अब अमेरिका जाएंगी फाइनल खेलने के लिए, कितना एक्साइट है, वहाँ के बारे में क्या कहेंगे?

0: अपनी मेहनत ज्यादा रखनी है और अपनी अटैकिंग पे वर्क।
1: सीनियर और अंडर 23, आपने अंडर 23 क्यों चुनी?
0: सर मेन यूं नहीं था कि हमें दोनों में से चुननी, हमें यूं था कि जो पहले उसको ट्राई करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट के लिए ट्राई करें।
1: इसको कैसे देखते हैं कि जो सीनियर में खेलेगा वो अंडर 23 में नहीं खेलेगा, जो अंडर 23 खेलेगा वो सीनियर में नहीं?
0: सर ये तो फेडरेशन का काम है, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ यहाँ लड़ना है और अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है।
1: अगर आपको दोनों में खेलना होता क्या आप दोनों में जा सकती थी, ऐसा कुछ सोचा था पहले?
0: यस सर, उसके लिए दोनों के लिए अच्छा ट्राई करते हैं, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है तो मेन फोकस अंडर 23 पे ही रहे।
2: वहीं 72 किलोग्राम में महाराष्ट्र की अमृता पुजारी ने पहला स्थान हासिल किया, उन्होंने हरियाणा की तनु शर्मा को पीछे छोड़ा। अब सबसे भारी 76 किलोग्राम भार वर्ग की बात करते हैं, यहाँ हरियाणा की दीक्षा मलिक ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि हरियाणा की ही मनीषा दूसरे स्थान पर रही। और अब दीक्षा के सामने है विश्व चैंपियनशिप की चुनौती। जीत के बाद दीक्षा मलिक से सुनिए वो क्या कहती हैं।
3: चोट के बाद मैं आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंजरी थी कमर में, 2-3 मंथ से काफी इंजर्ड थी, रिहैब और सिर्फ मैं ट्रेनिंग से ही था। कुछ कमियां हैं अभी, उन्हें सुधारना है और मैं आगे अपना 100 और दूंगी।
1: बड़ा तगड़ा मुकाबला फाइनल।
3: हाँ काफी टफ थी सर, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई थी और वो भी लास्ट में थक गई, बट अपोनेंट्स ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले कि अब तो चाहे कुछ हो जाओ अब तो नहीं आ रहा।
1: ठान लिया?
3: हाँ ठान लिया था सर, लास्ट की 1-1.5 मिनट में अपोनेंट का कुछ उठ के भी चला गया था।
1: जब कोई पहलवान इस तरह बोलता है तो क्या कहीं ध्यान तो नहीं भटकता, कहीं अपना जो आपका मूवमेंट वो भी तो कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है?
3: सर मुझे हमेशा से पावरफुल मेरे अपोनेंट्स के कोच और उनके वर्ड्स बनाते हैं हमेशा से।
1: अब वर्ल्ड चैंपियनशिप पे क्या आएगा?
3: ऑफ कोर्स सर मेडल दूंगी, अभी टाइम भी काफी है, मंथ से ज्यादा है, तो और मैं मेहनत करूंगी इस वेट में फिट होने की और कोशिश।
1: 1-2-3 कौन सा मेडल है?
3: ऑफ कोर्स सर गोल्ड के लिए सोचा, गोल्ड लेके ही आएंगे।
2: भारत की महिला कुश्ती की युवा ताकत एक बार फिर विश्व मंच पर अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। इन भारतीय पहलवानों का लक्ष्य एक ही है, भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करना और विश्व चैंपियनशिप में पोडियम पर पहला स्थान हासिल करना। यह भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच वीरेंद्र दहिया जो बता रहे हैं ट्रायल्स में कई उलट फेर देखने को मिले।
4: हाँ कई उलट फेर हुए, 55 किलो की बहुत बढ़िया कुश्ती थी, 62 किलो की लगभग बराबर कुश्ती थी, 55 किलो की, 76 किलो की। जैसे पिछली बार हम 2025 में अंडर 23 में इंडिया टीम वर्ल्ड में हम चैंपियन बने थे, जापान सेकंड थी, अमेरिका थर्ड थी। अब अमेरिका में टूर्नामेंट, अमेरिका की पूरी जोर शोर से तैयारी पे है, हम भी होप सो हम टॉप 3 में रहे।
1: कई बड़ी पहलवानों का आज बड़ा जूझना पड़ा, 68 किलोग्राम में काफी मुश्किल कुश्ती रही है, कई कुश्तियां काफी टफ।
4: हाँ 68 किलो में दोनों लड़की सृष्टि है, मानसी है, दोनों अंडर 23 की लड़की है, 20 साल की है, इन दोनों बढ़िया पहलवान, कई बार दोनों की कुश्ती हो चुकी है, एक दूसरे को रेगुलरली वो उसने हरा लिया उसने हरा लिया, तो नजदीकी मामला है भाई, लक जो जिसका लक बढ़िया होता है, दोनों बढ़िया पहलवान।
1: जो टीम चुनेगी 10 पहलवान कितने पदक आ सकते, कैसी टीम चुनेगी?
4: बढ़िया टीम है, हम टॉप 3 में रहेंगे, क्योंकि असल में क्या है हमारी कुछ बढ़िया पहलवान है, जिस तरह 76 किलो में है काजल है, प्रिया है, वो भी अंडर 23 की है, अंतिम भी अंडर 23 की है, एशियन गेम में सिलेक्ट 50 किलो में दीपांशी भी अंडर 23 की है, लेकिन हमने उनको थोड़ा अवॉइड किया है कि इंजरी से बचे, और प्रायोरिटी हमारे लिए एशियन गेम है, कुछ सीनियर वर्ल्ड में जाएंगी लड़कियां जैसे काजल है, प्रिया मलिक है, ये अंतिम है, मनीषा है, इसलिए ये नई लड़कियां हैं लेकिन ये बहुत बढ़िया लड़कियां हैं।
1: ये सीनियर और अंडर 23 को अलग कर दिया है, पहलवान दूसरे में ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लेगा, इससे कितना इनका फर्क पड़ेगा, इसको इसके बारे में थोड़ा समझाइए।
4: इसके हिस्से से ये फर्क पड़ा है, नए बच्चों को मौका मिल गया, लेकिन वो वीजा प्रोसेस का टाइम नहीं था दोनों कॉम्पिटिशन में, इसलिए ये दोनों टीम ट्रायल लगा रही है, ठीक निर्णय रहा, हमारी दोनों टीम संतुलित रहेंगी।
2: आज के लिए बस इतना ही, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शानवास खान के साथ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
5: रेसलिंग के मैट से अब आपको लिए चलते हैं फुटबॉल के हरे भरे मैदान पर, और एक बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस भारतीय फुटबॉल टीम ने दी है अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर में, भारत और सीरिया के बीच ये मुकाबला था। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक आनंद।
6: ये बात करते हैं फुटबॉल की। 31 अगस्त 2026 की शाम ताशकंद में भारतीय फुटबॉल की युवा टीम ने एक ऐसा परिणाम हासिल किया जिसमें चमक से ज्यादा धैर्य की कहानी थी। भारत ने सीरिया को 1-0 से हराकर AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर्स में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। यह मुकाबला उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्थित दोस्तलिक स्टेडियम में खेला गया। भारत और सीरिया ग्रुप बी में आमने सामने थे और भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत पिछले 2 दशक से AFC अंडर 20 एशियन कप के मुख्य टूर्नामेंट में जगह नहीं

0: बना पाया है। भारत का पिछला अंडर 20 एशियन कप क्वालिफिकेशन 2006 में हुआ था। भारत 1974 में ईरान के साथ संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का चैंपियन भी रह चुका है। बात करें मुकाबले की तो सीरिया ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया, मगर भारतीय गोलकीपर सूरज सिंह अहिबाम ने अपने पैर जमाए रखे और हर आक्रमण का बचाव किया, जिसकी बदौलत भारत मैच में बना रहा। मैच का एकमात्र गोल 86वें मिनट में आया, जब भारतीय खिलाड़ी MD अरबाज ने तेजी से गेंद पर कब्जा किया, बॉक्स में आगे बढ़े और गेंद कप्तान शामी सिंगामयम की ओर ढकेली। शामी ने मौके को गवाए बिना बाएं पैर से शानदार फिनिश किया और भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। आखिरी मिनटों में भारत ने संयम बनाए रखा और सीरिया को बराबरी का मौका नहीं दिया। सीटी बजते ही भारत के खाते में 3 अंक आ गए। इस जीत का सबसे खास पहलू यह है कि यह अंडर 19 अंडर 20 स्तर पर सीरिया के खिलाफ भारत की पहली प्रतिस्पर्धी जीत है। इससे पहले दोनों टीमों की प्रतिस्पर्धी स्तर पर 2 भिड़ंत हुई थी और दोनों में ही भारत को हार मिली थी। 1996 में भारत 1-0 से और 2004 में 2-1 से सीरिया से हारा था, इसलिए 2026 की यह जीत केवल 3 अंक नहीं बल्कि पुराना रिकॉर्ड बदलने वाली जीत भी है। भारत की नजर सिर्फ इस जीत तक सीमित नहीं है। AFC अंडर 20 एशिया कप चीन 2027 क्वालिफिकेशन में ग्रुप विजेता और 8 ग्रुपों में से 7 सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान वाली टीमें मुख्य प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ेंगी। भारत का अगला मुकाबला 3 सितंबर 2026 को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मैच दोस्तलिक स्टेडियम ताशकंत में ही खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार इसका किक ऑफ शाम 7 बजे निर्धारित है।
1: फुटबॉल की बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं सुब्रतो कप की। और सुब्रतो कप में अंडर 15 बॉयज के मैचेस आज से आरंभ हो चुके हैं और आज जो मुकाबला खेला गया था उसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये 65वां एडिशन है सुब्रतो कप का। और ये जो अंडर 15 के जो मुकाबले होते हैं इसमें 30 मिनट का प्लेइंग टाइम होता है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है और 30 मिनट का उसके बाद दूसरा हाफ होता है, यानी कि 30-10-30 के ये पैटर्न पर ये मुकाबला खेला जाता है। और उसके बाद यदि ये आगे एक्स्ट्रा टाइम के लिए यदि मुकाबला जाता है तो उसमें 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, फिर 1 मिनट का ब्रेक होता है और 7 मिनट का अतिरिक्त समय दोबारा दिया जा सकता है। और वहीं उसके बाद में फिर किक्स ऑफ पेनल्टी से ये मुकाबला डिसाइड किया जाता है। ये अंतिम चरण के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वहीं दूसरी ओर जो पूल हैं उसमें पूल ए, पूल बी, पूल सी, पूल डी, ई, एफ, जी और एच, कुल 8 पूल में ये सारे टीमों को बांटा गया है। और इस आज जो मुकाबला खेला गया वो CISCE और CBSE के बीच था, जिसमें 4-1 से दर्ज की गई जीत दर्ज की है CISCE ने। और एक और खबर फुटबॉल के क्षेत्र से बताना चाहते हैं प्रतीक, क्या है खबर?
0: फुटबॉल की दुनिया में कुछ खिलाड़ी सिर्फ मैच नहीं खेलते, वह एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। 31 अगस्त को ऐसा ही अध्याय आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। अर्जेंटीना के महान कप्तान और आधुनिक फुटबॉल के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय मेसी का यह फैसला 2026 फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन के हाथों अर्जेंटीना की हार के कुछ सप्ताह बाद आया। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मेसी ने फुटबॉल से पूर्ण संन्यास नहीं लिया है, वह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से अलग हुए हैं और इंटर मियामी के साथ उनका क्लब करियर जारी है। मेसी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा लगभग 21 वर्षों तक चली। उन्होंने 2005 में अर्जेंटीना के लिए पदार्पण किया था और अब 207 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 125 गोल के साथ राष्ट्रीय टीम से विदा ले रहे हैं। वह अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं।
1: एक बड़े युग का अंत हुआ है फुटबॉल में और मेसी ने न केवल मैच जीते बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रशंसकों का दिल भी जीता है। दोस्तों खेल की तो खबरें बहुत सारी हैं लेकिन स्टूडियो घड़ी बता रही है हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरे सहयोगी प्रतीक आनंद और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे

0: को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में MA की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization or SCO to dismantle the entire ecosystem of

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। श्रोताओं, ग्राम संसार कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपके साथ शीतल, और मेरे साथ हैं आज आरती बहन। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पोषण सुरक्षा हेतु श्री अन्न। तो ऐसे अनाज श्रोताओं, ऐसे पोषक जो हमें देते हैं, पोषण देते हैं, जो श्री अन्न होता है, हमारी परंपरागत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण तीनों से जुड़ा हुआ है। आज के समय में जब हम संतुलित और पौष्टिक आहार हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है, तब हमारी प्राचीन खाद्य परंपराओं में शामिल श्री अन्न, यानी कि जो मोटा अनाज जिसे बोलते हैं आज के डेट में, एक बार फिर हमारी भोजन की थाली में लौट आया है। बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सांबा जैसे अनाज केवल स्वाद और विविधता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इनमें फाइबर, प्रोटीन, खनिज तत्व और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो इसी पर हमारे श्रोताओं को एक बातचीत सुनवाएंगे, मनोरंजन भी करवाएंगे इसके बाद, और बहुत सारी जानकारी अपने श्रोताओं को देंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बातचीत से पोषण सुरक्षा हेतु श्री अन्न। डॉक्टर शुभांगी सिंह से बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल, आइए सुनते हैं।
1: किसान भाइयों नमस्कार। सभी लोगों को चिंता रहती है अपने स्वास्थ्य की, और स्वस्थ रहने के लिए निश्चित तौर पे आपको जिस तरीके से खाना, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अगर खाने में बात की जाए तो आपको सभी पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपके खाने में होने चाहिए। और पोषक तत्व जब ही होंगे जब वो हम अनाज खाएंगे, वो उत्पाद खाएंगे जिनके अंदर उनकी मात्रा भरपूर पाई जाती है। और हमारे देश में पहले अगर हम देखें तो जो हमारे मोटे अनाज जिनको कहते हैं, उनका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और सभी लोग स्वस्थ रहते थे, उनको कोई किसी तरीके की ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब से चलन मोटे अनाज का कम हुआ है और दूसरे खाद्य पदार्थों का बढ़ावा हुआ है, तब से सभी लोगों में कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिलती है। तो जो हमारे मोटे अनाज हैं जिन्हें हम श्री अन्न कहते हैं, उनका हमारी पोषण सुरक्षा में क्या महत्व है, ये किस तरीके से दूसरे विकल्प के रूप में हो सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शुभांगी सिंह जी को, जो कि गोल्डन मिलेट नई दिल्ली में उसके फाउंडर हैं। शुभांगी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो मिलेट हैं, तो ये पहली बात तो कौन कौन से हैं जो हमारे रोज़मर्रा में प्रयोग किए जा सकते हैं?
2: मिलेट बहुत तरीके के होते हैं। लोगों को लगता है कुछ दालें भी हैं जो मिलेट्स में आती हैं, बट ऐसा नहीं है। ये मिथ मैं सबको बता दूं कि 12-15 तरीके के मिलेट्स होते हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, रागी, ये सबको पता होता है। उसके बाद आता है चौलाई, जिसको राजगिरा कहा जाता है, जिसको हम फोड़ के पॉपकॉर्न की तरह लड्डू भी बना के हम व्रतों में खाया जाता है। उसके बाद आते हैं सामक के चावल, स्पेशली नॉर्थ साइड में उसको सामक के चावल कहते हैं, साउथ में उसको भगर कहते हैं। उसके बाद आता है कुटकी। कुटकी बहुत छोटा दाना होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है कोदो। कोदो को कुछ क्षेत्रों में हमारे भारत के कोदा भी कहा जाता है, एंड इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे ब्लड के लिए भी जरूरत होती है और हमारे गट के लिए भी बहुत जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं कंगनी। कंगनी में कैल्शियम बहुत होता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद आता है, दो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जाने नहीं जाते मगर हमारी बॉडी के लिए एंटी कैंसरस का काम करते हैं, उनका नाम है प्रोसो, जिसको बिहार साइड में चीना भी कहा जाता है। और लास्ट है ब्राउन टॉप। ब्राउन टॉप को हरी कंगनी का नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो चावल है, मिलेट का चावल है, वो हरे रंग का होता है। तो ये कुछ लगभग हैं जो ज्यादा जाने गए हैं। इसके साथ और भी हैं बट वो कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत लार्ज मात्रा में पाए नहीं जाते। तो ये लगभग, अगर सबको नाम और वैसे देखना हो, सब मार्केट में भी अवेलेबल है और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके इन्हें देख भी सकते हैं। हमारे जो भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर है, वहाँ पे आप जाके इसको देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टेस्ट भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने कई जो हमारे मिलेट हैं उनका जिक्र किया, लेकिन इतने मिलेट हमारे देश में हैं और इनका उत्पादन भी

0: होता है, लेकिन इसकी
1: जी
0: तरफ लोगों का रुझान क्यों कम हुआ है?
1: जब हम इतना ज़्यादा एक ही अनाज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे हम अगर लंच की बात करें, हमारे यहाँ चावल या गेहूं की रोटी यही सबसे ज़्यादा फेमस है। अब इसके अंदर मोटे अनाज को डालें कैसे, ये हमारी पहले के पीढ़ियों को सबको पता था और बहुत अच्छी अच्छी व्यंजन बनाए जाते थे इससे। बट आज के टाइम पे एक तो समय की पाबंदी है लोगों के पास, दूसरा इसको बनाने के लिए लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा या कुछ अलग तरीके का प्रक्रिया होगा।
0: तो जब बनाने की बात आए तो इनसे
1: जी
0: कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: जी सबसे ज़्यादा तो अगर हम ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बात करें, ब्रेकफास्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले जो मिलेट के पोहे आते हैं आप उसे स्मूदीज बना सकते हैं। बच्चों के लिए शेक इतना अच्छा वो है, उसमें डेट्स डालिए, उसके अंदर किशमिश डालिए असली मिठास के लिए, फ्रूट्स डालिए असली मिठास के लिए, उसमें भीगे हुए पोहे डालिए, इससे आपकी स्मूदी बन सकती है। फिर आपके चीला हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, जितना साउथ इंडियन व्यंजन है वो बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसके दलिया ले सकते हैं, ज्वार का दलिया, बाजरे का दलिया, इनसे आप दलिया बना सकते हैं सुबह। ये आपके ब्रेकफास्ट को इतना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, जो आजकल इतना सब लोग चल रहा है कि इंडिया में प्रोटीन की कमी रहती है, वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपका इसी से ही कंप्लीट हो सकता है। मगर बनाने का तरीका बहुत आसान है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सीखना चाहें तो लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर आते हैं हम लंच पे। देखो वैसे तो मिलेट खाने के बाद लंच तक भूख नहीं लगती, मगर फिर भी अगर किसी को भूख लगती है तो आप रोटी या चावल को इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं अपने रोटी के अंदर, जैसे कुटकी का आटा या कंगनी का आटा या ज्वार का आटा आप ऐड कर सकते हैं, उसको मल्टीग्रेन बना सकते हैं। अगर वो नहीं तो मैं चार तरीके की आपको रोटियां बनाती हूँ। अगर मैं रोटियां आपको बताती हूँ तो सबसे पहले आता है सामक की रोटी। सामक की रोटी आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके ब्लड में जाके आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैंडल करती है, आपके शुगर स्पाइक को हैंडल करती है। दूसरी आती है रागी की रोटी। रागी की रोटी अगर आप खाते हैं तो आपको नेचुरल विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है। 98% आपका लिवर यहाँ पे कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब है आपके दूध से ज़्यादा, आपके पनीर से ज़्यादा, आपके हर चीज़ से ज़्यादा कैल्शियम आपके रागी के अंदर एब्सॉर्प्शन लेवल, बच्चों के लिए तो सुपर ग्रेन है ये। तीसरी रोटी जो आती है बाजरे की रोटी। सबको लगता है बाजरे की रोटी बहुत गर्म होती है, बट ऐसा नहीं है। तासीर उसकी अगर आप खाएं तो वो शरीर के अंदर से गर्मी निकालती है, इसका मतलब शरीर को ठंडा रखती है। तो आपके फाइबर इश्यूज़, अगर आपके पेट में दिक्कत है या कुछ भी है, आप जो भी जब भी तो बाजरे की रोटी में थोड़ा सा जो हमारा इसबगोल होता है वो डाल लीजिए, आपका पेट इतने अच्छे से रहेगा कि ना आपको इश्यूज होंगे ना ही आपको कोई भी गर्मी जैसा लोग बोलते हैं वैसा होगा। और आखिरी रोटी जो आती है वो है ज्वार की रोटी। अगर किसी को भी खून को साफ करने की या हाइपरटेंशन, बीपी, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिड इश्यूज अगर किसी को भी हैं, पेट से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, अगर वो ज्वार की रोटी एक भी दिन दो भी दिन अगर साथ में खा लें तो उनको तीसरे दिन से फर्क दिखने लग जाएगा कि हमारा पेट आज बहुत बेटर है पिछले दो दिन से। तो ये तीन चार तरीके की रोटियां हैं, अगर हम इन्हें बनाना सीख लें, बहुत इजीली गर्म पानी में बनती हैं ये, अगर सीख लें तो बहुत ही ज़्यादा आपका लंच बेटर हो सकता है। फिर आता है आपका इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में मिलेट के नूडल्स वगैरह बहुत कुछ मिलते हैं, आप कटलेट बना सकते हैं मिलेट्स के, आप इसका उपमा बना सकते हैं। और डिनर के लिए अंबाली जो है, जो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, प्रोबायोटिक ड्रिंक जो आप घर में बना सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी बाहर की कंपनी से लेकर पीने की ज़रूरत नहीं है या कोई गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इसको फर्मेंट करके आप इसको किसी भी फ्लेवर में बनाइए। आप बच्चों को पिलाना है चॉकलेट फ्लेवर में बनाइए, आपको खुद खाना है डिनर में सब्जियों के साथ खाइए, आपको जैगरी डालना है जैगरी डालिए। तो ये ऐसी चीज़ है जो आपकी 3 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा गट को, गट के माइक्रोब सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारा गट सेकंड होम होता है, उसको रीसेट करने की शक्ति रखता है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से आप ब्रेकफास्ट की बात करती हैं, और ब्रेकफास्ट तो सुबह बनाया जाता है और विशेष तौर पर महिलाएं बच्चों के लिए बनाती हैं, और क्योंकि बच्चों में इंटरेस्ट हो इसके प्रति खाने का, और दूसरी बात क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय समय कम होता है
1: जी।
0: तो क्या ये कुछ चीजें बनी हुई भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं जिनको बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है?
1: बिल्कुल सही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेक मिक्स हो गया, प्रीमिक्स, चीला के प्रीमिक्स हो गए, आपको इसमें सिर्फ पानी या दही मिलाना है और आपको घोलना है और फिर बना सकते हैं। ऐसे प्रीमिक्सेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर और बहुत इजीली इनको आई थिंक 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर ही बनाया जा सकता है।
0: और बच्चे इनकी तरफ ज्यादा प्रयोग करें क्योंकि इसको देख के थोड़ा सा मुंह भी बनाते हैं
1: जी।
0: तो

0: के लिए उसमें क्या ऐसा कुछ मिलाया जाए जिससे
1: जी
0: उनका टेस्ट और बढ़े।
1: जी एक तो बच्चों को मैंने देखा है आजकल मीठा या चटपटा बहुत अच्छा लगता है। आजकल जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो चिप्स की, क्योंकि उसमें चटपटा एक फ्लेवर होता है, उनको वो पसंद होता है। या एक पैनकेक या मिठास की तरफ जाते हैं, केक की तरफ, पेस्ट्री की तरफ। तो ये सारी चीज़ ना आप मिलेट से अगर बनाएंगे ना, तो एक तो आपको नेचुरल कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं आप, जैसे जैगरी हो गया या डेट्स हो गए, या फिर आपने किशमिश डाल के कर दिया, तो इससे आप पैनकेक बना दीजिए। चीला भी बना रहे हैं तो चटपटा चीला बनाइए, उसमें मसाले वगैरह डाल के बनाइए, जीरा डालिए, चाट मसाला डालिए। इससे बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और दूसरा, अगर आपको उनकी स्नैकिंग, जैसे हमने चिप्स वगैरह की बात करी, अगर इसे रिप्लेस करना है तो मिलेट के वो भी अवेलेबल हैं। आप घर में तो बना ही सकते हैं, जो लोग बनाते हैं वो बना सकते हैं, बट मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं।
0: कहते हैं कि हमारा एक बाजरा है
1: जी
0: या कुछ ऐसे और भी मिलेट हैं जिसका आटा बनाने के बाद वो
1: जी
0: ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, वो ख़राब हो
1: जी
0: जाता है।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इसको सही रखने के लिए भी कुछ उसमें मिलाया जाता है, क्या है तरीका?
1: जैसे मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक तो जब भी आप पिसवाएं तो अपने सामने पिसवाएं, जैसे आपको पता हो उसमें इंग्रेडिएंट प्योर डला है। आप देखें बाजरे की क्वालिटी क्या है, ज्वार की क्वालिटी क्या है, उसे सामने चक्की में पिसवाएं। हम पहले अपना आटा खुद ही पिसवाते थे, खुद ही गेहूं धोते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: अपने अनाज धोकर लेके जाते थे सुखाकर। आज भी हम अगर वो प्रतिज्ञा ले सकें, स्पेशली इन टीयर टू सिटीज़ के अंदर ये थोड़ा पॉसिबल है, तो वहाँ अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। अगर नहीं, क्या आप देखिए कि आपका बाजरा साफ, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, उसमें डस्ट ना हो, ये सारी देखिए। प्रोसेसिंग में सबसे ईजी यही होगा, संडे टू संडे आप जाइए, 5 किलो 10 किलो अगर आपने आटा ले भी लिया तो उसको वापस आके थोड़ा सा आपने एक छोटे डब्बे में रख लीजिए। और अगर बचा है और आपको लगता है बहुत लंबे समय तक चाहिए होगा, इसे छोटे छोटे डब्बे में या छोटे छोटे पैकेट में करके इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप फ्रीजर में भी रख सकते अगर आपको लंबा चाहिए है तो। बाजरे की जैसे आपने बात करी, यह सत्य है कि बाजरे का जो आटा है 15-20 दिन से ज्यादा बाहर खुले में नहीं चलता। उसका इशू है उसका ऑयल, उसके अंदर ऑयल जो होता है वो हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देता है, वैसे ही वो इंस्टेंट एनर्जी देना शुरू कर देता है जैसे ही आटा बनता है। तो आटा बनते ही उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 15 दिन की होती है, उसमें जो तेल है वो धीरे धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, तो इसलिए उसको रेंसिडिटी कहा जाता है। इसको बचाने के लिए आप उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज़ आपकी 3 महीना भी चल सकती है।
0: जी बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे श्रीअन्न हैं वो पोषण सुरक्षा के लिए काफ़ी विकल्प हो सकते हैं अगर इनका
1: जी
0: सही तरीके से प्रयोग किया जाए और अपने खाने में सम्मिलित किया जाए। तो हमारे जो श्रोता हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो अपने खाने में श्री अन्न की मात्रा को बढ़ाएं, उसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहें?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी सेहत जो है हमारे खुद के एक छोटे से बदलाव से ही शुरू होती है। हम घर में जो स्वादिष्ट हमें बाहर खाना मिलता है, बाहर व्यंजन मिलता है, यह सब कुछ हम घर पे भी बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी कुजीन हो, चाहे वो भारतीय कुजीन हो, चाहे वो जापनीज कुजीन हो, चाहे वो नूडल्स पास्ता हो, चाहे वो मोमोज हो, सब चीज़ के अंदर मोटे अनाज को आप डाल सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। रेसिपीज आपको बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इंटरनेट पे सिखा रहे हैं, तो आप उनसे भी सीखिए, वीडियोस देखिए। हम अपने ही पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए अगर एक दो वीडियो से कुछ के अगर कुछ अच्छा बना सकें 5-10 मिनट के अंदर अंदर, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, इसे कोई भी बना सकता है और बहुत टेस्टी बन सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को एजुकेशन करिए, ताकि एजुकेशन से आप लॉन्ग टर्म में इसको इन्वॉल्व कर सकें अपने डेली डाइट में।
0: जी बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप एकदम मत शुरुआत कीजिए, थोड़े थोड़े करके आप उसको
1: जी
0: शुरू करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और दूसरे कि जो हमारे मोटे अनाज हैं या श्री अन्न हैं, अगर हमारे किसान भाई इनकी खेती भी करते हैं, इनमें कोई ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है,
1: जी
0: न इनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, कम
1: जी
0: लागत में हो सकते हैं और दूसरी फसलों के साथ भी इनको उगाया जा सकता है।
1: जी आपने ये जो बात कही कि किसान भाई हमारे अब बहुत ज़्यादा मिलेट्स को भी उगाना शुरू कर रहे हैं, ये उगाते थे मगर खरीदारी नहीं थी इसकी। सबसे
0: जी
1: बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसान भाई अगर उगा भी दें तो खरीदारी नहीं थी। अब किसान भाइयों को कहीं ना कहीं तो वो फसल फसल बेचनी है, अगर अपने लिए उगा लिया तो ठीक है, मगर बेचने के लिए तो कोई खरीदार चाहिए होता है। तो अब नॉर्थ साइड में जितना भी हमारे साउथ साइड में ऑलरेडी मिलेट्स बहुत उगता है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस डबल हो गई है वहां पर, मगर हमारे नॉर्थ साइड में जितने भी किसान भाई बहन है उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ऑलरेडी बहुत सारे किसानों के साथ इसको उगा रहे हैं और उगाने

0: के बाद खरीदारी भी करा रहे हैं और बिकने में भी हम मदद कराते हैं। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग भी हमारी जो यहाँ नॉर्थ में है अवेलेबल है, उससे आप मदद ले सकते हैं। और किसान भाई बहन सिर्फ वही नहीं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हैं मार्केट में। तो अगर व्यवसाय एंगल से देखा जाए तो किसान भाई जो उगा रहे हैं उसको डायरेक्ट ना करके उसका वैल्यू एडेड भी सामान मार्केट में बेच सकते हैं, उसकी भी उपलब्धता है। और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, गवर्नमेंट की बहुत स्कीमें हैं जिसका वो यूज़ भी कर सकते हैं।
1: और जो श्री अन्न को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है?
0: श्री अन्न के लिए आप अगर फार्मिंग साइड में हैं तो वहाँ पे भी इसके अंदर सब्सिडीज हैं। अगर कोई उद्यमी है, अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं तो बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं। मशीन खरीदने के विकल्प अलग हैं, जो स्कीम्स अलग हैं। अगर लोन लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए वो अलग है। उद्यमी को अगर शुरू करना है पैकेजिंग साइड में, अगर इसको पैक करके कुछ सामान आगे भेजना है तो उसके लिए भी, एजुकेशन साइड में भी बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स खोले हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। तो सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, मगर बस एक जज्बा चाहिए। आप घर से भी छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, मशीन्स भी बहुत छोटी छोटी अवेलेबल हैं आजकल। और उसको करने के बाद आप मार्केट अगर ढूंढें तो मार्केट के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत जगह स्टॉल देती है, उसके
1: मेले
0: साथ
1: लगाते हैं,
0: मेले भी लगाते हैं। और आपको हो सकता है गवर्नमेंट्स के अंदर खरीदारी भी होती है, प्लेटफॉर्म जैसे ONDC वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बनाए हुए हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है, बस एक
1: आपको जागरूक होने की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल, शुभांगी सिंह जी आप हमारे स्टूडियो में आए और निश्चित तौर पे आपने श्री अन्न के बारे में काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से इससे पोषण सुरक्षा की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी ये बातचीत, शुभांगी सिंह से शिवेंद्र लाल की बातचीत थी और विषय था पोषण सुरक्षा हेतु श्री अन्न। चलिए वक्त है मनोरंजन का और करवाते हैं आपका मनोरंजन, सुनते हैं जयवीर सिंह।

0: तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे श्री अन्न के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, कि जो हमारा मोटा अनाज है वो हमारे भोजन को पौष्टिक और विविध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पोषण की बात और हमारी किशोरियों का जिक्र ना हो तो ये चर्चा अधूरी रह जाती है। आरती बहन,
1: बिल्कुल सही कहा शीतल आपने। किशोर अवस्था जीवन का वे महत्वपूर्ण चरण होता है जब शरीर में तेज़ी से शारीरिक और जो मानसिक है वो विकास होता है, और इस दौरान शरीर को ऊर्जा और प्रोटीन, विटामिन, जितने भी जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है।
0: जी बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण तत्वों में से है आयरन, यानी कि लौह तत्व, जिससे हमारे शरीर को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
1: सही कहा, क्योंकि देखिए आयरन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़ता है।
0: जी बिल्कुल, और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर आगे, और अब आपको सुनवाते हैं एक और रागनी आशु की आवाज़ में।

0: श्रोता सुन रहे थे बबीता को। और देखिए, वाकई सच में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए आयरन की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे आप गीत सुन रहे थे, जब देखिए जच्चा बच्चा की बात होती है शीतल बहन, तब भी जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको उस समय पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर पहले से चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसका हर्जाना
1: आने वाले बच्चों को भी पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आरती बहन। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
0: प्रस्तुतकर्ता थे कार्यक्रम के तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद

0: को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2,873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4,000 से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2,250 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व बंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
2: मिलेगा पेंशन का।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की

0: केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर। मेरे साथ में है
4: नीलम वर्मा
3: और आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नीलम जी, आज आधुनिकता की दौड़ में मानव खुद की परवाह किए बिना दिन रात सब कुछ भुलाकर बस दौड़ता चला जा रहा है। इस दौड़ में दौड़ना गलत नहीं है बल्कि सबको समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना गलत है। इसीलिए भारतीय समाज स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियाँ निरोगी रहें, क्योंकि स्वस्थ पोषण ही पीढ़ियों के स्वास्थ्य का आधार होता है। इस बात को जानते हुए भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पोषण के प्रति ये जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलाया जाता है, इसी कारण इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है क्योंकि आज है 1 सितंबर।
4: बिल्कुल, हर वर्ष भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर माह के पहले सप्ताह यानी कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हर वर्ष इस सप्ताह का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को पोषण के प्रति राष्ट्रीय मंच से जागरूक करना होता है और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक ऐसा माध्यम है जो आपको जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।
3: और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के समाज में पोषण के प्रति जन जागरण करना होता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व की जानकारी को प्रदान करवाना होता है।
4: बिल्कुल, और पोषण युक्त आहार को देकर और इसकी जानकारी प्रदान करवाकर नागरिकों को मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव शरीर में उचित पोषण के महत्व और कार्य पर जोर देकर नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना होता है।
3: तो कहने का मतलब यह है कि पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही होता है कि आप पोषण के प्रति जागरूक रहें, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, अक्सर उनमें खून की कमी देखी जाती है, तो वो अपने पोषण का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ नीलम जी, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी पूरे देश के पोषण का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस समय जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में धान की फसल उगाई होगी, उससे हमें चावल मिलता है, तो वो पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे किसान भाइयों की जो धान की फसल है वो अच्छी हो, और इस समय उनको क्या कुछ समसामयिक कार्य करने चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए ताकि वो देश में पोषण की भरपाई में सहयोग करें, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप?
5: धन्यवाद, और सभी किसान भाई और बहनों को भी मेरा नमस्कार। हम सकुशल हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो भी सकुशल होंगे।
3: बिल्कुल, और हमको भी उनकी फसल की चिंता होती है, तभी तो आज आपको कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कि ताकि हमारे जो किसान भाइयों की धान की फसल है वो अच्छी रहे। तो अगर डॉक्टर साहब हम बात करें इस समय की, तो क्या स्थिति है धान की फसल की?
5: इस समय धान चाहे आपने रोपाई विधि से लगाया हो चाहे आपने सीधी बिजाई की हो, दोनों ही परिस्थिति में धान अब जननिक अवस्था की तरफ अग्रसर है। किसान भाइयों, धान की दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। एक वानस्पतिक अवस्था होती है जब इसमें ब्यांत बनता है, कल्ले बनते हैं, और फिर इसमें जो है वो पौधों की लंबाई बढ़ती है। ब्यांत पूरा होने के बाद धान की फसल तुरंत अपनी जननिक अवस्था की तरफ शुरू होती है, यानी बाल बननी उसमें शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, जब आप निकली हुई बाल देखते हैं उसके एक महीना पहले पौधे के अंदर बाल बनना शुरू हो जाती है, ये सारी की सारी जननिक अवस्था कहलाती है। और जिस दिन बाल निकलती है, जैसे ही बाल निकलती है तुरंत उसमें फूल भी बनने लगते हैं, यानी फूल उसके खिल जाते हैं और उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसी अवस्था में इस समय आपकी फसल है।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की जो फसल होती है उसको पानी की आवश्यकता होती है, तो किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं अपनी धान की फसल में जल का प्रबंधन करें?
5: देखिए, देश के बहुत बड़े तबके में, बहुत बड़े क्षेत्र में धान की फसल को उगाया जाता है। वर्तमान आंकड़ों को देखें हम तो 50 मिलियन हेक्टर क्षेत्र, ज़्यादा क्षेत्रों में धान उगाया जाता है, और देश का ऐसा कोई राज्य या भाग नहीं

0: है जिसमें धान नहीं उगाया जाता। और अच्छी बात यह है कि कुछ भागों को छोड़कर ज़्यादातर भागों में जहाँ धान उगाया जाता है वहाँ पे बहुत अच्छी बरसात हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिंचाई की धान में इस समय आपको कम आवश्यकता होगी अगर आपकी बरसात अच्छी हुई है तो। हाँ, अगर कहीं पे ज़्यादा बरसात होगी, बाढ़ आ गई, तो वहाँ धान से आपको पानी को निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि धान अब जननिक अवस्था में, तो भाइयों बहनों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस समय पे धान की फसल में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हर समय हमारे धान की फसल में होना चाहिए। एक दिन के लिए भी पानी या 2 दिन के लिए भी पानी नहीं होगा तो उसका हमारी फसल की पैदावार पर उल्टा असर होगा। तो अतः इस दिशा में आप ध्यान रखें, आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपने खेत में पानी बनाए रखें, कम से कम छिछला पानी आप उसमें बनाए रखें।
1: बिल्कुल। तो किसान मित्रों, आप ज़रूर ध्यान दें इस बात पर कि आपको जल का प्रबंधन ठीक तरह से धान की फसल के लिए करना है। डॉक्टर साहब, फसल कोई भी हो, खरपतवार आते ही आते हैं,
0: जी
1: तो उनका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कर सकते हैं?
0: जी जो ये अवस्था है, आज की अवस्था है धान की, जो ज़्यादातर जननिक अवस्था है, इस अवस्था पे खरपतवार पहले ही किसान भाई नियंत्रित कर लेते हैं। और अगर इस समय भी किसी किसान भाई के खेत में खरपतवार हैं तो इस समय पे कोई भी खरपतवार नाशी दवाई नहीं है जो धान की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कर सके। अगर इस अवस्था पे आपके खरपतवार आते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हों चाहे संकरी पत्ती के हों, उनको आपको निकाई द्वारा हाथ से ही आपको उनको उखाड़ के बाहर खेत के फेंकना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
1: बिल्कुल। तो इस तरह से किसान मित्रों, आप अपने धान की फसल से जो खरपतवार हैं उनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे खरपतवार आते हैं तो फसलों में रोग कीट भी आते हैं, तो
0: जी
1: इस वक्त तो जो अभी आपने जो अवस्था बताई है धान की फसल की, तो कौन कौन से कीट के आने की संभावना होती है और क्या हानि वो पहुँचाते हैं?
0: निश्चित तौर पे इस समय पे कीटों की अगर हम बात करें तो तना छेदक एक कीट होता है, वो तो हर साल आता ही है धान में, और वो अवस्था को नहीं देखता, वो वनस्पति की अवस्था में भी आता है और जब बालियां निकलती हैं तब भी आता है। इसी तरीके से पत्ती लपेटक कीट है, ये भी कभी भी आ सकता है, खास करके शुरुआती अवस्था में काफ़ी आता है। तीसरा महत्वपूर्ण कीट है धान का, जो भूरा फुदका कहते हैं, ब्राउन प्लांट होपर। ये भूरे फुदके होते हैं, ये पौधे के तने पे बैठते हैं नीचे और फसल को नुकसान कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चल के जब आपके दाने में दूध बनेगा, अभी तो शायद वो अवस्था नहीं आई है, तब आपके गंधी कीट भी आ सकता है। इसके अलावा और कई सारे कीट हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात यही है कि आपको देखना है कि कहीं आपकी धान की फसल को इन कीटों द्वारा नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि खेत में आप जाएं सुबह या शाम और अपनी फसल को गौर से देखें और पौधों को हिलाएं, कहीं कोई कीड़े मकोड़े आपको उड़ते तैरते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप तुरंत उनका समाधान करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बात की थी तना छेदक कीट की और पत्ती लपेटक कीट की, तो किस प्रकार ये फसल को हानि पहुंचाते हैं और इनकी रोकथाम है वो कैसे की जा सकती है?
0: जी ये दोनों कीट लगभग साथ साथ ही धान की फसल में आते हैं। और पहले हम तना छेदक की बात करते हैं। इसकी जो सूंडी या इल्ली होती है वो जमीन की सतह से पौधे के तने में घुस जाती है, धान के तने में घुस जाती है और अंदर के पदार्थों को खाती रहती है। तो ऊपर की जो बीज की पत्तियां होती हैं वो भूरी होकर सूख जाती हैं, इसको हम मृत केंद्र कहते हैं, डेड हर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर तना छेदक बाली अवस्था पे आता है तो ये सूंडी अंदर ही अंदर बाली को काट देती है, और फिर आप अगर इस तरह की बाली को देखेंगे तो उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा, उसमें दाने नहीं भरेंगे, खाली उसमें जो है दाने दिखाई देंगे आपको और बाली का रंग सफ़ेद होगा। कुछ किसान भाई इसको सफ़ेद बाली रोग भी कहते हैं, हालांकि ये रोग नहीं है, कीट द्वारा हानि होती है। इस तरह की बाली को आप जब खींचेंगे तो बड़ी आसानी से वो खिंच जाती है और इससे पैदावार में काफ़ी हानि होती है। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई ये पत्ती लपेटक क्या करता है, तो इसकी भी सूंडी नुकसान करती है। ये करती क्या है, पत्ते पे पहुंच जाती है और पत्ते को जो किनारे होते हैं दोनों तरफ से उनको सील देती है और अंदर एक सुरंग सी बना लेती है, इसको लीफ रोलर भी कहा जाता है, और अंदर से ये क्लोरोफिल को खा जाता है। किसान भाइयों, आपकी फसल के जो पत्ते हैं वो सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, और इसकी अवस्था अगर ज़्यादा उग्र हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका हमला हो जाए, तो पूरा खेत हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे चूने से किसी ने पुताई कर दी हो, जगह जगह आपको सफ़ेद पत्ते दिखाई देंगे। तो ये इन दोनों कीटों के लक्षण हैं, इनकी रोकथाम भी एक जैसी है, दोनों को मतलब एक दवाई से आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान से सुने, कार्बाफ्यूरान 3 CG है ये।

0: सीजी, जो जी है उस पर बैन लग गया है, लेकिन कार्बोफ्यूरान 3 सीजी जो है बाजार में मिलती है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुरक सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा ग्रेनुल होता है, दानेदार दवाई होती है, जिसको कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, इसकी 4G मात्रा होती है, 4% ग्रेनुल आते हैं, दाने आते हैं, इसका आप बुरकाव कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। इसके अलावा क्लोरपाइरीफास दवाई आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए 2 ग्राम क्लोरपाइरीफास आती है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कीटों के नियंत्रण करने के लिए आपने जो दवाइयाँ बताई हैं, छिड़काव के बारे में आप बता रहे हैं, तो किस समय छिड़काव करना चाहिए ताकि उसका असर सही तरह से हो?
0: जी बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि इस समय पर बरसात भी होती रहती है, तो अगर हमारी छिड़कने वाली दवाई है, अगर हम पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं, यानी हम स्प्रेयर मशीन से छिड़काव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें मौसम की जानकारी लेना चाहिए। अगर हमें पता है 4 घंटे बाद बरसात होगी, तो इस तरह के छिड़काव को आप टाल दें। जब आपको मौसम साफ दिखाई दे और उम्मीद हो कि अगले 6-7 घंटे बरसात नहीं होनी, तब आप इस तरह की दवाई का छिड़काव करें। दूसरी तरफ मैंने दानेदार दवाई जैसे आपको बताई है, इनमें खास ध्यान यही रखना कि खेत में ज़्यादा पानी ना भरा हो और ज़्यादा बारिश की संभावना ना हो, छिछला पानी हो, हल्का पानी हो, तब ये दानेदार दवाई ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो इसमें आप रेत में मिला के आप इस तरह के दानेदार दवाइयों को अपने खेत में बुरक सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दवाई अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं, खास करके कीट नियंत्रण की, तो अपने स्वास्थ्य का उस समय किस तरह से ध्यान रखना उनको आवश्यक है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसान भाई जब भी इन दवाइयों का छिड़काव करें, प्रयोग करें, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले अपनी आपको आँखों को बचाना है, इसके लिए आप एक चश्मा लगाएं, आपके सर में बालों में एक टोपा या कोई इस तरह की चीज़ ओढ़ें, और आपके अपने चेहरे को भी बचाएं, हाथों में दस्ताने हों, आपके ग्लव्स हों। आप कोशिश करें कि ये पदार्थ जो अब आप प्रयोग में लाते हैं खेत में, तो आपके शरीर पे ना आए, आपके किसी अंग में ना जाए। जो किसान भाई, हालांकि बीड़ी वाड़ी नहीं पीनी चाहिए आदमी को, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, फिर भी कोई किसान अगर इस तरह के कार्य को करता है, तो आपको छिड़कने के बाद तुरंत बीड़ी ना पिए, अपने मुंह पे अपनी उंगलियों को ना लगाएं, इससे भी आपको हानि हो सकती है। और साथ ही साथ मौसम का आपको ध्यान रखना है, और ये जो इसकी पैकिंग होती है, जो डब्बे होते हैं या पैकिंग होती है, उसको खेत के आसपास ना रखें, खेत से दूर ले जाके उनको नष्ट कर दें। और अगर घर में आप इस तरीके की जहरीली दवाई रखते हैं, तो उनको बच्चों की पहुँच से दूर रखें, और किसी कारणवश अगर आप इस दवाओं को सांस में ले लेते हैं या किसी तरीके से निगल जाते हैं, खा लेते हैं, तो तुरंत किसी चिकित्सक से आप संपर्क करें और अपना इलाज कराएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, और इसी बात से एक बात जोड़ते हुए मैं एक और जानकारी आपसे चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान मित्र अपने खेतों के लिए दवाइयाँ खरीदते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो या रोगों के लिए खरीदते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? कई बार नकली दवा भी आ जाती है।
0: जी बिल्कुल, देखिए अभी कई बार किसान भाई सवाल करते हैं, भाई मैंने खरपतवार नाशी डाला, कीटनाशी डाला, तो असर नहीं हुआ। किसान भाइयों, आजकल बाजार में बहुत नकली दवाएं, नकली चीज़ें मिल रही हैं। पहली बात तो ये है कि आपको किसी दुकानदार पर निर्भर नहीं होना है। आप दुकानदार को समस्या कुछ बताएंगे, वो दवाई कुछ दे देगा। पहली बात तो दवाई का चयन ही गलत हो जाता है, और दूसरी बात वहाँ पर संभावना होती है कि आपको नकली दवाई मिल जाए। थोड़ी महंगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अच्छी कंपनी की आप दवाई लें। और जो दूसरा प्रमुख हिस्सा है वो ये है कि आप रसीद जरूर लें, पक्की रसीद लें। आजकल हर दवाई के डिब्बे पे नंबर होता है, उसका उससे पहचान हो सकती है कि वाकई ये कंपनी ने बनाई है, उसकी जांच की जा सकती है, और QR कोड वगैरह से स्कैन करके उसका सारा डिटेल हम पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपायरी डेट देखें, उस पर कहीं उसकी म्याद तो ख़त्म नहीं हो गई है दवाई की। कई बार ऐसा होता है कि दवाई हमारी की म्याद ख़त्म होगी, एक्सपायरी होगी, और फिर हम उसको प्रयोग में लाते हैं, तो वो प्रभावी नहीं होती, इसका ध्यान रखें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बताई कीटों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, और बात वर्तमान समय की करी रहे हैं, तो इस समय क्या जो सूत्रकृमि होते हैं वो भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं?
0: जी हाँ, सूत्रकृमि किसान भाइयों क्या होते हैं, छोटे छोटे सूत्र के आकार के कीड़े होते हैं, नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं, जैसे कि धागा होता है सफ़ेद रंग का, और ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और कई बार ये धान की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ प्रवेश करने के बाद ये अपनी बढ़वार करते हैं, और धान की जड़ों में सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और ये जब गांठें बनती हैं तो पौधा हमारा पोषक तत्वों को नहीं ले पाता, यहाँ तक कि पानी को भी नहीं ले पाता। ये खास करके उन दशाओं में आता है जब हमने धान की सीधी बिजाई की हो, या खेत में पानी का प्रबंधन कम हो, पानी कम लगाया हो हमने। अब क्या होता है, निमेटोड या सूत्रकृमि जब जड़ में गांठें बना

0: लेते हैं तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और कई बार तो उस पर बालियां नहीं आती। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप कार्बाफ्यूरान का तुरंत प्रयोग करें और जांच पहले करें, हर पौधे को उखाड़ के देखें कुछ पौधों को, और अगर उसमें जड़ों में गांठे दिखाई दें तो आप कार्बाफ्यूरान 3 सी जी इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बुरक दें, या फिर आप 250 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे निमेटोड रुकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कीटों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी और सूत्रकृमि के बारे में आपने बताई। अब बात करते हैं रोगों के बारे में,
0: जी
1: तो कौन कौन से रोग आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इस मौसम में, किस तरह से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है?
0: जी देखिए, इस समय पे 4 रोग या 5 रोग प्रमुख होते हैं, जैसे कि एक ब्लास्ट होता है, बदरा रोग होता है, वो आ सकता है। दूसरा शीत ब्लाइट, जिसको हम आवरण झुलसा कहते हैं। तीसरा हमारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणु पत्ती झुलसा हो सकता है, और एक हमारा फाल्स स्मट या आभासी कंड होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर बकानी रोग के आने की भी संभावना रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, किस तरह से हमारे किसान भाई इन रोगों को पहचानें और किस तरह से वो उनका जो उपचार करें?
0: जी बिल्कुल, जैसे रोग, जैसे ब्लास्ट रोग होता है, बदरा रोग कहा जाता है, इसमें क्या होता है बदरा रोग में कि धान के पौधों पर आँख के आकार के धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे फिर बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती को भूरा रंग कर देते हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है। और ये जो रोग है, बदरा रोग है या ब्लास्ट रोग है, ये धान के कई भागों में आता है, कई बार नोड पे आ जाता है, जो गांठें होती हैं धान के तने पे उस पे भी आ जाता है, पत्तों पे भी आ जाता है, यहाँ तक कि धान की जो ग्रीवा होती है जिसको हम गर्दन कहते हैं, धान की बाली का वो भाग जो तने से जुड़ता है उसको गर्दन कहा जाता है, जैसे हमारी गर्दन होती है, इस पे भी कवक का आक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से बाली सड़ सी जाती है वहाँ से और टूट के लटक जाती है। किसान भाइयों, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि शाम को किसान ने देखा कि खेत ठीक है और जब वो सुबह अपने खेत में गए तो उन्होंने देखा कि 20 से 30% तक बालियाँ अपने स्थान से लटक जाती हैं, यानी उस पर कवक का हमला हो चुका है। तो इस तरह के जो नेक ब्लास्ट है या गर्दन तोड़ किसान भाई कहते हैं, इसके इलाज के लिए आपको क्या करना है, एक मिक्सचर आता है जो हमारे कवकनाशी होते हैं, उसमें एजोक्सीस्ट्रोबिन, ध्यान से सुने, एजोक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, ये जो दो दवाइयों का मिश्रण आता है, और इसकी 500 मिलीलीटर या सिर्फ आधा लीटर मात्रा लेनी है और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें तो आपका ये नियंत्रण हो जाता है इसका रोग का, नेक ब्लास्ट का। इसके लिए साथ ही आप बावेस्टीन का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसको कार्बेंडाजिम कहते हैं, या प्रोपेकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का भी प्रयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जीवाणु पत्ती अंगमारी कई बार हमारी जो धान की फसल है उसको काफ़ी नुकसान करता है, इसके लक्षण और कंट्रोल के बारे में आप किसान भाइयों को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, और मेरी अभी कुछ दिनों पहले कुछ किसानों भाइयों से बातचीत भी हुई थी, तो कई जगह मध्य भारत में खास करके इस बार जो जीवाणु पत्ती झुलसा है वो आ रहा है और उसके आने की संभावना है। किसान भाइयों, पहले आपको इसके लक्षण पहचानने के लिए सबसे पहले ये होता है कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, पौधे के जो किनारे होते हैं, पत्तों के जो किनारे होते हैं, नोक से पीलापन शुरू होता है, और जो मार्जिन होते हैं, जो पत्ती के दोनों किनारे होते हैं, इसमें लंबे लंबे लहरदार पीले रंग की जो है पट्टियां सी बन जाती हैं, और फिर ये पट्टियां बड़ी होकर पूरा पत्ता भी पीला हो सकता है, पत्ता हमारा सूख सकता है, धान के कई पत्ते एक साथ सूख जाते हैं, कई बार तो पूरे की पूरी फसल हमारी नष्ट हो सकती है। इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले आप जांच कराएं कृषि विज्ञान केंद्र से या विश्वविद्यालय से कि कहीं ये रोग जीवाणु पत्ती झुलसा तो नहीं है। अगर ये कंफर्म हो जाए तब तुरंत इस रोग का आप इलाज करें। इसके लिए यहाँ से हम ये सुझाव देते हैं कि आप एक मिक्सचर होता है बना बनाया, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, ध्यान से सुने, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 9% होता है, और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये 1% होता है, और इसके अलावा आपके कापर ऑक्सीक्लोराइड, सो ये मिश्रण बना बनाया आता है 3 दवाइयों का, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इस मिश्रण की आप 2 ग्राम मात्रा लें और प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप छिड़क दें। अगर ये रोग आपके खेत में फिर भी दिखाई देता है तो आप इस छिड़काव को दोहराएं, और एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि इस खेत से, जो प्रभावित खेत है, इससे पानी का जो बहाव है वो स्वस्थ खेत में ना जाने दें, क्योंकि ये पानी के माध्यम से दूसरे खेतों में रोग फैलता है। और दूसरी बात यह कि नाइट्रोजन का प्रयोग आपको कम से कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की फसल में इस समय जो आभासी कंद है वो भी अक्सर दिखाई देते हैं, फसल
0: जी
1: में
0: जी
1: आ जाते हैं, तो इसके लक्षण और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?

0: रहता है। जो फाल्स स्मट है किसान भाइयों, इसको हल्दी गांठ रोग भी आप लोग कहते हैं, हिंदी में इसे आभासी कंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दाने निकलते हैं और दाने में दूध बन रहा होता है, तो उस समय दाने के अंदर जो कवक होता है, एक खास प्रकार का कवक होता है, उसके बीजाणु बनने शुरू हो जाते हैं और वो धान के दाने को पीला रंग कहते हैं, इसलिए आप हल्दी गांठ कहते हैं। दाना फूल जाता है, दो ढाई गुना हो जाता है, शुरू में वो दाना पीले रंग का दिखाई देगा या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, फिर ये काले रंग का हो जाता है। इससे धान की गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित होती है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है। हालांकि पैदावार पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप पहचान पाते हैं इस रोग को, तब तक काफ़ी देरी हो चुकी होती है, क्योंकि इसका जो बीजाणु है, इसका जो फाइफा है फंगस का, वो पौधे के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है, सिर्फ आखिर में दिखाई देता है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप कापर ऑक्सी क्लोराइड, ध्यान से सुने, कापर ऑक्सी क्लोराइड, इसकी 1.25 किलोग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर तुरंत छिड़क दें, तो इस रोग का नियंत्रण काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई जिनकी धान की फसल लगी हुई है खेतों में, किन किन बातों का ध्यान दें, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करें ताकि उनको अच्छी पैदावार मिले।
0: निश्चित तौर पर अगर आपने अभी भी नाइट्रोजन की खुराक नहीं दी है, धान आपने पछेती लगाया था, तो जो तीसरी और अंतिम खुराक है धान की, वो ज़रूर उसमें लगा दें। प्रायः ये गाभे पे लगाई जाती है, जब उसमें पेनिकल का बनना, जो बाली का बनना पौधे के अंदर शुरू हो जाता है। उचित जल प्रबंधन करना है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जननिक अवस्था है, इसमें आपको खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी हमेशा रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी फसल की लगातार निगरानी आपको करते रहना है, खेत में आते जाते रहना है, और समस्या ध्यान से आपको देखनी है। अगर कोई समस्या दिखाई दे तो उसका आप वैज्ञानिकों से सलाह लें, और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से सलाह लें, और दुकानदार से आप सलाह ना लें, मेरा ये मानना है, और फिर आप उसका उपचार करें, उसका निदान करें। तो आशा करता हूँ कि अगर इन बातों पर आप ध्यान रखोगे तो धान की अच्छी पैदावार आप ले पाओगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपकी बातों का हमारे जो किसान भाई हैं ज़रूर ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से अपने फसल में समसमय कार्य करेंगे, देखभाल करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे हैं?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: और अब नीलम जी, हमारे किसान बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे मौसम आधारित कृषि सलाह का, ताकि वो उसके अनुसार अपने कृषि कार्य हैं उनको अच्छे से संपन्न कर पाएं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। इसीलिए आप किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचले भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें।
5: और इस समय धान की फसल मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें।
1: और इस मौसम में आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि स्वीट कॉर्न यानी कि माधुरी बिन ऑरेंज और बेबी कॉर्न की बुवाई मेड़ों पर करें।
5: और इस मौसम में टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, तो इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए पौधों की रोपाई मेड़ों पर करें।
1: कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की बेलों को गलने से बचाया जा सके।
5: और कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
1: तो किसान भाइयों, ये तो थी मौसम आधारित कृषि सलाह। और अब श्रोताओं, आपको बताते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी का

0: फल सब्जी का भाव। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करें सब्जी की, तो आलू बिका 12 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज बिकी 25 रुपये प्रति किलोग्राम, टमाटर बिका 25 रुपये प्रति किलोग्राम, बैंगन बिका 17 रुपये प्रति किलोग्राम और खीरा बिका 22 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर हम भिंडी की बात करें तो वो बिकी 40 रुपये प्रति किलोग्राम, मटर बिकी 75 रुपये प्रति किलोग्राम और तोरई बिकी 19 रुपये प्रति किलोग्राम।
1: और अब बात करते हैं फलों के भाव की। तो सेब बिका 90 रुपये प्रति किलोग्राम, केला बिका 20 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद का भाव रहा 45 रुपये प्रति किलोग्राम और मौसमी बिकी 29 रुपये प्रति किलोग्राम, पपीता बिका 23 रुपये प्रति किलोग्राम और तरबूज बिका 15 रुपये प्रति किलोग्राम।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना फल सब्जी का भाव। और देखिए, अब नीलम जी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आपको आज का किसान वाणी कार्यक्रम कैसा लगा। इस बारे में आप कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गज़लों पर केंद्रित ये कार्यक्रम।

बताओ, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गज़ल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और आखिरी गज़ल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर केंद्रित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच नीट पेपर लीक के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला लिया और दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी करते हुए बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक

0: मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी दी गई। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अंतर्गत 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार इसे पूरी तरह से इंस्टॉल करके देगी और उपभोक्ताओं से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
1: सोलर रूफ सिस्टम जो है पूरी तरीके से सरकार द्वारा बिना किसी राशि लिए लगाया जाएगा। ये ऐतिहासिक होगा, जिसके लिए हमने टारगेट लिया है कि 2,30,000 हाउस होल्ड पर ये रूफ टॉप सोलर प्लांट पूरी तरीके से मुफ्त उसमें लगाया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली पर मिलने वाले मौजूदा सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे परिवारों को सब्सिडी के फायदे और सोलर पावर से होने वाली बचत दोनों का लाभ मिल सकेगा।
1: हमारा टारगेट हाई है, हमने दिल्ली की जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी पे ऑलरेडी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम जारी है और वेंडर जो है इसमें पहले 5 सालों तक फ्री O&M देगा। हमारा फोकस जो है लॉन्ग टर्म इफेक्टिव फंक्शनिंग पे है, रेजिडेंशियल सोलर नेट मीटरिंग प्रोसेस से। जो पहले प्रोसेस होता था 75 दिन का, उसको भी हमने घटा के 25 दिन पे ले आए हैं, ताकि इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट हम कर सकें।
0: इस अवसर पर दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुफ्त बिजली का इस्तेमाल राजनीतिक डर फैलाने के लिए किया, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और परिवारों के सशक्तिकरण का माध्यम बना रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के यशोभूमि में भारत इलेक्ट्रिसिटी पावर जेन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी वीक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलापन तथा विकसित भारत के विजन पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा परिसर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को इस ऐतिहासिक स्थल के समृद्ध इतिहास, संवैधानिक विरासत और स्थापत्य धरोहर को जानने समझने का अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय के युवा संपर्क कार्यक्रम के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए जानकारी दी कि परिसर को आम जनता के लिए शैक्षिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित संग्रहालय में दुर्लभ ऐतिहासिक कलाकृतियों, अभिलेखीय दस्तावेजों और आजादी से पूर्व तथा आजादी के बाद विधानसभा के विकास क्रम को दर्शाने वाली संवादात्मक प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्ष 1912 में निर्मित इस ऐतिहासिक स्थल के कुछ हिस्सों को सुव्यवस्थित और विषय वस्तु आधारित सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित कर सचिवालय का उद्देश्य आगंतुकों को राष्ट्र के विधायी अतीत के महत्वपूर्ण और आधारभूत पड़ावों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे जाँच न करने का आदेश दिया है।
3: न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम के दायर आवेदनों में उल्लेखित छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। न्यायालय के अनुसार ये आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शन की घटनाओं से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज न करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 3 महीने के भीतर एक नीति बनाई जाएगी। पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी का बयान भी दर्ज किया, जिसमें पार्टी ने इस महीने की 5 तारीख को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की थी। प्रादेशिक समाचार

0: के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्र सरकार ने राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1,000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उचित मूल्य वाली दुकानों के जरिए ग्राहकों को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगा। इसके अलावा सभी 13 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों और वैन के माध्यम से भी प्याज बेचा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि राजधानी में किसी भी हाल में प्याज की कमी ना हो और लोगों को जरूरी खाने पीने की चीजें सही कीमत पर मिलती रहें। इस बीच देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1,000 मीट्रिक टन प्याज प्रमुख बाजारों में भेजा जा रहा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों के से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली नगर निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी में हर दिन भारी मात्रा में कचरा निकलता है, इसलिए नए 4 बिन सिस्टम यानी 4 डिब्बे वाली व्यवस्था के जरिए कचरे को स्रोत पर ही अलग करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कचरे को डंपिंग साइट पर फेंकने की सोच को बदलकर कचरे से संपदा बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के मध्य और बाहरी उत्तर क्षेत्र की टीमों ने अपने अपने उपायुक्त की अगुवाई में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने और पहचाने गए हॉटस्पॉट पर आगे की कार्रवाई के लिए मिलकर एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली नगर निगम ने बताया कि इस दौरान मिलकर प्लानिंग करने, असरदार तरीके से काम लागू करने और साफ हवा तथा सेहतमंद शहरी माहौल के लिए लगातार कोशिशें करने पर चर्चा की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल नई दिल्ली में प्रवर्तन कार्यबल ETF की 138वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियमों के पालन की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि 16 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रमुख क्षेत्रों में 121 निरीक्षण किए। आयोग ने निर्धारित मानदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन को मजबूत करने, समय पर जांच करने और काम करने वाली एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर बल दिया। आयोग ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयों, निर्माण तथा विकास कार्यों, डीजल जनरेटर सेट और सड़क निर्माण कार्यों सहित सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में त्वरित परिवर्तन कार्रवाई, सख्त अनुपालन निगरानी और निरंतर निरीक्षण पर विशेष बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यातायात विभाग से जारी निर्देशों के अंतर्गत यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक और संचालन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैक ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी है। इसके अलावा सभी बसों में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट का अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। साथ ही बस ड्राइवर और स्टाफ के लिए शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी चलाना सख्त मना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्तों और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर तथा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षकों को ग्रेटर नोएडा से बस में सवार हुई एक लड़की के साथ चालक और कंडक्टर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नोटिस जारी किया है। ये घटना पिछले महीने की 4 तारीख को हुई थी। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल हो। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज बताया कि डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेज के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने पिछले साल 2200 से ज्यादा कॉर्निया दान किए, जिनमें से लगभग 82% कॉर्निया का इस्तेमाल किया गया। 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर आरपी सेंटर की प्रमुख डॉक्टर राधिका टंडन ने कहा कि सेंटर का इस्तेमाल दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।
0: ऑलमोस्ट 1700 पेशेंट्स को कॉर्निया ट्रांसप्लांट मिला है। ये देश का सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज है अबाउट 50% यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम रेफरल सेंटर है और हम आधुनिक तरीके से ऑपरेशन करते हैं, प्लस हमारे पास फुल रेंज ऑफ पेशेंट्स होते हैं, उनके बीमारी के अनुसार ट्रांसप्लांट होता है।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में कल आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा, जिनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंबा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। यातायात पुलिस ने यात्रियों, विशेषकर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अस्पताल जाने वालों को यात्रा से पहले योजना बनाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। साथ ही वाहन चालकों से यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने और संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। यात्री संबंधित यातायात अधिक जानकारी दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच नीट पेपर लीक के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया और दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूँ। रात्रि के 8 बजे हैं स्टूडियो की घड़ी के अकॉर्डिंग और रहेंगे आपके साथ लगभग लगभग पूरे 45 मिनट तक। फिलहाल हमें कार्यक्रम की शुरुआत करनी होगी एक खूबसूरत गीत के साथ और फिर लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म खामोशियाँ से ही अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा रश्मि सिंह ने और संगीत दिया जीत गांगुली ने। आप जुड़े हुए कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। रोज़मर्रा की भाग दौड़ ज़िंदगी में, जहाँ हर तरफ शोर है, ट्रैफिक की आवाज़, फ़ोन की घंटियाँ और काम की ढेर सारी जिम्मेदारियाँ, आज हम एक अलग सफ़र पर निकलने वाले हैं दोस्तों। एक ऐसा सफ़र जहाँ पर शब्द कम है और एहसास ज़्यादा है। आज की हमारी महफिल सजी है जी आवाज़ के नाम, जो सुनाई नहीं देती है लेकिन सबसे ज़्यादा समझ में आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खामोशी की। और किसी ने खूब ही

तो लगभग हम आधे घंटे से ज़्यादा के सफ़र पर निकलेंगे और खामोशी के सन्नाटे में कुछ गीतों का आनंद लेंगे और सुकून से बैठकर हम खामोश भी रहेंगे और गीतों का मज़ा भी उठाएंगे।

0: गुनगुनाने लगी। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खामोशी भी गुनगुनाने लगती है? जी हाँ, वो भी बोलने लगती है।
1: दिल का ये कारवा यूं ही था रवा दवा।
0: आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके जहन में खामोशी का नाम सुनते ही एक खामोशी वो भी होती है जो दो पुराने दोस्तों के बीच में होती है, जहाँ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भाई हम इशारों से ही समझ जाते हैं सारी बातें। एक खामोशी वो होती है जब दो प्रेमी आपस में बात करते हैं, वही इशारों की बातें। और एक खामोशी वो भी होती है हमें जो किसी पहाड़ को देखकर फील होती है, या फिर किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर फील होती है, जहाँ हम खुद से मिलते हैं। एक वो भी खामोशी होती है, और कहा जाए कि वो भी एक बातचीत भी हो सकती है। तो खामोशी की जो है ना, वो परिभाषा बहुत अलग अलग है। और किसी ने ठीक ही लिखा है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं।

जी हाँ दोस्तों, रूप कुमार राठौर की आवाज़ में अभी आपने की सुना और खामोशी की बात चल रही है। भाई खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप और मैं चुप हो जाएं, जी नहीं, खामोशी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपस में बात ज़रूर करती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हम एकदम से शांत बैठ जाते हैं तो हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। हमें धड़कन सुनाई देने के साथ साथ हमारी सांसों की आवाज़ हमारे कानों तक जाती है। यही खामोशी की सबसे बड़ी ताकत है कि कोई भी शोर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज़ जो आपके कानों तक जाती है वो आती है। आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ हमारे हाथ में हर वक्त फ़ोन रहता है, हर वक्त हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार घूमते रहते हैं, लेकिन अपने लिए एक साइलेंट टाइम आप ज़रूर निकालिए। आंखें बंद कीजिए और कोई आपके आसपास स्क्रीन ना हो, कोई भी आपके हाथ में फ़ोन गैजेट ना हो, खामोशी को सुनिए, देखिए।

जी हाँ, बेखुदी को बेखुदी से बात करने दो। आई एम करीम और चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने गीत को सुना, बेहद बेहद खूबसूरत। और इस गीत को लिखा निदा फाजली ने, संगीत दिया MM करीम ने ही। और फिल्म की बात करें तो इस रात की सुबह नहीं आएगी, जी हाँ ये रही फिल्म। और खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, बल्कि ये एहसास की है गहराइयों का। जब अगली बार आपको किसी बात का जवाब न सूझे ना, जब आपको कोई बात समझ में ना आए, तो मुस्कुराइए और खामोश हो जाइए। कभी-कभी बहुत अच्छा सा जवाब मिल जाता है।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप गीत सुन रहे हैं फिल्म बंटी और बबली से, और कार्यक्रम है आपका अपना गीत मालिका। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे थे खामोशियों की। तो दोस्तों, खामोशी जो है ना, अगर कहें कि हमारी बेबसी नहीं होती है, कभी कभी हम चुप हो जाते हैं तो हम अगला इंसान ये सोचता है कि शायद कोई बेबसी है या लाचारी है तो ये चुप है। लेकिन कभी कभी ये गहरे एहसासों, सुकून और आत्मसम्मान का प्रतीक भी होती है खामोशी। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए इंसान, गुमनाम समंदर के में ही अक्सर तूफान लाया करते हैं। तो अगली बार अगर आपने आसपास अगर किसी व्यक्ति को आप खामोश देखें तो भाई समझ जाइए, वो समुद्र है, ये वो समंदर है जो शांत है अभी और तूफान कभी भी आ सकता है।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। समय बता दें आपको, रात्रि के 8:33 हो चुके हैं, और भाई खामोशी के साथ, कुछ शब्दों के साथ हम गीतों का आनंद ले रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम को आप पसंद भी कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजना ना भूलें। हम दूसरों की बात तो जनाब सुन लेते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारी बात सुने, लेकिन खुद के अंदर की आवाज़ सुनने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रहते। अगर कम शब्दों में कहूँ कि हमें डर लगता है अपनी अंदरूनी आवाज़ से, लेकिन खामोशी वो आईना होता है जिसमें इंसान को अपना असली चेहरा दिखाई देता है। आप दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट निकालिए, शांत बैठिए, और दिमाग के जो शोर है दिमाग के आसपास, उसे बिल्कुल भूल जाइए, और देखिए अपने आप से बात करिए, उस खामोशी को महसूस कीजिए। और खामोशी हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर मुस्कुरा देना ही एक खूबसूरत जवाब होता है।

जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना कि भाई हमने खामोशी से आपको अपने दिल में बसाया। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ। और समय जो है वो इशारा कर रहा है कि भाई जाने का वक्त हो गया है कार्यक्रम से, लेकिन आपसे मिलूंगी 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। और घड़ी की सुइयाँ फ़िलहाल मुझे ये इशारा कर रही हैं कि भाई चेतना, अब आपको जाना होगा इस कार्यक्रम से। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे यही कहूँगी कि रात को सोने से पहले कम से कम 2 मिनट जो है ना, वो कमरे की लाइट्स को ऑफ कर कर, अपने फ़ोन को दूर रख कर, ज़रा खामोशी को महसूस कीजिएगा। यही दुआ करूँगी कि ज़िंदगी में आपके प्यार का शोर हो और दिल में सुकून भरी खामोशी हो। खैर, मेरी बातें तो कभी समाप्त नहीं होंगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। मिलूंगी आपसे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PM धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु

0: जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
3: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
5: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से

0: दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
2: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
3: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
2: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा

0: मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews progress of PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, stresses on outcome-based monitoring and timely delivery of benefits to farmers. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 march following assurances from centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Simi George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward, highlighting that

0: rescuers in these operations. The Ministry of External Affairs of India has said 163 internationals have been rescued so far. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. Heavy rainfall is expected over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi at isolated places. In men's cricket, India's 15-member squad for the upcoming three-match T20 international series against Afghanistan has been announced. Shreyas Iyer will lead the Indian side with Tilak Verma as vice-captain. A report.
1: Jasprit Bumrah has returned to the squad subject to fitness clearance, with Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar and Harshit Rana also featuring in the squad. The series will be played at New Delhi's Arun Jaitley Stadium on the 13th, 15th and 17th of this month, with Afghanistan designated as the host. India's squad combines experienced campaigners and young talent like Vaibhav Suryavanshi, Abhishek Sharma, Sanju Samson and Ishan Kishan, with Shreyas Iyer as captain and Tilak Verma as vice-captain. Besides Bumrah and Rana, the bowling attack includes Arshdeep Singh, Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi. With Swati Rakheja, Reshma Tiwari, News Desk.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi calls on SEO member countries to unite against entire terror ecosystem. SEO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from Centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East MP and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for three-match T20 international series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम के खिलाफ मुत्तहद होने पर जोर दिया है। SCO समिट नताइज पर मबनी 13 माहदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आब हवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फ़वाद की बरवक्त फरहमी पर ज़ोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIR को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज़ की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़, मशरक़ी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर कल शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। और मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अलाक़वामी मैचों की सीरीज़ के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज़ जमहूरिया की राजधानी बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ममलकत की काउंसिल की 26वीं मीटिंग में शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सभी रुकन ममालिक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम करने, लोगों को भर्ती करने, शिदत पसंदी और महफूज पनाहगाहों के पूरे इको निज़ाम को नीस्त नाबूद करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है। जना मोदी ने दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी लड़ाइयों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग और महाजाराइयाँ किसी मसले का हल नहीं है और सभी मामलों को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। जना मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरस शंघाई ताउन तंजीम तहजीबी डायलॉग की तजवीज़ पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। भारत की तरजीहात को SCO बिश्केक एलामिये में नुमाया तौर पर शामिल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: एलामिये में बातचीत की खातिर एक कुर्रा अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल के नज़रिए का इरादा किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। उन्होंने सरहद

0: पर दहशत गर्दों की नकल व हरकत समेत दहशत गर्दी के खिलाफ जामे इकदाम पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस साल भारत में होने वाले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का खैर मकदम किया और SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की भारत की पहल को सराहा। ऐलामिये में अंग्रेजी को SCO की सरकारी और कामकाज की जबान के तौर पर शामिल किए जाने की भी बात कही गई है। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद आज दोपहर वतन वापस होने के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि SCO समिट के मौके पर मुख्तलिफ मीटिंगें भारत के लिए सूदमंद साबित होंगी। बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं समिट 13 अहम नतायज के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इन नतायज में इंसदाद दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात, तवानाई, कुदरती आफत के बंदोबस्त और डिजिटल इश्तराक का अहाता किया गया है। SCO के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसमें 4 मफाहमत नामों और 20 से ज़्यादा फैसलों को मंजूरी भी दी गई है। ये इकदाम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुनज़म जराइम और एक दूसरे के ममालिक में दीगर खतरात से निमटने के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे। मुनशियात की गैरकानूनी तिजारत की रोकथाम के सिलसिले में भी मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। आबोहवा की तब्दीली और तवानाई के सिलसिले में SCO ममालिक ने तवानाई की बचत और मौसर इस्तेमाल के सिलसिले में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। समिट में हंगामी सूरत हाल से मुतासर ममालिक की मदद के लिए एक बयान भी मंजूर किया गया। डिजिटल शोबे में रुकन ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इश्तराक को वसत देने पर इत्तफाक किया। वजारत खारजा ने कहा कि यह नतायज इलाकाई सलामती, तरक्की और कनेक्टिविटी के मामले पर अपनी पोजिशन पर पेशरफ के लिए भारत को एक कलीदी प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। वजारत खारजा ने कहा कि समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने आइंदा 25 बरसों के लिए एक नक्शे राह पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में जल शक्ति वजारत की महकमा जाती समिट के अख्तामी इजलास से खिताब करेंगे। इस दो रोज़ा महकमा जाती समिट का आगाज आज हुआ है और ये वजीर आजम के महकमा जाती समिट के नज़रिए की सीरीज़ की पहली समिट है, जिसका मकसद टीम इंडिया के जज्बे को मुस्तहकम करना और तआवुन पर मबनी विफाक को मजबूत करना है। ज़िरात और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY की पेशरफ का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान 100 नामजद ज़िलों में इस स्कीम के निफाज में तेज़ी लाने, इसे दूसरी स्कीमों के साथ मरबूत करने और किसानों के लिए ज़िलावार कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि स्कीम के 6 मकासद पर मबनी 100 ज़िलों की कारकर्दगी का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया है, जो कि 16.31 पॉइंट्स की बेहतरी है। वजारत ने बताया कि यह स्कीम 11 वजारतों और महकमों की 36 मरकजी स्कीमों और रियासती स्कीमों और प्राइवेट शोबे की शमूलियत के साथ मरबूत करते हुए नाफिज की जा रही है। सालाना अहदाफ की पेशरफ्त की निगरानी के लिए 36 स्कीमों के 74 नतायज पर मबनी अशारियों और 47 महसल पर मबनी अशारियों पर मुश्तमिल कुल 121 इशारियों की शनाख्त की गई है। मरकजी काबीना ने गुज़श्ता साल धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी थी और 11 अक्टूबर 2025 को इसका आगाज किया था। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: हुकूमत ने चीनी के डीलरों के लिए चीनी का जखीरा करने की हद 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। इस हद का इतलाक इस साल 15 सितंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगा। चीनी जखीरा करने की हद में की गई नई कटौती का मकसद जखीरांदोजी और कयास आराइयों पर मबनी तिजारत की रोकथाम, सारिफिन के मफादात का तहफ़ और चीनी की वाफर दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेकाम को यकीनी बनाना है। फिलहाल मुल्क भर में चीनी के डीलरों को 4000 क्विंटल तक चीनी जखीरा करने की इजाज़त है, जो इस साल 1 अगस्त से नाफिजुल अमल है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में प्याज की दस्तियाबी वाफर मकदार में है और हुकूमत ने कांदा एक्सप्रेस और सड़क ट्रांसपोर्ट के जरिए बफर स्टॉक की तयशुदा और मुकर्रर करदा मकदार की रवानगी का आगाज़ किया है, ताकि प्याज की कीमतों के सीज़न के दबाव को मुंजबित किया जा सके। खुराक, सारिफिन के अमूर और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने कहा कि 19 रियासतों में वाफर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 30 ट्रक रवाना करते हुए खुर्दा इकदामात को खातिर ख्वाह वसत दी गई है। वजारत ने बताया कि इस पहल के हिस्से के तौर पर नासिक से 2 कांदा एक्सप्रेस ट्रेनों की खेप रवाना की गई है। वजारत ने मजीद कहा कि पहले मरहले के तहत 450 میٹرک ٹن پیاز دلی

0: पहुंच गई है और इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर और पूरे दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में तकसीम की गई है। वजारत ने मजीद बताया कि बाजार की मौजूदा सूरत हाल और कीमतों के रुझान को देखते हुए तकरीबन 1,000 मेट्रिक टन प्याज सड़क के रास्ते अहम मराकज़ तक पहुँचाई जा रही है। वजारत ने इत्तला दी कि बरवक्त अदायगियों को यकीनी बनाते हुए 210 करोड़ रुपए सीधे तौर पर 3,400 किसानों को अदा किए गए। हुकूमत प्याज के किसानों की मदद के तई अहद बस्ता है और सारिफीन के लिए भी प्याज की खातिर खा और किफ़ायती दस्तियाबी को यकीनी बना रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 16 दिफाई शोबे की सरकारी कंपनियों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया। अपने खिताब में जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि साल 2025-26 में भारत की दिफाई साजो सामान की तैयारी तकरीबन 1.8 लाख करोड़ रुपए रही। उन्होंने इस उसूलियाबी को आत्मनिर्भर दिफाई सनती बुनियाद कायम करने की जानिब मुल्क की अहम पेशरफ करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिफाई शोबे की सरकारी कंपनियों की पेशरफ महज इकतसादी सनती ज़रूरत नहीं है बल्कि यह कौमी सलामती के लिहाज से भी इंतहाई अहम है। मरकजी हुकूमत ने ईंधन के बरामदाती महसूल से मुतालिक अपने 15 रोज़ा ताज़ा जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ों के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी पर नज़रसानी की है। नज़रसानीशुदा कीमतों के मुताबिक पेट्रोल पर बरामदाती महसूल में 1.5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया जबकि डीजल पर यह महसूल 25 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ा दिया गया। हवाई जहाज़ों के ईंधन पर महसूल में 19 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफाई की गई नज़रसानीशुदा शरहें आज से लागू हो जाएंगी। ताहम घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत ने आज सीजेपी की जानिब से 5 सितंबर को होने वाला अपना एहतजाज न करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने यकीन दहानी कराई कि एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज सभी मामला वापस लिए जाएंगे और मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों से भी सलाह व मशवरा किया है और अब इस बात की यकीन दहानी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की अवलिन तरजीह नौजवानों की फलाह व बहबूद और तरक्की है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: इंसानी हकूक़ से मुतालिक कौमी कमीशन NHRC ने उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जानिब से एक लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती के मामले में दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी किए हैं जिसमें वो ग्रेटर नोएडा से सवार हुई थी। ये वाक़ा गुज़िश्ता महीने की 4 तारीख को पेश आया था। कमीशन ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले पर उनसे तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जिसमें तहकीक़ात और अगर मुतासिरा को कोई मुआवजा दिया गया हो तो उसकी तफसील भी शामिल होगी। कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट के बाद आज खुद नोटिस लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई तक नीट पेपर लीक मामले से मुतालिक तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को आज रद्द करने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी कि इन मामलों को आगे न बढ़ाया जाए या इनके सिलसिले में तहकीकात न की जाए और इन्हें हर तरह से रद्द समझा जाए। ताहम अदालत आलिया ने दिल्ली पुलिस को उन 2,873 लोगों के खिलाफ एक FIR को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है जो जंतर मंतर एहतजाज में मौजूद थे और जिनका संगीन मुजरमाना रिकॉर्ड है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड किया जो मरकज की जानिब से पेश हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1,000 से तजावुज़ कर गई है। वहीं हिफाजती फोर्सेस की जानिब से मुल्क के 8 मुतासिरा ज़िलों से मजीद लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है।

0: एजिनों की नदियों में सतह आब के बढ़ने की वजह से सैलाब के ताज़ा अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव कारकुनों को फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली 3 T20 बैन अवी मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जबकि तिलक वर्मा नायब कप्तान होंगे। इस सीरीज के 3 मैच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की वजह से जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक रोज़ा बैन अवी मैचों की सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेंजेन में जारी चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुडा बाहर हो गई हैं। आलमी नंबर 25 हुडा को खवातीन के सिंगल्स के शुरुआती राउंड में आलमी नंबर 12 जुनूबी कोरिया की किम ग्वांग ने सीधे सेटों में 10-12 और 18-12 से शिकस्त दी। अब सारी तवज्जो मुकाबले में रह गए भारतीय खिलाड़ियों पर मरकूज हो गई है। कई सरकारदा बैडमिंटन खिलाड़ी कल अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 माहिदों के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धान्य कृषि योजना की पेशरफ का जायज़ा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फरहमी पर जोर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। इसके साथ ही आकाश मनी टॉक
1: This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on India's strong GDP growth amidst global challenges. The participants are Dr. S.P. Sharma, Economic Analyst, and Rajesh Lake, Anchor.
2: Good evening and welcome to Money Talk. Today's topic is extremely timely. India's strong GDP growth amidst global challenges. While major economies grapple with slowing demand, geopolitical tensions and volatile commodity prices, India continues to stand out as the fastest growing large economy in the world. The Prime Minister said this on India's strong GDP growth amidst global challenges.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% growth, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है।
2: टू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट्स ड्राइविंग दिस रेजिलियंस, वी हैव विद अस डॉक्टर SP शर्मा, इकोनॉमिक एनालिस्ट। डॉक्टर शर्मा, अ वार्म वेलकम टू मनी टॉक।
4: थैंक यू सर।
2: India's real GDP grew at 7.7% in FY25-26, and recent Q1 FY27 data shows 7.8% growth. So, Dr. Sharma, what are the key drivers behind this outperformance despite global headwinds?
4: I would say the key driver is our resilience, actually, that we have built during the last many years. So this is not an overnight effect. This is the effect of the efforts of people, trade and industry, the government reforms, handholding provided by the government to the various stakeholders in the times of crisis, during the COVID period and thereafter, recently the West Asia crisis. So all these developments have built us strong resilience of the Indian economy that is now very much

0: บ้านท่าน
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: आज दुनिया की अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक तेजी से सेमीकंडक्टर और चिप्स पर निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन और कारों से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर जरूर मौजूद है। और इसी दिशा में भारत सरकार ने देश में ही चिप निर्माण और पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया है, जिसके लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के बाजार में करीब 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य दरअसल केवल भारत में चिप फैक्ट्रियां स्थापित करना ही नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर वेफर निर्माण, चिप उत्पादन, पैकेजिंग, अनुसंधान और प्रतिभा विकास तक एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जितेन कुमार जैन साहब, जो आईटी एक्सपर्ट हैं। जितेन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के लिए कि कैसे हम इसे समझें कि सेमीकंडक्टर या चिप दरअसल होता क्या है और आज इसका महत्व इतना क्यों बढ़ गया है।
3: देखिए, वैसे तो सेमीकंडक्टर मशीनों के अंदर बिजली के बहाव को कंट्रोल करती है लॉजिकल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, पर अगर एक आम आदमी को बहुत सरल भाषा में समझाना हो तो सेमीकंडक्टर एक वो छोटी सी चिप है, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो या कार हो या फोन हो, जो उस पूरे उपकरण का पूरे दिमाग की तरह काम करती है, वहीं से उसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी किसी तरह का फंक्शंस है, लॉजिक्स है, सर्किट है, सब उसके अंदर वो चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर को आप एक छोटी सी चिप समझ लीजिए जो किसी भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक तरह से अंदर का दिमाग और दिल है।
2: जी बिल्कुल, बहुत सरल भाषा में आपने समझाया, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अगर हम सेमीकंडक्टर निकाल दें तो वो शायद काम न करें, क्योंकि अब चीजें मैनुअल बहुत कम बच गई हैं।
3: हाँ, अब साधारण भाषा के लिए जैसे आप कहें तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोनोमस व्हीकल हैं, वो अपने आप रेडार के थ्रू सड़क पे देखते हैं, गाड़ी को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ जाना है, कब टर्न लेना है, कब ब्रेक लगाना है। वो जो सारी लॉजिकल प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो थिंकिंग हो रही है, जो कैलकुलेशंस चल रही हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा एक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है या मल्टीपल सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। ये छोटे से इलेक्ट्रिकल चिप्स हैं, और जिसको भारत के अंदर भी अब इसका उत्पादन हो, इसके ऊपर हमारे विकास की क्षमता हो, उसको लेकर भारत सरकार नई नीतियां बना रही है।
2: जी, एक पूरा इकोसिस्टम दरअसल भारत सरकार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, और सरकार ने सेमीकॉन 2.0 के लिए लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है। कितना बड़ा फैसला है ये और कितना महत्वपूर्ण है?
3: खाली इसको हमें अर्थव्यवस्था या मतलब जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भरता के एंगल से नहीं देखना चाहिए, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जड़ा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि है आज के जमाने में सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण हो गया। अगर आप देखें तो शायद आज दुनिया में तेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन से लेकर आपका कार, आपके सारे बैंकिंग इकोसिस्टम, आपके यूपीआई, आपके सैटेलाइट्स, आपके डिफेंस सिस्टम्स, आपके डेटा सेंटर, आपके अपने घर के लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, टीवी, फ्रिज, सबके पीछे कोई ना कोई सेमीकंडक्टर है। और अभी पहले कुछ सालों तक पहले ही हम 90% चीजें सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे सेमीकॉन 2.0 में, जैसे 1 के अंदर तो हम यहाँ पे खाली असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे, सरकार अभी चाह रही है कि हमें पूरी की पूरी इस सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को भारत के अंदर निर्मित करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि हम यहाँ खाली असेंबलिंग नहीं करें, हम यहाँ पे डिजाइनिंग भी करें, फैब भी करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें, और पूरे विश्व में भी आगे कई देशों के अंदर एक विश्वस्त सप्लायर के तौर पर अपने आप को स्थापित करें।
2: बिल्कुल, और आपने सही कहा कि सेमीकॉन 1.0 के बाद इसीलिए सेमीकॉन 2.0 की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ये केवल पिछली योजना का विस्तार ही नहीं बल्कि इसमें भारत की रणनीति का नया और व्यापक दृष्टिकोण भी शामिल है और हम पूरी तरीके से इस पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मंत्री जी, अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में लगभग 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ये लक्ष्य कितना महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए किन किन प्रमुख चुनौतियों को पार करना होगा?
3: महत्वाकांक्षी तो है और पर जरूरी भी है। जरूरी इसलिए कि जो आपने आपका पिछला भी सवाल था कि इसमें मात्र सप्लाई चेन से बड़े मुद्दे नहीं, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी जुड़ी है, क्योंकि ज्यादातर डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर सिस्टम्स के अंदर जो नए एआई चिप्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, आप सैटेलाइट्स ले लीजिए, छोटे छोटे रडार, सब जगह जो सेमीकंडक्टर हैं बाहर से लेकर आ रहे थे ज्यादातर। तो कभी युद्ध की स्थिति में या किसी देशों से संबंध खराब होने की स्थिति में हमारे ऐसी मतलब समस्याएं उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं है, उसके कारण ये सेक्टर प्रभावित ना हो, इसलिए हम उस राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को भारत के अंदर ही हम ये चाह रहे कि यहीं पर निर्माण हो, ताकि हमें कभी इस तरह की चुनौती का सामना ना करना पड़े। और चूंकि अब हम निर्माण करना ही चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर 1.0 पहले भी एक बिजनेस के एंगल से अच्छा मिशन था, स्किल्ड मैनपावर हमारे पास है, पॉलिसीज हमारी अच्छी हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम ये चाह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट होने के अलावा हम एक तरह से एक एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टिंग नेशन भी बने, तो ये एक तरह से पूरा का पूरा ध्याय है।
2: बिल्कुल, आपने कहा जितेन जी कि सेमीकॉन 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये केवल चिप फैक्ट्री लगाने तक और असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की बात इसमें कही गई है। एक बार ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, इसको जरा एक बार और समझाएं आम लोगों की समझ के लिए।
3: देखिए, इसमें आपको खाली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाली फैब की बात नहीं, आपको जो उसके लिए जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो भी हम भारत के अंदर बनाना चाह रहे हैं, जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए उसका निर्माण भी हम भारत में करना चाह रहे हैं, इससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और ऑब्वियसली हमारे इनहाउस टैलेंट भी होगा। आपको चिप डिजाइनर भी चाहिए, है ना, उसके बाद आपको डिमांड भी चाहिए, पहले तो इंटरनल डिमांड आपके यहाँ क्रिएट हो कि आप इंपोर्ट ना करके यहीं से लें। तो इसमें अगर आप देखेंगे, पूरी की पूरी एक तरह से हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करके डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें आपको देखिए, लैंड एक्विजिशन चाहिए, पानी चाहिए, डेटा मतलब अल्ट्रा क्लीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज चाहिए और स्किल मैनपावर के अलावा, फिर सबसे बड़ी बात है, सब हो भी जाए तो इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? उसके लिए फिर जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, या तो वो आप यहाँ बनाएं या फिर कोई दूसरा देश आपको देने को तैयार हो, और फिर बहुत ही एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन्स भी चाहिए। तो इसके लिए ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये मेरे ख्याल से अगले 10 साल का विजन है, और इसमें कुछ चीजों का निर्माण यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। देखिए, हम असेंबलिंग आज ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बनाऊँ, आज हिंदुस्तान में आईफोन बनता है, उसका मतलब ये नहीं कि आईफोन हमारे यहाँ डिजाइन हुआ या हमने उसका वो चिप बनाई या हमने उसका किया, हम लाते हैं यहाँ पे उसको, हमारे पास हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग फैसिलिटीज, हम लोग कर रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं उसका जो चिप का डिजाइन है, जो उसका पेटेंट है आईपी, वो भी भारत के अंदर ही उसी का निर्माण, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें जो लाई गई हैं, स्पेशलाइज जो प्लांट में लगी है, उनका निर्माण भी भारत के अंदर हो। तो पूरा का पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उसका राइट है, वो पूरा का पूरा भारत के अंदर उसका निर्माण हो, यहीं पे हम इसको पूरा का पूरा बनाएं। इसलिए जब आप ये बात कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर 1.0 में मात्र आप एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का, 2.0 के अंदर आप चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका सारा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट, टैलेंट की स्किलिंग, डिजाइनिंग, सब आप भारत के अंदर करना चाह रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, सरकार ने सिलिकॉन फैब के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड और डिस्प्ले फैब जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया है। इसे जरा सरल भाषा में बताएं आप कि अलग अलग प्रकार के ये सेमीकंडक्टर क्या हैं और किन क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी होंगे।
3: डिस्प्ले फैब का जैसे आपने उदाहरण दिया, अब आज जितने डिस्प्ले हैं टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आपकी कार की स्क्रीन के अंदर, ये सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा है। और अभी ये पैनल क्या है कि ज्यादातर बाहर से आ रहे थे, कुछ एक पैनल है जो वो बाहर की कंपनियां इंडिया में अपने उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं, और उसमें फिर एक और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ी टीवी कंपनियों के जो ओरिजिनल डिस्प्ले बोर्ड है, पैनल है, पीछे जो फैब है, वो हम ही नोएडा में बनाकर, बैंगलोर में बनाकर हम बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहां उनकी असेंबलिंग होती है, लेबलिंग होती है, फिर वो रीराउट होकर पूरा का पूरा एक फिनिश टीवी इंडिया में आता है। तो अब ये हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर ही जो सेक्टर है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, उसके अंदर एक बेहतरीन निवेश हो, ताकि जो डिस्प्ले फैब के अंदर जो एक भारत एक तरह से मतलब विश्व के पहले या दूसरे स्थान के अंदर आ जाए। बिकॉज ये कैसा है कि हम ऑलरेडी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कई कंपनियां हमारी काम कर रही हैं, और ये कंपनियां बड़े जो ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, जो वेल नोन रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड है, स्पेशली कोरियन और जापानीज ब्रांड्स, उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे फिर वो इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी अपने ब्रांड के हिसाब से, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी और हमारे यहाँ का भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का और स्किल जॉब्स का वो यहीं पे डेवलप हो जाएगा। और यही चीजें फिर आपको देखिए डिफेंस और ऑटोमोटिव एयरोस्पेस में भी काम आने वाली है, जो आपके 5th जनरेशन एमका वगैरह के डिस्प्ले हैं, जो दूसरे डिस्प्ले हैं, वो सब यहीं पे पूरे के पूरे बन जाएंगे।
2: जी, कब तक उम्मीद है कि भारत में जो पहली फैब होगी वो शुरू हो सकती है?
3: नहीं, फैब तो ऑलरेडी कहीं लगी हुई है, ऐसा नहीं है, पर वो छोटे छोटे चीजें बना रहे हैं। अभी
2: जी
3: जो बड़ी डिस्प्ले फैब है
2: जी
3: जिसके ऊपर, अब देखिए आपको ना उसमें आप आपको एक डिस्प्ले फैब डिस्प्ले के ऊपर मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको एसोसिएटेड सर्किटरी यहाँ पर बनानी है, तब जाके वो पूरा का पूरा एक इनहाउस डिस्प्ले पैनल बनेगा, उस पर इंटीग्रेटेड सेंसर भी आपको यहीं पे बनाने हैं। तो उसका काफी कुछ सामान ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा, पर उसको एक कंप्लीट पैकेज, एक फर्निश फैब जो लगाने की, जो एक बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात है, चैलेंज उसका है। तो मुझे लगता है मे बी अगले 4-5 साल में ऐसी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी।
2: जी बिल्कुल, अभी हम विकसित भारत 2047 की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 2047 यानी वो साल जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, और उस वक्त हम पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र होंगे। सरकार ने योजना बनाई है ऐसी, और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है जितेंद्र जी, कि ये 2.0 जो है सेमिकॉन, इससे रोजगार के क्षेत्र में कितनी वृद्धि आप देख रहे हैं, और ये अगर कहें कि जीडीपी में भी भारत के कितना ज्यादा सहयोग करने जा रही है, जिससे कि बहुत उम्मीदें हैं, आपका क्या आकलन है?
3: वो तो आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, तो ऑब्वियसली आपको फॉरेक्स का फायदा यहाँ पर होने वाला है। आज 1,27,000 करोड़ का आउटले की आप बात कर रहे हैं, जो सारी हाईली स्किल्ड जॉब्स होंगी तो जनरेट होंगी, वो भी भारतीय नागरिकों को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेक्टर बढ़ेगा, और फिर वो खाली ये बड़ी फैब और इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, जो उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिकल कॉम्पोनेंट लगने हैं उसके लिए जो लोकल सप्लाई चेन चाहिए वो भी हिंदुस्तान में, उनको भी पूरा का पूरा मौका बढ़ावा मिलेगा, जो इनडायरेक्टली आपके एंसिलरी जॉब्स हैं वो पूरे के पूरे बढ़ेंगे। फिर आप जब ये डिफेंस एंड टेलीकॉम में स्ट्रेटेजिक रेसिलियंस आपकी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो वो जो सेक्टर यहाँ पर चीजें बनेगी उसमें भी आपको जॉब्स आनी है। फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं जिसमें डिजाइन से लेके पूरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग, या मतलब एक खाली चिप डिजाइन की ही बात करें
2: जी
3: तो यहाँ पे मान लीजिए 100-150 स्टार्टअप हूँ, तो उनके अंदर जो नौकरियां हैं वो साधारण नौकरियां नहीं है, वो हाईली स्किल नौकरियां होंगी। तो आप भारत को आने वाले समय के अंदर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो चैलेंज आपको लग रहा है कि जो AI से आप जॉब लॉस वगैरह की बातें कर रहे हैं, वो हाईली स्किल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन जॉब्स का नया रिप्लेसमेंट

0: वगैरह आएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम अगले 5-6 साल के अंदर करीबन 81,000 रुपए की नौकरियां खाली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर, 81,000 नौकरियां यहाँ पर जो नई नौकरियां हैं वो आएंगी।
1: बिल्कुल
0: हो सकता है थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए, मगर अगर आप पूरे दशक के अंदर एंड में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्टर लाखों जॉब्स करेगा। इसमें खाली हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं है, फिर वो जो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल जॉब्स भी आती हैं, लो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, मिड स्किल्ड, वो सब, मतलब जो है पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी है।
1: सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है बहुत बड़े पैमाने पर, इसका मतलब है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने जा रहा है। दरअसल भारत अब केवल दुनिया के लिए बाजार या तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध कराने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की डिजिटल दुनिया को चलाने वाली चिप्स की वैश्विक वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा बनने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है, और सेमिकॉन 2.0 इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार जैन जी, आईटी विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जाँच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. The 26th Shanghai Cooperation Organization Summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management, and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in areas of security, connectivity, and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from 31st August to 1st September. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhani Krishi Yojana, PMDDKY, and the progress of Watershed Development Component, WTC-PMKSY of Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes, and improving district-level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification, and sustainable agricultural practices, among others. During the review of WTC-PMKSY,

दिनकर शर्मा की आवाज़ में आप सुन रहे थे गजलें कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिले वे 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फतेह अली का राग जोग में सितार वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे फतेह अली का राग जोग में सितार वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
4: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
3: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management, and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. The MEAA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in the areas of security, connectivity, and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from August 31 to September 1. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana PMDDKY and the progress of Watershed Development Component WDC PMKSY of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification and sustainable agricultural practices, among others. During review of WDC PMKSY, the Agriculture Minister called upon the states to ensure speedy implementation of projects and clear and measurable outcomes at the grassroots level. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from the 20th to 25th of July.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि की 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कभी कोई गीत दोस्तों दिल की बात वो कह देता है जिसे हम चाह कर भी नहीं कह पाते, और कभी किसी धुन में छुपा होता है किसी खास का नाम। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश पर। आज की इस सुरीली महफिल में आपकी फरमाइश होगी, आपकी पसंद के नगमे होंगे और साथ ही होंगे कुछ दिल से निकली बातें। तो चलिए बिना देरे शुरू करते हैं इस प्यार भरे नगमे के साथ।

जी, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो फूल की खुशबू की तरह होता है, कि छुपाने पर भी छुपती नहीं है। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत, फिल्म जान तेरे नाम से। इस गीत की फरमाइश की थी मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। उनके मित्रगण हैं देवांशु यादव, संजय डिगरिया, अनिल, राधा नामदेव और दर्शन भाई। दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी एसपी सिंह, प्रियाशी, नीलम, वीरेंद्र सिंह, मनीष, गीतांजलि, मधु, रणवीर और तनिष्का ने। दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस एक आवाज़ सुनते ही दिल मुस्कुरा पड़ता है। और जब पुकार में प्यार हो तो मेरे ढोलना कहने पर दिल नहीं भरता। और सुनते हैं इसी पर ये गीत,

जी हाँ दोस्तों, जब प्यार किसी से ना हमें सच्चे दिल से हो जाता ना, तो कस्में भी छोटी पड़ जाती हैं और बस अपने प्यार का एक वादा दिलाते हैं कि हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे एक खूबसूरत गीत फिल्म आशिक से। इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सपाल, आशा सपाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपाल ने। साथ ही जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंग, नेजा पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दिल्ली का इंटरेस्ट चैनल और आप हमें मेल कर सकते हैं। पता नोट कीजिए, ipradiodelhi@gmail.com। आइए सुनते हैं अगली फरमाइश। और आपको ये बता दें कि मोहब्बत जब दिल की गहराइयों तक उतर जाए ना, तो उसके बिना हर खुशी अधूरी और हर पल वीरान सा होता है। कभी-कभी दिल बस इतना ही कहता है कि तुम हो तो जिंदगी

दोस्तों, प्यार क्या है? शायद इसका जवाब हर दिल अलग अलग देता है। दो प्यार करने वाले हर अपने प्यार को अलग अलग तरीके से बताते हैं। प्यार वो एहसास है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है, और प्यार वो भरोसा देता है एक दूसरे को कि हम दोनों एक साथ हैं और हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। यही विश्वास की ज़रूरत होती है प्यार में। और अभी आप सुने थे अनुराधा पौडवाल और अमित की आवाज़ में ये गीत फिल्म तेजाब से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्टो, रोजी पर वेलिस। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक। गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद ने।

दोस्तों, प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक विश्वास होता है और इस विश्वास को हर हाल में हमें बनाए रखना होता है। सपना मुखर्जी और अमित कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म त्रिदेव से। इस गीत की फरमाइश की थी बिहार से जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता संजना, सानवी गुप्ता और रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीसा और लट्टू ने।

हाँ दोस्तों, जब अपना प्यार मिल जाए ना तो उसकी खुशी के लिए ताजमहल भी बना दिया जाता है, जिस तरह के शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था। और गुरु रंधावा की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म तुम्हारी सुल्लू से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका भानु प्रकाश और पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी ने।

जी हाँ दोस्तों, प्यार एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसके बिना ज़िंदगी जैसे अधूरी सी लगती है। प्यार हमें जीने की वजह देता है, रिश्ते को मान्य देता है और दिल को बहुत सुकून देता है। सोनम निगम और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म वास्तव से इस गीत की फरमाइश की थी मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला, अंकिता और अनिकेत। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजी।

दोस्तों, किसी की मुस्कुराहट से सुकून मिलना, उसकी आवाज़ को अपनापन महसूस होना, शायद यही मोहब्बत है। एक मोहब्बत ही ऐसी होती है कि कहीं से भी आप आवाज़ देंगे ना, वो आपके आगे ज़रूर आएगा, आपकी नज़र में आपको दिखने लगेगा कि हाँ, आपका प्यार हमेशा हर वक्त आपके साथ है। वो आपको महसूस कराएगा कि वो हमेशा आपके संग है। और अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान खुराना की आवाज़ में ये गीत फिल्म विक्की डोनर से, और इस गीत की फरमाइश की थी उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, और हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार ने।

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार में दीवानापन तो चलता है। और अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म दीवाना से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया और अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा किसानों को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। बैठक में चक्रीय अर्थव्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और टिकाऊ समाधान पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जर्मनी जलवायु संरक्षण और नए प्रयोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ECI

एक नाम जिसके पीछे है करोड़ों सैकड़ों एहसास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुरों का सफ़रनामा। आज का हमारा सफ़र उस शख्स के साथ है जिसने शायद आप अपनी तस्वीर से ज़्यादा अपने शब्दों को मशहूर होते देखा होगा। एक ऐसे गीतकार जिनके लिखे गीतों में कभी ज़िंदगी की उदासी थी तो कभी रिश्तों की गर्माहट, कभी सपनों का आशियाना और कभी इंसान की ज़िंदगी को एक खाली कागज़ की तरह देखने वाली गहरी सोच। नाम है MG हशमत साहब। हिंदी फिल्म संगीत में उनका सक्रिय दौर ख़ास तौर पर 1970 और 1980 के दशक में दिखाई देता है। उपलब्ध गीत संग्रहों में उनके नाम से 180 से भी ज़्यादा गीत दर्ज हैं, लेकिन हशमत साहब को केवल गीतकार कहना शायद उनके काम को छोटा करना होगा। उन्होंने फिल्म के लिए कहानी और संवाद भी लिखे। मेरा जीवन में वे कहानी पटकथा के एक हिस्से और संवाद से जुड़े थे, जबकि कोरा कागज़ में उनके संवाद लेखन का भी उल्लेख मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं MG हशमत साहब के शब्दों का ये प्यारा सा सफ़र।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। और आज इस सफ़र में हमारे साथ हैं, जिनके नाम पर हम बात कर रहे हैं, जिनके सुरों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो हैं MG हशमत साहब। दोस्तों, जब शब्दों ने ज़िंदगी को आवाज़ दी और हशमत साहब की लेखनी की सबसे खूबसूरत बात थी कि वो बहुत बड़े बड़े शब्दों के सहारे भाव पैदा करने की कोशिश नहीं करते थे। उनके गीतों में आम इंसान की ज़िंदगी दिखाई देती थी। कभी कोई इंसान अपने बीते हुए जीवन को देख रहा है, कभी कोई अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, और कभी दो लोग मिलकर अपने छोटे से सपनों के घर का ख्वाब देख रहे हैं। यही वजह है कि उनके गीत सुनते हुए हमें लगता है कि ये सिर्फ किसी फिल्म के किरदार की कहानी नहीं है, ये तो हमारी अपनी खुद की कहानी है। उनकी रचनाओं की सूची में उलझन, तपस्या, कोरा कागज़, भीगी पलखे, हादसा जैसी फिल्में शामिल हैं। और आइए सुनते हैं अब एक ऐसा प्यारा सा खूबसूरत गीत उन्हीं का लिखा हुआ। फिल्म है प्यार का तराना और आवाज़ें दी हैं आशा भोसले जी और SP बालासुब्रमण्यम जी ने।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुरों का सफ़रनामा में हर्षद साहब की। और सबसे पहले हमने आपको जो जिस फिल्म का गाना सुनाया था, फिल्म आई थी कोरा कागज़, जो आई थी 1974 में। फिल्म की कहानी अपने आप में रिश्तों, गलतफहमी और बिछड़ने की कहानी थी। और इसी फिल्म के लिए एम जी हशमत जी ने लिखा वो गीत जिसने उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में एक अलग पहचान दे दी, जिसका गाना आपने सुना ही, मेरा जीवन कोरा कागज़। किशोर कुमार साहब की आवाज़ और कल्याण जी आनंद जी का संगीत मिला तो हशमत साहब के शब्दों को ऐसा जीवन मिला कि ये गीत आज भी सुनने वालों को भीतर तक छू जाता है। इस गीत ने 1974 की बिनाका गीतमाला एनुअल लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था और हशमत साहब को इस गीत के लिए फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए नामांकन भी मिला। यानी एक गीत और एक गीतकार की पहचान हमेशा के लिए अमर। और अब जो गाना आप सुन रहे हैं वो फिल्म है प्यार का तराना।

अगर ध्यान से सुना जाए तो एक चीज़ बहुत ही साफ दिखाई देती है। उनकी कलम सिर्फ दुख बयान नहीं करती थी, वो दुख के बीच भी उम्मीद तलाशती थी। तपस्या का दो पंछी दो तिनके इसका खूबसूरत उदाहरण है। दो पंछियों के बहाने दो इंसानों के उस सपनों को शब्द मिलते हैं जिसमें वे मिलकर अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। गीत में केवल घर, केवल ईंट पत्थर की जगह नहीं है, वो साथ रहने का सपना है। और यही तो अश्विन साहब की खूबी थी, साधारण सी तस्वीर में भी भावनाओं की पूरी दुनिया को देख लेना। और ये फिल्म है उलझन, जिसमें आवाज़ दी है किशोर कुमार साहब ने, और उनके साथ हैं सुलक्षणा पंडित जी।

यार उलझन के लिए एमजी हशमत ने इसी मनस्थिति को शब्द दिए। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, यह सिर्फ फिल्मी किरदार का सवाल नहीं लगता, यह ऐसा सवाल है जो किसी न किसी मोड़ पर हम सब की ज़िंदगी में आता ही है। गीतकार वही बड़े होते हैं जो किसी किरदार की आवाज़ लिखते लिखते सुनने वाले के दिल की आवाज़ लिखते हैं।

ज़िंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती, कभी रास्ते उलझ जाते हैं, कभी रिश्ते, और कभी ख़ुद इंसान अपने ही सवालों में फंस जाता है। फिल्म

लता जी की आवाज़ और हशमत जी के शब्द। हशमत जी जो थे, उनकी कलम को सिर्फ किशोर कुमार साहब की आवाज़ ही नहीं मिली, लता मंगेशकर जी ने भी उनके लिखे कई गीतों को अपनी आवाज़

कोरा कागज़ में मेरा पढ़ने में नहीं लाके लागे दिल, रूठे रूठे पिया जैसे कि धशवंत साहब के लिखे हुए हैं। ख़ास बात यह है कि कोरा कागज़ के गीतों के लिए उन्हें एक साथ अलग अलग भावों को शब्द देने का अवसर मिला। एक तरफ जीवन दर्शन, दूसरी तरफ मन की बेचैनी और तीसरी तरफ रूठे हुए प्रेम को मनाने की कोशिश। यही विविधता किसी गीतकार को यादगार बनाती है और यही वजह है कि आज की रात सुरों का सफ़रनामा में आज हम बात कर रहे हैं गीतकार धशवंत साहब की।

बस हिंदी सिनेमा में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ किसी भी गीत को एक अलग ऊंचाई दे देती थी। जैसे कि अभी आपने सुना जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ और लता मंगेशकर जी की आवाज़ ने इस गाने को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। जब ऐसी आवाज़ के सामने हशमत साहब के शब्द आए तो रिश्तों और प्रेम की भावनाओं को एक बेहद नरम और आत्मीय अंदाज़ मिला। भीगी पलके में, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा के अलावा भी कई गाने हशमत साहब ने लिखे। उनके गीतों में प्रेम केवल रोमांस नहीं था, उसमें था साथ निभाने का वादा भी, दर्द भी और जीवन की सच्चाई भी। और इसी के साथ एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं हशमत जी का लिखा हुआ।

अगर हम हशमत साहब के पूरे फिल्मी सफ़र को देखें तो उनकी लेखनी किसी एक रंग से बंधी हुई नहीं थी। उन्होंने प्रेम गीत लिखे, दार्शनिक गीत लिखे, सामाजिक भावनाओं वाले गीत लिखे, प्रार्थना लिखी और फिल्म की परिस्थितियों के अनुसार हल्के फुल्के गीत भी लिखे। हादसा का ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है, उनके अलग अंदाज का उदाहरण है। वही दो चट्टाने में हो तेरा प्यार खुदा जैसे गीत प्रेम और इंसानियत को एक साथ जोड़ता है। यानी एक तरफ शहर की तलख हकीकत और दूसरी तरफ प्यार को मजहब से ऊपर रखने वाली सोच, और ऐसा ही प्यार भरा एक नगमा उनकी उनकी कलम से निकला हुआ एम जी हशमत साहब की।

और दोस्तों, अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। एमजी हर्षवर्धन साहब के निजी जीवन की कई जानकारी आज सार्वजनिक स्रोतों में उतनी स्पष्टता से उपलब्ध नहीं है जितनी उनके गीतों और फिल्मों की जानकारी है। लेकिन किसी रचनाकार की सबसे बड़ी पहचान शायद तारीखों में नहीं होती, वो होती है उसके शब्दों में। आज भी किशोर कुमार साहब की आवाज़ में मेरा जीवन कोरा कागज़ सुनाई देता है। जब दो पंछी दो तिनके किसी को अपने छोटे से आशियाने का सपना दिल याद दिलाता है, जब जन्म जन्म का साथ रिश्तों की याद दिलाता है, तो समझ आता है कि एक सच्चा गीतकार अपने समय से आगे निकल जाता है। एमजी हर्षवर्धन साहब ने हमें बहुत से गीत दिए और उन गीतों में अपने समय के इंसान की भावनाएँ छोड़ दी थी। आज सुरों का सफ़रनामा में हम उन्हें सिर्फ याद ही नहीं कर रहे हैं, हम उनके शब्दों को फिर से जी रहे हैं। आप सुन रहे थे सुरों का सफ़रनामा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही फ़नकार के साथ जिनकी आवाज़ हमेशा के लिए भले ही खामोश हो चुकी हो, मगर जिनके सुर और शब्द आज भी हम सबके बीच में ज़िंदा है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वो मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। श्री ठाकुर कार्मिक मंत्रिमंडल और योजना विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादा

उस ज़माने के गाने, जिस ज़माने की सोच अलग थी, जिस ज़माने की पहनावा अलग था, उस ज़माने का पहनावा अलग था वहाँ की, तब हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बहुत अलग थी और उस समय के गाने सुनने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने से, जिसकी फिल्म है धरती माता, आवाज़ है पंकज मलिक जी की।

और दोस्तों अब जिस फिल्म का गाना आप सुनेंगे, ये फिल्म आई थी 1938 में, फिल्म का नाम है अधिकार। इस न्यू थिएटर्स की फिल्म के निर्देशक पीसी बरुआ जी थे और इसको आवाज़ दी थी इस गाने को पहाड़ी सान्याल जी ने, और ये संगीतकार थे तिमिर बरन जी। और इस गाने में शास्त्रीय और रविंद्र संगीत की शैली को बहुत ही सुंदर प्रभाव आप देखने को मिल सकता है, आप इसमें देख सकते हैं। ये गीत सुहागरात के समय एक दुल्हन के मन में छिपे असमंजस और झिझक को बहुत ही प्यारे ढंग से प्रस्तुत करता है। आइए हम मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत पहाड़ी सान्याल जी की आवाज़ में।

और दोस्तों, अब जो गाना अब आपके कानों तक पहुंचेगा वो आया, जो फिल्म थी वो आई थी 1943 के प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिल्म, हिंदी फिल्म तानसेन का एक बेहद ही लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत है। इसके गायक हैं और अभिनेता केएल सहगल ने अपनी सुरीली आवाज़ में इसको गाया था, और संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने इसे इसका संगीत तैयार किया था। इसके बोल पंडित इंद्र जी ने लिखे थे, पंडित इंद्रचंद्र ने लिखे थे। ये गीत शास्त्रीय संगीत के गारा राग पर आधारित है। ये एक प्रेम गीत है जिसके बोल काहे करे गुमान रे गोरी है। इस फिल्म के इस गाने की मिठास और केएल सहगल की गायकी ने इसे उस दौर में ही नहीं बल्कि आज भी, यानी इतने सालों बाद भी, क्लासिक जो संगीत प्रेमी है उनके बीच में अमर बना दिया है इस गाने को।

और दोस्तों, हर गाने की तरह अगली पेशकश भी, अगला गाना भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। और ये फिल्म आई थी 1943 में, पुरानी फिल्म है ये, उसका नाम है नर्स, और बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीत है ये गाना। अपने दौर की मशहूर गायिका अभिनेत्री खुर्शीद बानो ने गाया था। और आगे बात करें तो इस फिल्म के समीक्षकों के अनुसार, ये गाना फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के परिचय या शुरुआती दृश्यों के दौरान आता है, जो प्रकृति और कोयल की कूक के जरिए मन के भावों को व्यक्त करता है। और इस फिल्म का निर्देशन चतुर्भुज दोषी ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में खुर्शीद बानो के साथ अरुण कुमार आहूजा, जो आज के ज़माने के सुपरस्टार गोविंदा जी के पिता थे, वो शामिल थे। ये एक तरफा बलिदान और उलझे हुए प्यार की मर्म स्पर्शी कहानी थी। फिल्म नर्स का ये गाना आपके लिए आकाशवाणी रेनबो की तरफ से।

दोस्तों, आकाशवाणी का ये चैनल है AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल, जिस पर आप सुन रहे हैं पुराने सदाबहार गाने, गीत सुनहरे।

और दोस्तों अब जो गाना आपके पास आएगा वो फिल्म है दर्द, और ये फिल्म आई थी 1947 में, यानी जस्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इतने पुराने ज़माने का सदाबहार गाना, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे, हाय वो ज़माना याद करो, बेहद लोकप्रिय और भावुक गीत है। और इस खूबसूरत दर्द भरे गीत को अपनी सुरीली आवाज़ महान गायिका अभिनेत्री सुरैया जी ने दी थी। इसका संगीत मशहूर संगीतकार नौशाद अली ने जी ने तैयार किया था, और इस दौर में बहुत सफल रहा था ये गीत। इसके बोल प्रसिद्ध शायर शकील बदायूनी जी ने लिखे थे, और एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसका निर्देशन ए आर किरदार साहब ने किया था। ये गाना पुराने दिनों की यादों और बिछड़े हुए प्यार के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। और लीजिए, ये प्रस्तुति सिर्फ आकाशवाणी के ज़रिए ही आप तक हो सकती है। रात के 1:27 हो रहे हैं, और इस वक्त में आप हमारे साथ इस रात का लुत्फ़ उठा रहे हैं।

तो हम आज वो सब कुछ याद कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में, पुराने दौर में, लोगों के जहन में, लोगों के दिल में, लोगों की कलम से जो जज्बात निकलते थे। और इस वक्त में जो अगला गाना, अगला अंदाज़ हम लेकर आए हैं वो है

राकेश साहब की गायकी में फिल्म है अंदाज़, जो आई थी 1949 में, और इसके गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब और संगीतकार हैं नौशाद साहब। इस फिल्म में जो कलाकार नज़र आए थे वो दिलीप कुमार साहब और नरगिस जी और राज कपूर साहब आए थे इस फिल्म में नज़र। ये गाना अपनी मधुरता और मुकेश साहब के दर्द भरे लेकिन सुरीले अंदाज के लिए जाना जाता है। इस गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। तो अब और इंतज़ार नहीं करवाते हैं और सुनवाते हैं आपको अंदाज फिल्म का मुकेश साहब की आवाज़ में ये बेहद बेहद ही प्यारा गाना।

दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो हमें पता नहीं होता और वो हो जाता है। जैसे कि अभी आपने ये गाना सुना, बेहद ही खूबसूरत सा गाना, और अब जो नगमा आपके पास आने वाला है वो लता जी की आवाज़ में है, और इस गाने ने अपने दौर में धूम मचा दी थी। इस गाने के संगीतकार जोड़ी शंकर शंकर जयकिशन जी थे जयकिशन जी थे और इसके माध्यम से उन्हें और गीतकार हसरत जयपुरी को बहुत ही बड़ी पहचान मिली थी। फिल्म बरसात के सभी गाने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहे और आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की जुबान पर रहते हैं, और हमें पूरा यकीन एतबार है कि अगर आप पुराने गीतों को पसंद करते हैं तो रात के इस वक्त भी हमारे साथ होंगे। रात के 1:34 और 41 सेकेंड्स हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल।

0: दोस्तों 1949 में फिल्म आई थी चांदनी रात। उसका प्रसिद्ध गीत चांदनी रात है, अभी हम सुनेंगे सुनाएंगे आपको। उस दौर के जो लिखा था उस दौर के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने इसको लिखा था, और एक बेहद क्लासिकल बेहतरीन क्लासिकल गाना है। और इसमें पार्श्व गायिका और अभिनेत्री उमा देवी और तसदुक हुसैन ने कोरस के साथ गाया था, जिसे आप टुन टुन के नाम से भी जानते हैं। और इस फिल्म को गीतकार थे इस गीत के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। और लीजिए, और ये प्रस्तुत है ये बेहद ही खूबसूरत गाना, जो आया ये फिल्म आई थी 1949 में ताजमहल पिक्चर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये फिल्म।
1: हाय क्या बात है।

0: चांदनी रात है, हाय क्या बात है।
1: देखो जी देखो जी देखो देखो जी
0: चांदनी रात है, हाय क्या बात है।
1: देखो जी देखो जी देखो देखो जी
0: चांदनी रात है, हाय क्या बात।
2: दोस्तों उस वक्त की चांदनी रातें भी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी ना, आज की रातों की तरह नहीं कि हम सब अपने मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। और फिलहाल अगला गाना जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारा सा गाना है। 1949 की क्लासिकल जो रहस्यमय फिल्म थी ये महल, इसका ये खूबसूरत और भावुक गीत मैं वो हंसी हूँ जो लब पे आने से रह गई, हिंदी सिनेमा के बेहतरीन और दर्द भरे नगमों में गिना जाता है। इस गाने को मशहूर पार्श्व गायिका राजकुमारी जी ने अपनी सुरीली और मखमली आवाज़ में गाया था। फिल्म का संगीत महान संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने दिया था और इसके बोल नक्शब जरारवी साहब ने लिखे थे। और इस गाने के बोल बहुत ही संवेदनात्मक और गहरे हैं जो एक ऐसी अधूरी खुशी उम्मीद और दर्द को दर्शाते हैं जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए। फिल्म के रहस्यमय और उदास माहौल के साथ ये गीत पूरी तरह मेल खाता है और इस रात को जहन में रखते हुए ये गाना आपको और भी प्यारा लगने वाला है। सुनते रहिए दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल को, जिसमें प्रोग्राम चल रहा है गीत सुनहरे।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनाएंगे वो बहुत ही प्यारा सा गाना है जो हमने लिया है फिल्म नमूना से, और फिल्म आई थी 1949 में। आवाज़ दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता किशोर साहू थे। इसमें कामिनी कौशल और देवानंद ने भी अभिनय किया था। ये गाना प्रेम से मिले धोखे और आंसू और दिल के टूटने की कसक को बहुत ही खूबसूरती और सादगी के साथ बयान करता है, और उस दौर में कामिनी कौशल जी और देवानंद साहब की तो बात ही कुछ और थी। आइए हम भी सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत सा गाना। फिल्म है नमूना, आई थी ये फिल्म आई थी 1949।

दोस्तों, जब हम पुराने गानों को सुनते हैं तो उनमें कितनी ही सादगी के साथ दिल के जज्बात बयान किए जाते थे, और ऐसी ही एक खूबसूरत गाना, एक ऐसी फिल्म आन आई थी, फिल्म 1952 में, इसका गाना आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, सुनहरे दौर के ये अत्यंत मधुर और रोमांटिक गीत है हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर का। और ये इसमें आवाज़ दी थी लता मंगेशकर जी ने, संगीतकार थे नौशाद जी और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये गीत अभिनेत्री इसमें निम्मी जी नजर आई थी और अभिनेता दिलीप कुमार साहब नजर आए थे, कि फिल्म का हिस्सा है जिसमें मुख्य रूप से और ये गाना खास तौर पर निम्मी जी पर फिल्माया गया था। आइए हम भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई।

और दोस्तों, आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सच में इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आप इसे सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने को मिला। पुराने ज़माने का, साल 1952 में आई क्लासिकल फिल्म दाग का गाना हम दर्द के मारो का भारतीय सिनेमा के सबसे दर्द भरे और यादगार गीतों में से एक है। ये गीत मुख्य रूप से मैं और गम के सहारे जी रहे एक टूटे हुए इंसान की दास्तान को बयां करता है। इस गाने की ख़ास बात की अगर हम बात करें तो इसके पार्श्व गायक थे तलत महमूद साहब ने अपने मखमली आवाज़ और कपकपाती आवाज़ में से वो गाया था। और इसका शानदार और सदाबहार संगीत प्रसिद्ध जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने तैयार किया था। और इस गीत के बेहवक भावुक गीत को जाने माने शायर और गीतकार हजरत जयपुरी साहब ने लिखा था। और पर्दे पर इस गाने को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया था, जिसमें वो मैं के नशे में चूर और गमगीन नज़र आते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रात में इन गीतों के साथ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। गीत सुनहरे से अब दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे पुराने सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य

0: देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापारों को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल विवेक खांडे ने कल भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया है। एयर मार्शल खांडे दिसंबर 1988 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात जिन्हें आप बहुत बहुत बहुत दिन से सुनना चाहते थे और सुनना चाहते हैं और रात के इस वक्त में भी सुनना चाहते हैं, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 20 24x7 चैनल को हमारे साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे बिना रुकावट के फिल्म गानों का आनंद ले रहे थे, और अब कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में

0: भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत में डाटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, बिजली उत्पादकों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमों को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उषा विजय कुमार का बजाया राग चारुकेसी में गोटू वैद्यम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आपने सुना उषा विजय कुमार का राग चारुकेसी में गो टू वैद्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकेंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरा वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्वेता, आपसे थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे योगबद्ध पद्मासन। 5:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे आप, और 5:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में ऋतिक अदलखा का राग अहीर भैरव में गायन। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना,

0: 6:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे बंकिम चंद चैटर्जी। 6:45 पर हर रोज की तरह आज भी होगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज का भाग होगा अयोध्या कांड। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका में आज के कलाकार हैं नीलम पांडे के भजन सुनेंगे आप। 7:30 पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 10:00 ये वो कार्यक्रम थे जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के संबंध में दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों पर चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर

0: और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन अभियान, पेयजल प्रणालियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन का दूसरा चरण। कृषि और कल्याण किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के अंतर्गत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के सिलसिले में यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंभा रोड सहित आसपास के अन्य मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा के दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और दिल्ली में भी आज तेज बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड अपॉन मेंबर कंट्रीज ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO टू डिसमेंटल द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन एंड सेफ हेवन्स। Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the organization's 25th anniversary. The summit concluded with 13 key outcomes, covering counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit focuses on 4 key areas, including the timely implementation of water infrastructure projects, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Catch the Rain, Drinking Water Source Sustainability and Jal Jeevan Mission 2.0. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a roundtable in New Delhi on ease of doing business aimed at scaling India's data centre ecosystem. In a social media post yesterday, he stated that the roundtable featured excellent discussions with key stakeholders including data centers, hyperscalers, cloud providers, power producers and equipment suppliers on streamlining regulations and strengthening डिजिटल

पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। ये करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से
राह

दिलाता है। पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।

0: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
0: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ऋतिक अदलेका का राग अहीर भैरव में गायन।